FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 19वीं तिथि तदनुसार 9 जून सन 2026 प्रातः के 5:57 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कार्यक्रम विचार बिंदु में आइए सुनते हैं ज्ञान विषय पर विचार।
2: अंधकार में चलने वाला व्यक्ति भटक सकता है, लेकिन जिसके हाथ में दीपक हो ऐसा व्यक्ति गंतव्य को पा ही लेता है। इसीलिए ऋग्वेद में ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ले चल हमें प्रकाश की ओर, क्योंकि प्रकाश ही हमें तत्वों का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। प्रकाश ही ज्ञान है,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे

0: अज्ञान ही अंधेरा। ज्ञान तो किसी की धरोहर भी नहीं है, वो तो जात संप्रदाय से परे आत्मा का धर्म है। ज्ञान का उदय कब किस रूप में होगा कहा नहीं जा सकता। ज्ञानोदय होने पर व्यक्ति की मानसिक धारा ही नहीं, जीवन धारा भी बदल जाती है। जहाँ तुलसीदास को पत्नी रत्नावली ने और कालिदास को विद्योत्मा ने आत्मज्ञान की नई दिशा दी, वहीं महाराणा प्रताप को चीटी से और महात्मा बुद्ध को नन्ही गिलहरी से नए ज्ञान की प्रेरणा मिली है। मनुष्य ने जहाँ वृक्षों से विनम्रता सीखी है, वहीं नदियों से अबाध गति से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना भी। नदी की धारा में चट्टान भी जब अवरोध बनती है तो वो धीरे धीरे अपना स्तर ऊंचा करती हुई उसे लांघ जाती है। ज्ञान भी तो एक धारा है जो जीवन पर्यंत बहती रहती है, कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। ना मिले गुरु फिर भी एकलव्य मिट्टी के गुरु से धनुर्विद्या सीख ही लेता है। बालक विद्यासागर सड़क के लैंप से पढ़ ही लेता है। बाबा अंबेडकर विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़े हैं। महर्षि भी तपोबल से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करना ही हमारा चरम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो है उस ज्ञान का निरंतर सही उपयोग करना। ज्ञान के कई रूप हैं, वो हमें विनम्र भी बनाता है और अहंकारी भी। ज्ञान जब प्रभु चरणों में समर्पित होता है तो मीरा और सूर का जन्म होता है। जब वो मानवता की निष्काम सेवा में लग जाता है तो मदर टेरेसा और गांधी प्रकट होते हैं। जब यही ज्ञान स्वार्थ और साम्राज्यवादिता में लिप्त हो जाता है तो उदय होता है अहंकारी रावण और तानाशाह हिटलर का। और जब यही शिष्यों में बंटने लगता है तो बनते हैं महर्षि वाल्मीकि और टैगोर जैसे गुरु। जब यही ज्ञान खोज परख होता है तो वहीं वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का जन्मदाता कहलाता है। यही ज्ञान अंतर्मुखी होकर आत्मज्ञान का साधन भी बनता है। अनेक लोगों के मन में मुक्ति की छटपटाहट होती है, अतः वे संतों महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं और गूढ़ रहस्यों से भरी सूक्तियों को भी कंठस्थ कर लेते हैं। पर उन्हें अंधेरे में टटोलने की तरह ज्ञान का प्रवेश द्वार नहीं मिलता। बाइबल में लिखा है, अपनी मुक्ति स्वयं प्राप्त करो। हमारे महर्षियों ने कहा है, जीवन में ज्ञान ग्रहण करो, उसे मानव कल्याण में बांटो और अंत में आत्मज्ञान में लगा दो, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। बात बहुत पुरानी है। एक ज्ञानी राजा अपना राजपाट छोड़कर आध्यात्म चिंतन करना चाहता था, पर उसे लगता कि ये राजपाट मुझे बांधे है, मैं कैसे इससे मुक्त हो सकूंगा। एक दिन उन्होंने अपनी ये व्यथा ऋषि आश्रम में जाकर व्यक्त की। ऋषि उनकी अंतर्व्यथा समझ गए और उन्होंने राजा को दूसरे दिन आने को कहा। राजा दूसरे दिन यथा समय जब आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऋषि एक वृक्ष की डाल को पकड़े खड़े हैं। वे राजा को देखकर भी वहीं खड़े रहे। तब राजा अधीर होते हुए बोले, प्रभु मैं आ गया हूँ, आइए अब मुझे मुक्ति का मार्ग बतलाइए। ऋषि ने सहजता से कहा, देखो मैं वहाँ कैसे आऊँ, ये डाल मुझे छोड़ती ही नहीं। राजा हंसने लगा, बोला, अरे प्रभु जब आप डाल छोड़ेंगे तभी तो ये छूटेगी। महर्षि मानो इसी उत्तर की तलाश में थे। वे गूढ़ार्थ समझाते हुए बोले, राजन यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम राजपाट छोड़ोगे तभी तो वो छूटेगा। देखो जब तक कोई बंधन माने तभी तक ही बंधन है। ऋषि वाणी सुनकर राजा आत्मतोष से भर उठा। उसने सोचा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे ज्ञान विषय पर विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सुबह का समय खुद को शांत करने और एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने का होता है। आज के इस कार्यक्रम में हम सब मिलकर प्रभु की भक्ति के कुछ ऐसे स्वर सुनेंगे जो आपके पूरे दिन को सुकून से भर देंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भक्ति वंदन के साथ।

जब हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो मन में एक असीम शांति का एहसास होता है। श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपनी मर्यादा और धैर्य को कभी खोना नहीं चाहिए। सुबह सुबह उनके भजनों को सुनना मन मंदिर को शुद्ध करने जैसा है। तो आइए मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में ध्यान लगाकर आज के दिन को मंगलमय बनाएं।

जहाँ भक्ति के सुर सजते हैं वहाँ प्रभु श्याम का नाम अनायास ही ज़बां पर आ जाता है। श्याम नाम की महिमा ऐसी है जो हर उदास मन में एक नई उम्मीद और जीने का हौसला जगा देती है। सुबह सुबह उनके नाम का सिमरन करने से मन की सारी उलझने शांत हो जाती हैं। तो आइए प्रभु श्याम के इस पावन नाम को अपने भीतर महसूस करते हैं और भजनों के इस सुंदर सिलसिले को आगे भी बढ़ाते हैं।

जहाँ प्रभु राम की चर्चा हो वहाँ उनके परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है।

हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति, सेवा भाव और अपार शक्ति के प्रतीक हैं। सुबह के समय उनका स्मरण करने से मन के सारे संशय और डर दूर हो जाते हैं और जीवन में हर कठिनाई से लड़ने का साहस मिलता है।

सुबह का ये समय हमें याद दिलाता है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत है। भक्ति का असली मतलब सिर्फ प्रार्थना करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करके सही कर्म की राह पर आगे बढ़ना भी है। जब हम पवित्र मन से दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे सारे काम अपने आप ही बनने लगते हैं। तो चलिए इस पावन सुबह की सकारात्मक सोच और सुंदर विचारों के साथ हम भजनों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये भजन।

कार्यक्रम आराधना में आज आपने सुने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, ओम व्यास, अनूप जलोटा और महेंद्र कपूर के गाए कुछ भक्ति गीत। इसी के साथ हमारा आराधना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज की बात। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं हूं सौम्या कांडपाल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 9 जून, आइए डालते हैं एक नज़र आज के दिन की प्रमुख घटनाओं पर। हर साल 9 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद द्वारा साल 2007 में की गई थी। इसके बाद पहली बार इसे 9 जून 2008 को मनाया गया। दरअसल 9 जून 1948 को ही यूनेस्को के तहत इस परिषद की स्थापना हुई थी। ये दिन सिर्फ पुराने कागजातों को सहेजने का नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास, हमारी सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखने का संकल्प है। चाहे वो देश की आज़ादी के दस्तावेज हों या हमारे अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड, हर एक अभिलेख हमारी पहचान की नींव है। जब भी देश की आज़ादी और जल जंगल जमीन की रक्षा की बात आती है तो महानायक भगवान बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। 9 जून 1900 को देश के इस महान सपूत ने रांची जेल में अपनी अंतिम सांस ली थी। महज 25 साल के छोटे से जीवन में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और शोषक जमींदारों के खिलाफ उलगुलान यानी एक महान क्रांति का शंखनाद किया था। छोटा नाग क्षेत्र के आदिवासी समाज को एकजुट कर इन्होंने नारा दिया था कि रानी का राज खत्म करो और हमारा राज स्थापित करो। आज बिरसा मुंडा हमारे बीच नहीं है, लेकिन जल जंगल जमीन के हक और आदिवासी संस्कृति की अस्मिता के लिए लड़ा गया उनका संघर्ष आज भी करोड़ों भारतीयों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। जब भी भारतीय आधुनिक चित्रकला का जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है और वो नाम है MF हुसैन का। 9 जून 2011 को कला के इस जादूगर ने लंदन में अपनी अंतिम सांस ली थी। अपनी अनूठी और बेबाक शैली के कारण इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। हुसैन साहब के जीवन और कला का एक बेहद दिलचस्प पहलू बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रति उनकी अनोखी दीवानगी थी। फिल्म हम आपके हैं कौन देखने के बाद वो माधुरी की अदाकारी और मुस्कान के इस कदर मुरीद हुए कि उन्होंने इस फिल्म को कथित तौर पर 70 से भी ज़्यादा बार देखा था। माधुरी उनके लिए सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि उनकी कला की प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने माधुरी से प्रेरित होकर अनगिनत स्केच और पेंटिंग्स भी बनाई जिन्हें वे बड़े गर्व से अपना नाम फिदा लिखते थे। 9 जून 1934 को डोनाल्ड डक पहली बार वॉल्ट डिज्नी की एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द वाइस लिटिल हैन में पर्दे पर दिखाई दिया। मिकी माउस के शांत स्वभाव के विपरीत डोनाल्ड डक का बात बात पर चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना और उसकी वो अजीब सी क्वैक क्वैक करने वाली आवाज़ दर्शकों को इतनी पसंद आई कि वो रातों रात स्टार बन गया। अपनी नीली नाविक शर्ट, टोपी और बिना पैंट के घूमने वाले इस अनोखे किरदार ने आगे चलकर डिज्नी की दुनिया में मिकी माउस से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। आज भी जब हम 9 जून के इतिहास को याद करते हैं तो डोनाल्ड डक का ये डेब्यू हमारे बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है और हमें ये सिखाता है कि कैसे एक छोटे से एनिमेटेड किरदार ने पूरी दुनिया के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। 9 जून 1964 का दिन भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए भी बहुत बड़ा मोड़ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इसी दिन देश की बागडोर एक बेहद साधारण और ईमानदार व्यक्तित्व के हाथों में सौंपी गई थी और वे थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। अपनी छोटी कद काठी के विपरीत शास्त्री जी फौलादी इरादों के मालिक थे। उनके प्रधानमंत्री बनते ही देश को 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना भी करना पड़ा और साथ ही भीषण अन्न संकट से भी जूझना पड़ा। ऐसे कठिन समय में उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का अमर नारा दिया, जिसने सीमाओं पर तैनात सैनिकों और खेतों में पसीना बहाते किसानों में एक नया जोश भर दिया।
सादगी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल शास्त्री जी का कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके फैसलों ने भारत के संप्रभुता और स्वाभिमान को हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। और जब हम 9 जून के इतिहास की बात करते हैं तो ये दिन भारत की नारी शक्ति के एक बड़े प्रतीक से भी जुड़ा है। 9 जून 1949 को देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी का जन्म हुआ। 1972 में पुलिस सेवा में शामिल होकर इन्होंने न सिर्फ एक नया इतिहास बनाया बल्कि रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर लाखों बेटियों के सपनों को नए पंख भी दिए। अपनी निडर कार्यशैली के कारण अपराधियों के बीच वो लेडी सिंघम और क्रेन बेदी के नाम से भी मशहूर हुई। तिहाड़ जेल के महानिरीक्षक के रूप में उन्होंने कैदियों के मानवीकरण और सुधार के लिए जो विपासना और साक्षरता कार्यक्रम चलाए उनके लिए इन्हें प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। हमारा आज का विषय है अद्भुत है ध्यान की महिमा। स्वामी विवेकानंद जी को पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था। वो अपने शिष्य अखंडानंद द्वारा पुस्तकालय से पुस्तकें मंगवाते और केवल एक ही दिन में पुस्तकें पढ़कर वापस कर दिया करते। पुस्तकालय के ग्रंथपाल ने अखंडानंद से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर पुस्तकें बिना पढ़े ही वापस करनी है तो फिर पुस्तकें ले ही क्यों जाते हो? आप पुस्तकें पढ़ते भी हैं या केवल इनके पन्ने भर पलट लेते हैं? जब अखंडानंद जी ने ये बात स्वामी जी को बतलाई तो वे स्वयं पुस्तकालय में गए और बड़ी विनम्रता व आदरपूर्वक ग्रंथपाल से कहा, महोदय, ये सारी पुस्तकें मैंने ही मंगवाई थी और मैंने इन सारी पुस्तकों को पढ़ा भी है। आप मुझसे इन पुस्तकों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ग्रंथपाल ने अपने शंका समाधान के लिए उन पुस्तकों से कई प्रश्न पूछे। स्वामी विवेकानंद ने प्रत्येक प्रश्न का जवाब तो दिया ही, साथ ही साथ कौन सा विषय और प्रश्न किस पुस्तक के किस पृष्ठ पर लिखा है ये भी बतला दिया। ग्रंथपाल स्वामी जी की मेधा व स्मरण शक्ति को देखकर हैरान था, आश्चर्यचकित था। उसने स्वामी जी से उनकी स्मरण शक्ति का रहस्य पूछा। स्वामी जी ने कहा, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान के द्वारा ही हम इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं व उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। परब्रह्म को मनुष्य इन आंखों से नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, वाणी अन्य इंद्रियों द्वारा भी वो पकड़ में नहीं आ सकते। नाना प्रकार की तपश्चर्या और कर्मों द्वारा भी मनुष्य परब्रह्म को नहीं पा सकता। उन परम विशुद्ध परमात्मा को तो मनुष्य सब भोगों से मुड़कर अंतःकरण के द्वारा निरंतर एकमात्र उन्हीं का ध्यान करते करते ज्ञान की निर्मलता से ही पा सकता है। जो सचमुच परब्रह्म परमात्मा को पाना चाहता है, उनका साक्षात्कार करना चाहता है, उसे सांसारिक भोगों में सर्वदा विरक्त होकर परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए, ध्यान में डूब जाना चाहिए। ध्यान कुछ होने का नाम नहीं बल्कि कुछ नहीं होने का नाम है। ध्यान मन के मिट जाने का नाम है, मन के मर जाने का नाम है। क्योंकि जब तक ये मन है तब तक संसार और मन के तब तक संसार है और मन के मिटते ही जीवात्मा सांसारिक कामनाओं वासनाओं प्रलोभनों से मुक्त हो सदैव के लिए अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। संत कबीर ने बहुत खूब कहा है, मन के बहुत रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोए। मन मनसा जब जाएगी तब आवेगी और जब ही निश्चल होएगा तब पावेगा ठौर। यानी कि मन और मन की इच्छाएं जब मिट जाएंगी तब विलक्षण स्थिति जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। जैसे ही मन स्थिर हुआ वैसे ही शांति की प्राप्ति हुई। इसलिए ध्यान का जोर मन को मारने पर है, मन को मिटा डालने पर है, मन को समाप्त कर देने पर है। हमारा पूरा संसार हमारे चित्त में ही तो समाया है, हमारे मन में ही समाया हुआ है। कई जन्मों के अच्छे बुरे शुभ अशुभ संस्कार बीज रूप में सूक्ष्म रूप में हमारे अचेतन में बैठे हैं और ये अचेतन हमेशा ही हम पर हावी रहता है। हमारा अचेतन ही हमें चलाता नचाता घुमाता रुलाता और हंसाता है। ध्यान इसी अचेतन की समाप्ति का नाम है, ध्यान इसी अचेतन की सफाई का नाम है, ध्यान इसी अचेतन की मृत्यु का नाम है। ध्यान चित्त को सभी प्रकार के संस्कारों से शून्य कर देना का नाम है। ध्यान से उत्पन्न अग्नि ध्यान की ऊर्जा अचेतन में घुसकर यही काम करती है। जब तक ध्यान की अग्नि से चित्त की चिता जल उठती है, ध्यान की ऊर्जा से मन मिट जाता है, तभी हमें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। संसार में हम तब भी रहते हैं पर संसार हम में नहीं रहता, क्योंकि उसे आश्रय देने वाला उसे आमंत्रण देने वाला ये मन ही नहीं रहता, ये चित्त ही नहीं रहता। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र

0: जम्मूनगरस्य अन्ताराष्ट्रियसीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरान्तं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां अष्ट जनाः मृताः, अन्ये षट् जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2 लक्ष रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहराशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिकतन्त्रज्ञानसक्षमसीमाप्रबन्धनव्यवस्थायाः कृते महत्त्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2000वर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रियसुरक्षां, विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनः पश्चिम बंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिम बंगस्य मुख्यमंत्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋण प्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूतसम्मेलनं 26-2000वर्षस्य ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26-2000वर्षस्य फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26-2000वर्षस्य ICC महिला 20-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। इसके अलावा रात्रि 10 बजे हमारे लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। अब से कुछ ही देर बाद 7:10 पर सुनेगा श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संचार माध्यमों में हिंदी भाषा की स्थिति विषय पर डॉक्टर ललित जोशी की पूर्व प्रसारित वार्ता। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण। चर्चा होगी। ऑनलाइन फ्रॉड

रहें सावधान। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा, साइबर फ्रॉड से बचाएं अपनी बचत विषय पर श्री भूपेंद्र सिंह बिष्ट, शाखा प्रबंधक अनुभाग अधिकारी जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा से मंजू बोरा की बातचीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं दिन में 1:30 पर। खेती की बातें होती हैं दिन में 2:30 पर। हमारे युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनते हैं शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं की स्मार्ट तैयारी। और इसी कार्यक्रम में व्यक्ति विशेष के अंतर्गत हमारे आज के व्यक्तित्व होंगे बिरसा मुंडा। उत्तरायण होती है इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात शाम 5:45 पर। हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम किसानवाणी सुनते हैं शाम 7:00। इस कार्यक्रम में आज की बातों के विषय रहेंगे वर्षा आधारित खेती प्रणाली, खेत बचाओ अभियान, जैविक खेती के फायदे। और इसी कार्यक्रम में सुनेगा मृदा क्षरण रोकने में कृषकों का योगदान विषय पर सी तिवारी से भेंट वार्ता। शास्त्रीय संगीत का आनंद आप लेंगे प्रातः 8:30 पर और रात्रि 10:30। लोकगीतों के कार्यक्रमों में लोकमंजरी आप सुनते हैं प्रातः 7:30 पर। लोकसुर अपराहन 11:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत दिन में 2:00। शैलस्वर शाम 5:05 पर। और कुछ भक्ति गीत हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में शाम 6:41 पर। गीतों और गजलों के कार्यक्रमों में सब रंग सुनेगा सुबह 10:05 पर। सुगम संगीत दिन में 1:15 पर। सब रस रात्रि 8:00 और रात्रि 9:30 आप सुनेंगे गजलों का फरमाइशी कार्यक्रम महफिल। श्रोताओं फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जल। सुबह 10:35 पर सुरबहार। आज इस कार्यक्रम में एक ही फिल्म के अंतर्गत हमारी आज की फिल्म होगी तेरे नाम। सैनिकों के लिए सुबह 11:00, दोपहर 12:00 मेरी पसंद। 2:45 पर एक ही फनकार। अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत। शाम 7:40 पर फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 इंद्रधनुष। तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गायक थे श्रीकांत पारगांवकर, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ में नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा ने कहा, कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता ट्रैकर की जांच के लिए पुलिस ने दो अलग अलग टीमें गठित की। और कुमाऊं विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद ने राष्ट्रीय एवं अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

0: और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शहरी विकास मंत्री राम सिंह गेड़ा ने अधिकारियों से कुंभ मेले से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्चता है। उन्होंने सड़कों, पुलों, घाटों, पार्किंग स्थलों और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यातायात प्रबंधन, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी समय रहते मजबूत करने पर जोर दिया। श्री केड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने शंकराचार्यों को कुंभ मेला 2027 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि संत समाज और धार्मिक संस्थाओं का सहयोग मेले के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: देखिए, कुंभ मेले को लेकर के लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको एक कुंभ के रूप में, महाकुंभ के रूप में इसको हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुला करके आज यहाँ पर समीक्षा बैठक की है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मेला है, कुंभ मेला, ये ऐतिहासिक बने। तो लगभग सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और सबके कामों की हमने समीक्षा की। लगभग कहीं पर 70% काम हुए, कहीं पर 60% हुए, कहीं पर 50% हुए, कहीं पर 40% काम हुए हैं और हम अक्टूबर माह तक सभी कामों को कंप्लीट करने की स्थिति में हैं। और निश्चित रूप से सभी विभाग के माननीय अधिकारियों से मैंने कहा है कि आप अपनी प्रोग्रेस बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये मेला, कुंभ का मेला, ऐतिहासिक होगा और देश विदेशों से जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँचेंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।
0: सेतु आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि सेतु आयोग राज्य की भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके, इसके लिए संयुक्त रूप से सभी को प्रयास करने होंगे। सचिवालय में आयोजित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए एकीकृत स्मार्ट विलेज केंद्रों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं का आकलन कर दूरगामी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों को समन्वय बढ़ाकर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा ताकि ग्राम स्तर की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो सके। इस दौरान उन्होंने पंचायत स्तर पर चिन्हित सेंटरों के प्रतिनिधियों को स्थानीय लोगों से संवाद कर एक साल की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार जिले के विकास खंड भगवानपुर के ग्राम खेड़ी शिखोपुर में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत एक कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने प्रतिभाग कर किसानों को कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी के डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी ने मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती व जैविक खेती के बारे में किसानों को बताया और उन्हें आधुनिक व टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त उद्यान पशुपालन सहकारिता विभाग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इफको के प्रतिनिधियों ने भी योजनाओं में किसानों को मिलने वाले लाभों की जानकारी साझा की। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता युवती ट्रैकर की तलाश लगातार जारी है। गौरतलब है कि रामनगर निवासी युवती अपने दो साथियों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैक घूमने गई थी। इसी दौरान वह गोई क्षेत्र में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। उसके बाद से ही प्रशासन और विभिन्न एजेंसियां लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। अब खोज अभियान को दयारा बुग्याल क्षेत्र से बढ़ाकर डोडीताल ट्रैक तक बढ़ा दिया गया है। वहीं पुलिस ने

0: मामले की जांच के लिए दो अलग अलग टीमें गठित की हैं। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने बताया कि युवती की तलाश में टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। इसके अलावा स्थानीय भेड़पालक एवं ग्रामीण भी अभियान में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवती के साथ ट्रैक पर गए दोनों युवकों से लगातार पूछताछ की जा रही है।
1: देखिए, चूंकि ये युवती की मिसिंग कंप्लेंट है, तो इसमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक और हमारे उच्च अधिकारी भी इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है उनके द्वारा भी। तो इसमें हमने बेसिकली इसमें टीम्स बनाई हुई हैं, जिसमें एक में CO उत्तरकाशी के नेतृत्व में सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन की भी सारी टीम्स, चाहे वो डिजास्टर की हो या फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हों, वो लगे हुए हैं। साथ में हमारी SDRF, यहाँ तक कि IGBP, और हमने इसमें आर्मी की भी हेल्प ली थी, और यहाँ पे जो नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसकी भी एक टीम जो है वो भी यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली सर्च कर रही है, और अभी ड्रोन से भी हमने इसमें सर्चिंग करी है, और साथ में हमने इसमें स्वान दल, डॉग स्क्वाड का भी यूज़ किया है, और कल ही हम इसमें प्रशासन के द्वारा इसमें हेलीकॉप्टर से भी एक एरियल सर्वे भी हुआ था, जिसमें हमने गुमशुदा की तलाश की है। और वहीं समांतर में हम क्रिमिनल एंगल की, उसमें हमने एक CO के नेतृत्व में, जो CO बड़कोट है, उनके नेतृत्व में एक अलग से टीम का गठन किया गया है, जो सारी उसकी मतलब मिसिंग की सारी कॉल डिटेल्स और जो भी CCTVs हैं और बाकी जिनसे भी वहाँ जो लोग वहाँ पे उस दिन कैंप कर रहे थे उन लोगों से पूछताछ, और उसके सारे ही पहलुओं पर जो बहुत गंभीरता से और बहुत ही डीपली जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
0: उत्तरकाशी जिले में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिहीन बनाने के लिए घर घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यह महाअभियान आगामी 7 जुलाई तक निरंतर जारी रहेगा। जनपद के दूरस्थ गांव जखोल में BLO द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए गए। इस अभियान के तहत BLO घर घर जाकर न सिर्फ गणना प्रपत्र देंगी बल्कि उसे वापस भी लेंगी। साथ ही BLO हर परिवार को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगी और मतदाता सूची में पहले से दर्ज नाम, आयु, पता आदि का घर के सदस्यों के सामने ही मिलान और सत्यापन भी करेंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। वर्ष 2024-25 और 25-26 में सर्वाधिक अंक अर्जित करने पर MBPG कॉलेज हल्द्वानी को कुलपति ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर दूसरे और DSB परिसर नैनीताल तीसरे स्थान पर रहे। इनके साथ ही वैशाली पांडे नैनीताल और योगेश पांडे रुद्रपुर को वर्ष 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। वहीं वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए कशिश शर्मा, योगेश पांडे, शिवानी तथा विक्की मुखिया को कुलपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा, कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता ट्रैकर की जांच के लिए पुलिस ने दो अलग अलग टीमें गठित की और कुमाऊं विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद ने राष्ट्रीय एवं अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी।

तरिका तारा बुझलैनी हारा बुझद सोबा।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आई कार्यक्रम में हम आपको अब सुनवाते हैं नंदलाल आर्य का गाया ये लोक गीत।

0: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।

डूंगर राम की गाई इस छपेली के बाद आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं नंदलाल आर्य का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने डूंगरराम और नंदलाल आर्य के गाए कुछ कुमाऊनी गीत। इसी के साथ हमारा लोक मंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संचार माध्यमों में हिंदी भाषा की स्थिति विषय पर डॉक्टर ललित जोशी की पूर्व प्रसारित वार्ता।
1: सूचना के स्रोत और सूचना के उन्मुक्त प्रवाह का दारोमदार बड़ी हद तक जन संचार माध्यमों पर है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन संचार के सशक्त माध्यम हैं। भाषा और समाज का संबंध काफी पुराना है। भाषा किसी भी प्राणी के मनोभावों को व्यक्त करने की सशक्त और प्रभावी माध्यम है। इससे उसकी एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होती है। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है। इससे व्यक्ति का ज्ञान और इच्छा प्रकट होती है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के साथ, परिवार तथा समाज के साथ संबंध जोड़ता है। शब्द ही मनुष्य के शत्रु और मित्रों की संख्या निर्धारित करते हैं। इसे तोलकर बोलने वाला प्रतिष्ठा और प्रेम का पात्र बन जाता है और अनुपयुक्त अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला उसकी प्रतिष्ठा पर धूल धूसरित हो जाती है। शब्द, संकेत, चिन्ह और भाव भंगिमाओं, ये सभी माध्यम अथवा प्रकार हैं। सूचना तकनीक के इस युग में जिन भाषाओं ने तकनीक के साथ सामंजस्य संतुलन बना लिया, वे परिवर्तनशील हैं। उन्हें बोलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई और जो भाषाएं परिवर्तनशील नहीं हैं, उनका अस्तित्व समाप्त होने की ओर है। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्दों की संख्या बढ़ने के कारण इसका सरलीकरण हुआ है। अंग्रेजी के अनेक शब्दों को ग्रहण किए जाने के कारण कुछ विद्वान इसे हिंग्लिश नाम दे रहे हैं। तो अरबी, फारसी, पंजाबी, अंग्रेजी शब्दों की संख्या बढ़ने के कारण कुछ विद्वान इसे खिचड़ी भाषा कह रहे हैं। विद्वान इसे नई

हिंदी मिश्रित भाषा या खिचड़ी भाषा की संज्ञा दे रहे हैं। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। भाषा के बिना अभिव्यक्ति सम्यक रूपेण नहीं हो सकती। जनसंचार के परिप्रेक्ष्य में यदि कहें तो जनसंचार में एक या एकाधिक व्यक्तियों द्वारा या किसी माध्यम द्वारा किसी संदर्भ में संदेश प्रेषित किया जाता है और संचार उस संदेश को ग्रहण करता है, उससे प्रभावित होता है और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जनसंचार के लिए माध्यमों की भूमिका अपरिहार्य है। भाषा ही वह संचार व्यवस्था है जिसमें मानव के सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं। संचार माध्यमों, चाहे वह प्रेस हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके विकास की कल्पना भाषा के बिना नहीं की जा सकती। जनसंचार माध्यमों के विकास के साथ साथ भाषा का विकास और भाषा के विकास के साथ साथ माध्यमों का विकास होता चलता है। भाषिक प्रयोगों में समय और संसाधनों के अनुरूप परिवर्तन होते जाते हैं। आज नए भाषिक प्रयोगों, नई शैलियों, नए अर्थ भाषा कोश में जुड़ रहे हैं। आज हिंदी भाषा के साथ साथ तरह तरह के अनुपयोग किए जा रहे हैं। अखबार की बात कहें तो उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके। समाचार पत्रों में हिंदी के अलावा अंग्रेजी के भी प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पढ़ने समझने में आसानी हो रही है। आज भाषा में मिला जुला रूप हमें दिखाई पड़ता है। पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापनों की भाषा में खिचड़ी हमें प्राप्त होती है। इंग्लिश में बहुत सारे विज्ञापन अंग्रेजी भाषा में छपते हैं। हिंदी भाषा का अर्थ का अनर्थ हो जाना आज समस्या बन रही है, लेकिन फिर भी अखबार हो या टेलीविजन, वहाँ तमाम तरह के प्रयोग हो रहे हैं। हम देखते हैं कि आज विज्ञापन अधिकतर हिंदी भाषा में छपते हैं। टेंडर, सरकारी सूचना हिंदी में प्रकाशित हो रहे हैं। विज्ञापनों की भाषा का स्वरूप निरंतर बदल रहा है। उनमें हिंदी का स्वरूप भी बदल भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। मुद्रण माध्यमों की भाषा, हर कोई अपने पत्र पत्रिकाओं की बाजार में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में धन कमाने की लालसा ने जन्म लिया है, इससे मूल तत्व बिगड़ रहे हैं। अखबार की हिंदी सरल, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण, द्विअर्थकता से मुक्त, भाव व विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम व रोचक होती है। उसकी भाषा को अल्प शिक्षित व्यक्ति भी समझ लेता है और स्विज्ञ भी उसे पढ़ने में संकोच नहीं करता। समाचारों की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। इसके लिए तद्भव शब्दावली के साथ सरल तत्सम तथा प्रचलित अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति ही समाचार को महान बनाती है। समाचार में तकनीकी शब्दों का प्रयोग आवश्यक है, तभी किया जाना चाहिए। समाचारों में सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के शब्दों और वाक्य खंडों का बार बार प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। रेडियो की भाषा, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो निरक्षरों की आवाज़ है। निरक्षर युवा, बालक और प्रौढ़ सभी वर्ग के लोग उसे सुनते हैं, इसलिए भाषा अशिक्षितों को ध्यान में रखकर गढ़ी जानी चाहिए। भाषा इतनी सरल हो कि कोई उसे सुने वह समझ पाए। भाषा सरल, सुगम, स्पष्ट होनी चाहिए। हर कार्यक्रम में इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे प्रसारण में बोलचाल की भाषा का प्रयोग हो और देश में 90% आबादी आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़ी है। रेडियो में जो मनोरंजन कर रही है, उन मनोरंजन परक कार्यक्रम है, उनमें भी भाषा के प्रयोग पर बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रत्येक सूचना तंत्र के समान आकाशवाणी पर भी विज्ञापनों की खूब भरमार है, परंतु सूचना, समाचार, मनोरंजन, वार्तालाप आदि की भाषा कुछ न कुछ भिन्नता लिए होती है। रेडियो की भाषा में सरलता, स्पष्टता, परिशुद्धता तथा उपयुक्त शब्द का चयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। क्रियाओं में प्रायः वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। भाषा में ताजगी और नवीनता होनी चाहिए। यदि रेडियो पर विज्ञापन की बात आती है तो रेडियो पर विज्ञापनों की भाषा में नाटकीयता, रोचकता, विश्वसनीयता और सहजता अनिवार्य गुण होने चाहिए। रेडियो पर विज्ञापन की भाषा में खिचड़ी भाषा और भाषा अरबी फारसी का प्रयोग, इनमें आकर्षक और श्रुति मधुर शब्दों का चुनाव किया जाना चाहिए। स्वच्छंदता, परंपरा मुक्ति, प्रयोजन परकता, जीवन तथा नाटकीयता इस भाषा की अतिरिक्त विशेषता है। वर्तमान में देखा जाए तो भाषा बदल रही है। हमारे पुराने गाने यदि आकाशवाणी में सुने जाएं तो उनमें मधुरता है, क्योंकि उनमें भाषा का प्रयोग बहुत सार्थक रूप में दृष्टिगोचर होता है। टेलीविज़न की भाषा, टेलीविज़न
आज के समय में महत्व

महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम है। दूरदर्शन ने आज शहरी जीवन में घुसपैठ कर ली है। चैनलों के माध्यम से हम हर प्रकार की सामग्री दर्शकों के सामने परोसी जा रही है, चाहे वह समाचार का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, वार्ता का क्षेत्र हो, और या चाहे खेलों का क्षेत्र हो। और विज्ञापन तो इन सब का अनिवार्य अंग है। टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले समाचारों की भाषा के दो रूपों के दर्शन होते हैं। पहला, इस दृश्य श्रव्य माध्यम के समाचारों की भाषा के सामान्य सिद्धांत, और दूसरा कुछ निजी चैनलों के भाषा प्रयोग संबंधी अपने सिद्धांत। सामान्य सिद्धांतों के संदर्भ में कह सकते हैं कि इनकी भाषा सहज, सरल और सर्वग्राही होनी चाहिए। दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में होने की वजह से भाषा मानक उसमें दिखाई देते हैं, बहुत सटीक भाषा इसमें प्रयुक्त होती है। सैटेलाइट चैनलों में कुछ चैनलों में अंग्रेजी शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं, लेकिन फिर भी भाषा पर ध्यान दिया जाना उचित है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि हमारा बहुभाषी राष्ट्र है, और इस बहुभाषी राष्ट्र में अनेक

0: उसमें दिखाई देते हैं। बहुत सटीक भाषा इसमें प्रयुक्त होती है। सैटेलाइट चैनलों में कुछ चैनलों में अंग्रेजी शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं, लेकिन फिर भी भाषा पर ध्यान दिया जाना उचित है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि हमारा बहुभाषी राष्ट्र है और इस बहुभाषी राष्ट्र में अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भाषाओं के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। यहाँ एक सार्वदेशिक प्रचार भाषा के रूप में हिंदी को प्रचारित व प्रसारित किया जाता है। भारत में औद्योगिकरण के प्रभाव से अंग्रेजी के प्रयोग का आधिक्य होने लगा था, तो वैश्विक परिदृश्य में हिंदी का प्रभाव बढ़ा है। भाषा का प्रयोग जनसंचार क्षेत्र में उद्योग की भांति हो रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, जनसंचार माध्यमों और प्रयोजन मूलक दृष्टि से हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है और इस बहुभाषी राष्ट्र में अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भाषाओं के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। यहाँ एक सार्वदेशिक प्रचार भाषा के रूप में हिंदी को प्रचारित व प्रसारित किया जाता है। भारत में औद्योगिकरण के प्रभाव से अंग्रेजी के प्रयोग का आधिक्य होने लगा था, तो वैश्विक परिदृश्य में हिंदी का प्रभाव बढ़ा है। भाषा का प्रयोग जनसंचार क्षेत्र में उद्योग की भांति हो रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, जनसंचार माध्यमों और प्रयोजन मूलक दृष्टि से हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अब टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन और इंटरनेट सभी में भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है। साहित्य के भाषा ने अपना रूप विकसित किया है। सोशल मीडिया ने भी अपनी भाषा में नवीन प्रयोग किए हैं। हिंदी भाषा प्रमुखता से जनसंचार माध्यमों की भाषा बनी है। सोशल साइट हो या फिर मुद्रण और या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी में उसकी उपस्थिति सराहनीय कही जा सकती है।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संचार माध्यमों में हिंदी भाषा की स्थिति विषय पर डॉक्टर ललित जोशी की पूर्व प्रसारित वार्ता। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।

0: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता संपर्क राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग भुगतान ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील चीन रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय रोजगार आजीविका कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है भरपूर खाद्यान्न मिले सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो कृषि व्यापार और सहयोग ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े आपस में निवेश भी आए टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील चीन रूस दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा कृषि नवाचार जलवायु अनुकूल खेती कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा जिसका फोकस लघु किसानों महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया

0: बहुत बचत हो रहा है, मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमेरिकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
6: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments, tracking, and single window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. On the occasion, the Home Minister will also inaugurate newly developed stakeholder accommodation facilities at Dauki in Meghalaya and Srimantpur Land Port in Tripura, strengthening infrastructure support for border management and personnel. Shivang Mishra, Akashvani News, Delhi.
5: The five-day BRICS Agriculture Ministers meeting will begin today at Indore in Madhya Pradesh. The BRICS Agriculture Working Group meeting will also be held simultaneously under India's BRICS presidency this year. Details from our correspondent.
7: Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part. These include Brazil, China, Russia and South Africa. The conference runs till June 13. It begins with the meeting of the Agriculture Working Group. Key topics include food security, farm innovation, climate-friendly farming, agriculture trade and empowering small farmers. On June 12, a special dialogue among agriculture ministers will be held. It will focus on food security through small farmers, women and youth. On June 13, the main ministerial meeting of BRICS nations will take place. A joint document on agriculture cooperation and innovation will be prepared. Foreign delegates will also get a taste of Indore's rich culture and heritage. They will visit historic sites like Rajwada, Chappan Dukan, Sarafa and Mandu. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
5: Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy expressed condolences to the families of the deceased workers and announced an ex gratia of 25 lakh rupees for next of kin of the deceased and 10 lakh rupees for those injured. In addition, affected families will be allowed to continue residing in steel plant quarters, their children will receive free education, and one member of each family will be provided permanent employment. Mr. Kumaraswamy said Prime Minister Narendra Modi has also announced financial assistance of 2 lakh rupees to the families of the deceased and 50,000 rupees to the injured through the Prime Minister's National Relief Fund. To determine the cause of the accident, the Union Steel Ministry has constituted a special committee comprising experts from other steel plants. 8 people were killed in the fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday evening. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards health services.
8: In the past 12 years, the government has significantly strengthened India's health system, which is now more accessible, affordable and quality-driven. In 2018, Prime Minister Narendra Modi launched the world's largest health insurance program, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Under the scheme, free health insurance up to 5 lakh rupees per family per year is being provided to socio-economically deprived families. Under the scheme, more than 44 crore Ayushman cards have been created and treatment investment worth over 1,80,000 crore rupees have been provided. In a landmark expansion of the scheme in October 2024, the government launched Ayushman Bharat Vaya Bandhana, extending health insurance coverage to all senior citizens over 70 years. Talking to Akashvani News, Rohit Singh of Delhi said, with this card, he can now avail treatment at private hospitals as well.
9: My name is Rohit Singh. I will get great benefit from the Ayushman card. I will be able to get treatment in private hospital as well for myself and my family. With this, I will get 5 lakh rupees and my family will stay completely healthy and will able to get good treatment.
8: The government has also established 1,86,000 Ayushman Arogya Mandirs to provide primary health care at every neighborhood. The Pradhan Mantri Bharatiya Jan Oshadhi Pariyojana also providing quality assured generic medicines at significantly lower prices than market prices. Talking to Akashvani News, Dilip Kumar, a resident of Bihar, said that the medicines at Jan Oshadhi Kendras are available at very low prices.
10: If the medicines were not from the Jan Oshadhi Kendra, there would have been a lot of trouble in my life. Because here, medicines are very cheap. A 100 rupee medicine is available for just 10 rupees. I'm getting immense relief. The medicine is working well too, and my money is not being wasted either.
8: The government has expanded medical education to meet rising demand for health professionals. The number of AIIMS, which was only 8 in 2014, has now gone up to 23, while the number of medical colleges increased from 387 to 818. The Ministry of Ayush, formed in November 2014, established traditional medicine as an active part of India's health system. A total 942 Ayush institutions have been opened till 2025. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
5: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. Indian Embassy in Muscat, Oman, has confirmed the rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merrivex after a fire incident south of the Strait of Hormuz. The embassy also thanked the Omani authorities for their swift response. Earlier yesterday, during an interministerial briefing, the spokesperson of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said a fire was reported at around 1:30 p.m. Mr. Sharma said, based on the preliminary information received, all Indian seafarers are presently safe. He further informed that whether the ship was hit by a projectile is still being verified. Iran and Israel have announced to halt attacks against each other. The announcement was initially made by U.S. President Donald Trump, who said in a post on Truth Social that both sides are looking to do an immediate ceasefire and final negotiations on peace are proceeding. He, however, cautioned that the process could still be affected by what he described as ignorance or stupidity. Mr. Trump also made it clear that the blockade will remain fully in force until a final agreement is reached. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also said in a statement that their defense forces are holding attacks against Iran. However, Mr. Netanyahu warned that if Tehran makes the mistake of resuming attacks, Israel will respond with overwhelming force. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia as Israel and Iran traded fresh missile attacks today, triggering escalation in the region and jeopardizing the ceasefire. India has called on all parties to immediately de-escalate tensions and ensure that civilians are not harmed. In a statement, the External Affairs Ministry also appealed to conclude ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The Indian Embassy in Iran has also advised Indian nationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region. In the United States, a federal judge has ruled that the fee of $1 lakh for H-1B applications imposed by President Donald Trump was unlawful. U.S. District Court Judge Leo Sorokin in Boston, Massachusetts, said in a ruling that the policy imposes a tax on H-1B petitions without the requisite delegation by the Congress, a report from our correspondent.
11: U.S.-based Indian diaspora advocacy groups have welcomed the federal court's decision, contending that it was appropriate for preserving U.S. competitive edge in innovation and entrepreneurship. Chief of Policy and Strategy at the Foundation for India and Indian Diaspora Studies, Khande Rao Khan, said the court's decision restores predictability and fairness to the employment-based immigration system. Executive Director of Indiaspora, Sanjeev Joshipura, said all stakeholders connected with H-1B visas will have a sigh of relief after the court order. The H-1B program is one of the most sought after U.S. work visas that allows American companies to hire skilled global talent. Trump's order proposing a one

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का राग मियां की मल्हार में गाया ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत की थी नाना मूले ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने

0: त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। दुबई में एक सड़क हादसे में कई भारतीय कामगारों की मौत हो गई। दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। दूतावास ने बताया कि अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दांबुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी हिस्सा ले रही है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मांधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।
2: तुमसे मिलके
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सौम्या कांडपाल का प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्रोग्राम में।

परिंदा, कार्यक्रम के आरंभ में आपने इस फिल्म का गीत सुना, सुरेश वाडकर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। ये गीत सुनना चाहा था हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। कोटा रोड वाशी महाराष्ट्र से थे विठल सुरोशे, सुषमा और मायरा। इंदिरा बिहार दिल्ली से हमारे श्रोता थे डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, रियाज, बेबी अंसारी, एसडी राज और करुणा राज। इसी गीत को सुनना चाहा था यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटके और विनोद खटके ने। भोपालगढ़ राजस्थान से थे धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार और इनके ढेर सारे साथी। जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता थे खुश लक्ष्मी, खुशी, किट्टू और प्रियंका। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से हमारे श्रोता थे जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनके परिवारजन। इसी गीत के इंतजार में सनावद वैष्णव कॉलोनी से हमारे श्रोता थे मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अलमाश बानो, रमेश कौर और मोहम्मद शादाब खत्री।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य

0: सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी ने ये गीत लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान। इसी गीत को सुनना चाहा है राजस्थान ज्योतिनगर नोखा से कैलाश ज्योति, प्रकाश, निखिल, प्रिंस, ओजस्वी और प्रशांत ने। इस गीत के इंतजार में गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय और नसीम बेगम। चरौदा छत्तीसगढ़ भिलाई तीन से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद और इनके परिवारजन। दाऊद राय सहारनपुर से हैं, अनबर साबरी, सन्नू इरम साबरी और अमन साबरी। इस गीत के इंतजार में पंजाब से हैं गुरदर्शन लाल चंदोला, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। सहारनपुर चंद्रनगर से हैं सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग और एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, अंकित साहिल कांगड़ा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक और अपर्णा नामदेव और फरुखाबाद। साहबगंज चौराहा यूपी से हैं सुरेश चौरसिया, सरोज, सुबोध सलोनी, संजू, पूजा पिंकी चौरसिया, बाबू शिवा और शिवानी चौरसिया।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत, हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर. लखनऊ उत्तर प्रदेश हरदोई रोड से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, इमरान अनाज, नवाजिस शेख, दानिश आफरीदी और अमन आफरीदी. इसी गीत को सुनना चाहते हैं ज़िला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम पटेल, ज्योति शुभम, देवकिशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल. इसी गीत के इंतज़ार में गोकुल चौक गंगा जल सहरसा से हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुणेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छे लाल, बुल्कीवाली और फालना झा. अम्बाला हरियाणा कस्बा बराड़ा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका नूर, नमन गुरकीरत, सिमरत गुरशब्द सिंह राहुल और विजेंद्र कुमार जयजान. गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमारे श्रोता हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन. चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता और केशु खुराना. इसी गीत को सुनना चाह है करणवीन हाउस भटिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दीपेंद्र, वरिंद्र, सिमरन, एकता, दमन और अभिजीत. उत्तम नगर दिल्ली से हैं कमला रानी, बोधराज खोलवार, गीतिका भानु प्रकाश और सहारनपुर चंद्रनगर से हैं सुरेश आशु और आशुतोष नारंग. तो लीजिए पेश है आपकी पसंद आपके नाम.

0: Make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: आंखों से आंखें चार करने दो।
4: सात खून माफ। आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत उषा उत्थुप और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। गुलजार का गीत, संगीत है विशाल भारद्वाज का। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, अब्दुल रहीम, सोहन जोशी और पायल जोशी। ताजमहल लकड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पंवार, बेनजीर कौसर, साकिब पंवार, अलमाज बानो, छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, वनीता और हसनैन पवार। डाबकी रोडा कोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव, निशा रानी, नीलेश और आरव अर्पिता। इसी गीत को सुनना चाहते हैं श्री गंगानगर से प्रेम, मोनिका, मनीष, सहारण और इनके ढेर सारे साथी। जिला सिरसा हरियाणा खारियां से हैं सतवीर सिंह बजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू, नव्या और इनके ढेर सारे साथी। परी महल कासगंज से हैं आवाद खान, नावेल, आफरा, असलम सैफी, इल्मा सैफी और जाहिद अली। बोरखड़ा नैला छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं कुमार साहू, प्रमोद, वीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबलू और प्रियांशु साहू। और महाराष्ट्र कुंडावली से हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद, प्रदीप और प्रदीप्ति येमेकर। तो लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर सात खून माफ फिल्म का ये गीत। श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा था लाल माता सुदामा नगर जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल।

ज़िला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, राजकुमार बोडाना और कहना कृष्णा। गांव डाकघर निम्नाबाद ज़िला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, कमरजीत और इनके ढेर सारे साथी। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया, पवन राजे, छत्रपति संभाजी नगर से मंगलेश इंगले, संध्या, स्वराज और विराज। यवतमाल महाराष्ट्र से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्रव्या रामटेके। सर्वोदय इंटर कॉलेज जयंती अल्मोड़ा से त्रिलोक बिष्ट, हिमांशु पांडे, नवीन गोस्वामी, जमन सिजवाली, दीपक जोशी, लक्ष्मनाथ, मोनिका महेंद्र, कार्तिक गुंजन, भूमि रौतेला और इनके परिवारजन। सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नाजमाउद्दीन, कैसरुद्दीन और इनके परिवारजन। पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप और आरजू जजौरिया। और वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, गणेश।

गणेश, कार्तिक, परी, खुशी, वंदना, स्वाति, प्रयाग और इनके ढेर सारे साथी। तो आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं अमिताभ बच्चन और आरडी बर्मन की आवाज़ों में पुकार फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार आरडी बर्मन।

गांव लोहागढ़ पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज और गुरनूर सिंह। औरंगाबाद महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से अनिल कुमार कोटके, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश कोटके। सनावत एमपी से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। लेहगांव रेलवे महाराष्ट्र से दीपक कुरहाड़े, आशीष, कल्पना वंदना और इनके ढेर सारे साथी। गंज डुंडवारा से मुनव्वर मिर्ज़ा, अरबाज खान, सहनवाज खान और कशिश। एटा से हमारे श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, नावेद हसन, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, रसीद वारसी और अशरफ अब्बासी। छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा सोहम प्रांजलि और ताराबाई सोरगांवकर। बिनीपट्टी मधुबनी बिहार से हैं अरविंद कुमार, गुड़िया रानी, भव्या कुमारी, निवेश, नियति कुमारी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और इनके परिवारजन। अनारकली बाजार जगराव से दीपिका मल्होत्रा, सुनील पाठक, कमल गव्या, सुचा पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। और हरियाणा से हमारे श्रोता हैं बिल्लू सिंह, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा देवी, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र और इनके ढेर सारे साथी। आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं प्रिंस फिल्म का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। हसरत जयपुरी ने ये गीत लिखा है और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत। के मोहन और याशिता शर्मा की आवाज़ों में अमिताभ भट्टाचार्य ने ये गीत लिखा है, संगीत दिया है शंकर एहसान और लोयनी। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। गिरगांव महाराष्ट्र से हैं गजानन नादरे और अमातेलाव पांचाल। बीकानेर सुराणा मोहल्ला से हैं नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल शरद, मयंक विमल अभाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन और प्रमोद दम्माणी। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। चौखुनट्टी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और इनके परिवारजन। छत्तीसगढ़ धरती सरगांव से हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा। मालोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, विवान और इनके परिवारजन। जाफराबाद से हैं सुधाकर राज जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षिताई, संचित वयार, प्रथमेश सोहम, प्रणाली सानवी और इनके ढेर सारे साथी। और इसी गीत को सुनना चाहा है पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और इनके ढेर सारे साथियों ने।

पूजा के फूल। आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र किशन ने ये गीत लिखा है और संगीत मदन मोहन का है। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा, गांव नाथना। पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया। भवानीनगर पैठण से अरुण भावसाहब, आरती और सुनंदा। रामपुर से हमारे श्रोता हैं रफत साहब, राशिद, असद, फिरोज़ और नगमा। परभणी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रतीश और इनका पूरा परिवार। ओडिशा जगत सिंहपुर से हैं प्रमोद कुमार साहू, कविता सुबलक्ष्मी और शुभश्री साहू। और सीतामंडी से हमारे श्रोता हैं वसीम अकरम, रुबीना, आरिज वसीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, अरहान, हमजा, शाजिया शाहीन, नाजिया नूर और इनके ढेर सारे साथी। तो लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर पूजा के फूल फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने।

कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं प्यार में कभी कभी फिल्म का ये गीत। शान की आवाज में विशाल और राजशेखर ने ये गीत लिखा है, संगीत दिया है विशाल, सिराज और समरत ने। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से ही उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी, साहिल और भारती बघेल, निवासा से हैं अमोल और शारदा लोखंडे। इस गीत को सुनना चाहा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा ने। गंज डुडवारा से हैं शमसुल कामर राहिफ, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान, अनु उस्मान, कलीम अंसारी। जैन मंदिर कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरी नौरीन, आसना आसमा और मोहम्मद कैफ अंसारी। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्वी। और इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मालूट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ और साइना शर्मा ने।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आप सभी से मुलाकात आप सभी के फरमाइशी नगमों के साथ। तब तक के लिए सौम्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग

0: घटने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सुनीता राव के गाए इस नगमे के साथ।

0: 顶塔。
1: गहने बनवाए एकदम खड़े हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
5: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC applies.

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई ये गज़ल।

0: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: Make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
2: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.

अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई इसी गज़ल के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है सुगम संगीत का कार्यक्रम सफरंग। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सफरंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप दर्शन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी में सख्त प्रावधान किए जाएं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर दिन के समय बड़े वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक यात्रा दूसरे और अधिक चुनौतीपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है, जहां मानसून एवं प्रतिकूल मौसम प्रमुख चुनौती होगा। ऐसे में यात्रा को और अधिक सतर्कता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं से प्राप्त फीडबैक, शिकायतों एवं सुझावों की दैनिक समीक्षा करने और आवश्यकता अनुसार तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल आयुक्त व आईजी गढ़वाल को चार धाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के साथ ही श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के भी निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस को मुर्गियों और बकरियों की आपूर्ति कर 2,50,000 से अधिक रुपए की आमदनी की है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी ने बताया कि ये समूह संस्थागत बाजार से जुड़कर अच्छी आजीविका कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस व्यवसाय से प्रत्येक महिला को 10,000 से 15,000 रुपए की आमदनी हो रही है। उत्तराखंड बोर्ड में इस वर्ष सुधार परीक्षा के लिए 24,888 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि सुधार परीक्षा के लिए हाईस्कूल में 13,810 और इंटर में 11,078 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने छात्र छात्राओं की जानकारी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा। राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कुलपतियों को विश्वविद्यालयों के वेब अनुप्रयोगों को साइबर खतरों से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी लीक रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल जानकारी की सुरक्षा एक चुनौती है, इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में डीपीडीपी अधिनियम लागू किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, जानकारी गोपनीयता और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त, सक्षम और स्वाभिमानी भारत का सपना सच हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड भी नवोदय संकल्प पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो राष्ट्रीय विजन आकार ले रहा है उसका प्रभाव देश के प्रत्येक राज्य में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड इसका एक सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य साबित हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से आज उत्तराखंड में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि 13,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ने दिल्ली देहरादून के बीच दूरी और समय दोनों को कम कर दिया है। प्रदेश में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। आयोजनों को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित कॉमन योग प्रोटोकॉल के व्यापक प्रचार प्रसार व जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों व विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से योग को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, आज एक ही फिल्म के अंतर्गत आइए चलते हैं सिनेमा के उस गलियारे में जहां कहानियां सिर्फ पर्दे पर दिखाई नहीं जाती बल्कि दिलों पर लिख दी जाती हैं। साल 2003 सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं फिल्म तेरे नाम की। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ मनोरंजन नहीं थी बल्कि एक जज्बात थी, एक जुनून थी। दिल के आईने में अपनी तस्वीर देख ली हमने तो अपनी तकदीर आपके नाम लिख दी। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में सब कुछ खो जाता है, पर हमने तो अपनी जान भी तेरे नाम कर दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस राधे मोहन की जिसने गुस्से और गुंडागर्दी के बीच एक ऐसी मासूम मोहब्बत को जन्म दिया जो मुकम्मल तो ना हो सकी लेकिन अमर जरूर हो गई।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: कॉलेज का वो माहौल जहां एक बेखौफ गुस्सैल और दबंग लड़का राधे मोहन यानी कि सलमान खान राज करता है, एक ऐसा किरदार जिसके लंबे बाल, बीच की मांग और बेपरवाह अंदाज उस दौर के हर युवा का स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था। लड़के सैलून में जाकर यही कहा करते थे कि राधे भैया जैसा हेयर कट काट दो। लेकिन इस पत्थर दिल इंसान की जिंदगी में एंट्री होती है निर्जरा की, यानी कि भूमिका चावला की, एक बेहद सीधी, शांत और पारंपरिक परिवार की बेटी जो बिल्कुल अलग है। एक आग है तो दूसरी ठंडी छांव। शुरुआत नफरत से होती है, डर से होती है, राधे का वो पागलपन, निर्जरा का वो सहम जाना, लेकिन धीरे धीरे राधे का वो निस्वार्थ प्यार, उसकी सच्चाई निर्जरा के दिल को पिघला देती है। जब निर्जरा को एहसास होता है कि राधे का गुस्सा सिर्फ दुनिया के लिए है, उसके लिए सिर्फ असीम समर्पण है, तो वो भी इस प्यार में डूब जाती है। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब निर्जरा का प्यार राधे को एक बेहतर इंसान बना रहा होता है, तभी किस्मत अपना सबसे क्रूर खेल खेलती है। आगे क्या होता है बताएंगे आपको, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC.
2: फिल्म का अब एक दूसरा हिस्सा आता है जिसने थिएटर में बैठे हर दर्शक की आंखों को नम कर दिया। कुछ गुंडों के हमले में राधे के सिर पर गहरी चोट लगती है और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है।

एक पल के लिए सोचिए, वो लड़का जो पूरे शहर को अपनी उंगलियों में नचाता था, वो आज जंजीरों में जकड़ा हुआ एक मानसिक आश्रम में बेबस पड़ा है। सलमान खान ने इस हिस्से में जो अभिनय किया है, उसने साबित किया कि वो सिर्फ एक एक्शन स्टार ही नहीं बल्कि एक अद्भुत अभिनेता भी है। उनकी आंखों का वो खालीपन, वो चीखें, वो बेबसी दिल को चीर देती हैं। और दूसरी तरफ निर्जरा, जो हर रोज उसके ठीक होने की मन्नतें मांगती है, वो आश्रम में जाकर उस बिखरे हुए राधे को देखती है। दोनों पास होकर भी कितनी दूर हैं। यहाँ आकर ये फिल्म एक पारंपरिक प्रेम कहानी से ऊपर उठकर एक दर्दनाक दास्तां का रूप ले लेती है।

उमेश रेशमिया का वो अमर संगीत, उदित नारायण अलका याग्निक की वो जादुई आवाज जिसने लागी लगन, ओढ़नी, तुमसे मिलना जैसे गानों को आज भी हर प्रेमी के दिल की धड़कन बना दिया है। आइए अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की जिसे देखकर कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। राधे ठीक होकर आश्रम से भागता है अपनी निर्जरा से मिलने, लेकिन निर्जरा जो राधे के बिना किसी और की होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, वो दुनिया को छोड़ चुकी होती है। अब राधे के पास मौका था, वो ठीक हो चुका था, वो नई जिंदगी अपनी शुरू कर सकता था, लेकिन जिस राधे का वजूद ही निर्जरा से था, वो बिना उसके इस दुनिया में रहकर करता भी क्या। वो खुद को वापस उसी आश्रम की जंजीरों में सौंप देता है। वो आखिरी सीन जहाँ बूढ़ा राधे आज भी अपनी उंगलियों में मोर पंख लपेटे निर्जरा की याद में खोया हुआ है, वो सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया।

दोस्तों, फिल्म तेरे नाम हमें सिखाती है कि प्यार में पाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी अधूरापन भी किसी कहानी को मुकम्मल कर देता है। इस फिल्म में राधिका गुस्सा और कुछ जिद आज के जमाने के नज़रिए से भले ही अलग दिखे, लेकिन उसके प्यार की जो पाकीज़गी थी, जो निस्वार्थ भावना थी, वो आज के फास्ट फूड वाले प्यार के दौर में मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये फिल्म सिखाती है कि समर्पण क्या होता है। तो दोस्तों, तेरे नाम की इसी दर्द भरी मगर खूबसूरत दास्तां के साथ आज के कार्यक्रम को अब यहीं पर संपन्न करते हैं। उम्मीद है कि राधे और निर्जरा की इस कहानी ने आपके दिल को एक बार फिर से छुआ होगा। तब तक के लिए नमस्कार।

दौर में मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये फिल्म सिखाती है कि समर्पण क्या होता है। तो दोस्तों, तेरे नाम की इसी दर्द भरी मगर खूबसूरत दास्तां के साथ आज के कार्यक्रम को अब यहीं पर संपन्न करते हैं। उम्मीद है कि राधे और निर्जरा की इस कहानी ने आपके दिल को एक बार फिर से छुआ होगा। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to Rs. 25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं हम हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। मुकेश और साथियों की आवाज़ों में प्रेम धवन ने ये गीत लिखा है, संगीत उषा खन्ना का।

बॉर्डर। आइए फौजी भाइयों, आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये गीत रूप कुमार राठौर, शंकर महादेवन, सोनाली राठौर और साथियों की आवाज़ों में। ये गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: Make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply. Nexa.
2: फौजी भाइयों, कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं चख दे इंडिया फिल्म का ये गीत, सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाज़ों में। जयदीप साहनी ने ये गीत लिखा है और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

फौजी भाइयों, चक दे इंडिया फिल्म के इसी गीत के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सैनिकों के लिए जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दीपा चौहान के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के साथ।

0: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
0: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
3: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.

0: AIR at 90.
1: लोकसुर का समापन कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ, गायिका हैं वीना तिवारी।

0: AIR at 90.
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू बांगते का स्नेहिल नमस्कार। ये गाना सुनकर आपको ज़रूर याद आए होंगे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। अमीषा पटेल एक चर्चित मशहूर अभिनेत्री रही हैं और आज हम उनको ख़ास तौर पर याद कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो अमीषा पटेल को उनके जन्मदिन की हम देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं और आज उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से सजा है, गुलजार है हमारा कार्यक्रम मेरी पसंद।

रुद्र अमीषा पटेल का जन्म 9 जून को 1976 को मुंबई में हुआ। वैसे वो एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अमीषा पटेल के पिता का नाम अमित पटेल है और उनकी मां का नाम आशा पटेल। अमीषा के एक भाई हैं जिनका नाम अश्मित पटेल है और पेशे से वो भी अभिनेता और मॉडल रहे हैं। अमीषा जब मात्र 5 साल की थी तभी उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य में प्रतिभाग किया था और यहीं से शुरू हुआ था उनका नृत्य का जो कौशल है वो भी उनमें समाया है। और अमीषा का नाम उनके पिता के नाम के अक्षर अमी और शाह उनकी माता का नाम आशा से लिया गया तो बन गया अमीषा। पढ़ाई की बात करें तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अव्वल आती थी और अपने स्कूल की पढ़ाई उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनो स्कूल मुंबई से पूरी की। अपने स्कूल में साल 1992-1993 के दौर में वो हेड गर्ल भी रहीं और इसके बाद उन्होंने टप्स यूनिवर्सिटी अमेरिका से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय नौकरी भी की थी एक निजी संस्थान में। उनके माता पिता चाहते थे कि वो नौकरी करें लेकिन अमीषा का झुकाव और रुझान फिल्मों की तरफ था। अमेरिका से भारत लौटने के बाद अमीषा ने सत्यदेव दुबे के थिएटर में जुड़ने का निर्णय लिया और अपने मम्मी पापा को उन्होंने मना लिया और उन्हीं के हाँ करने के बाद उन्होंने उस थिएटर में उर्दू प्ले नीलम में अभिनय किया और यहीं से शुरू हुआ अमीषा पटेल का अभिनेत्री बनने का सुहावना सफर।

तो श्रोताओं, अमीषा पटेल ने थिएटर के कुछ नाटकों में अभिनय से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने कई मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा और कई जाने माने ब्रांड्स के लिए वो मॉडलिंग करती नज़र आईं। साल 2000 अमीषा पटेल के लिए बहुत ही ख़ास साल रहा और इस साल उन्हें उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला जब उन्हें जाने माने निर्माता निर्देशक राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है में काम करने का सुनहरा अवसर मिला। इस फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल फिल्म रही और इस फिल्म ने अमीषा पटेल को रातों रात स्टार बना दिया और उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को बेहद पसंद आया। ये उस साल की व्यावसायिक रूप से सबसे सफल फिल्मों में से एक रही और वहीं अवार्ड्स के मामले में भी इस फिल्म का एक तरफा जलवा रहा। इस फिल्म ने अलग अलग कैटेगरीज में कुल 92 अवार्ड अपने नाम किए और इतिहास रच दिया और इस वजह से इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। इस फिल्म के लिए जहां ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर और बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वहीं अमीषा पटेल को सिने अवार्ड्स में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। कहो ना प्यार है फिल्म अमीषा पटेल की ज़िंदगी में मील का पत्थर साबित हुई।

श्रोताओं, कहो ना प्यार है फिल्म से जहां अमीषा पटेल को बेहद लोकप्रियता मिली, वहीं साल 2001 में फिल्म आई कदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म से भी अमीषा को बेहद लोकप्रियता मिली और साथ ही इस फिल्म के जरिए वो दर्शकों के बीच बेहद सराही गईं। इस फिल्म में निभाया गया उनका सकीना का किरदार आज भी दर्शकों के बीच बेहद पसंद किया जाता है और इस फिल्म के लिए उनका जब सिलेक्शन हुआ तो वो आसान था। कहते हैं कि इस किरदार के लिए बड़ी भारी संख्या में अभिनेत्रियों ने ऑडिशन दिया था और सफलता मिली अमीषा पटेल को। कहा जाता है कि इस रोल के लिए 500 से ज़्यादा लड़कियों ने ऑडिशन दिया और इतना ही नहीं, अमीषा पटेल ने लगभग 12 घंटे तक लगातार इस किरदार के लिए ऑडिशन दिया था और उन्हें जब सफलता मिली तो जाहिर है इस फिल्म ने भी उन्हें बेहद अच्छी खासी लोकप्रियता दिलाई और लोगों के बीच वो एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर स्थापित हुई। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म गदर एक प्रेम कथा, इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता थे सनी देओल और ये फिल्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अलग हो रहे वक्त की एक प्रेम कहानी को दर्शाई गई फिल्म थी और इस फिल्म के ज़रिए भी अमीषा को जहां बेहद दर्शकों ने सराहा, वहीं इस फिल्म के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए और बाद में इस फिल्म का सीक्वेंस भी बना था। बहरहाल, एक गाना जो बेहद चर्चित रहा उस दौर का, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, फिर आया साल 2002। इस साल अमीषा पटेल की एक और बेहद सफल फिल्म रिलीज़ हुई, नाम था हमराज। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा

श्रोतो, अमीषा पटेल की फिल्मों की यो तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ चर्चित फिल्मों के नाम आपको याद दिला दें। कहो ना प्यार है, गदर एक प्रेम कथा, क्रांति क्या यही प्यार है, हमराज, वादा, मेरे जीवन साथी, हमको तुमसे प्यार हुआ, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, भूल भुलैया, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, रेस टू जैसी चर्चित फिल्मों में उन्होंने अपने बेहतरीन किरदार के ज़रिए अपने बेहतरीन अभिनय का परिचय दिया। साल 2008 में अमीषा पटेल की फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, इस फिल्म में उन्हें अभिनय करते हुए देखा गया। इस फिल्म में उन्होंने एक गाने पर डांस भी किया था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, और गाने का नाम था लेजी लम्हे। और ये फिल्म यूं तो बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन अमीषा पटेल के अभिनय की सभी ने खूब तारीफ की।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: तो श्रोताओं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वहाँ की फिल्मों में भी उन्होंने भाग्य आजमाया और अमीषा पटेल ने फिल्म बद्री के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता पवन कल्याण के साथ अभिनय किया और ये बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और हिट फिल्मों की सूची में ये फिल्म दर्ज की गई। इसके अलावा परम वीरा चक्र में अभिनेता नंदू मोरी बालकृष्ण के साथ भी वो नज़र आई और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। इसके अलावा कई पुरस्कार भी उनके नाम हैं, जैसे साल 2001 में फिल्म कहो ना प्यार है के लिए दो बार उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू और सेंसेशनल डिस्कवरी का अवार्ड मिला। 2001 में ही फिल्म कहो ना प्यार है के लिए फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। साल 2002 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 2002 में ही फिल्म गदर एक प्रेम कथा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस ज्यूरी चॉइस का अवार्ड भी उन्हें मिला। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो गदर फिल्म में उनके अभिनय को और फिल्मों में भी उनके अभिनय को बेहद सराहा गया। आज भी वो फिल्मों में सक्रिय हैं और मॉडलिंग की दुनिया में और फिल्म निर्माण की दुनिया में भी उन्होंने कदम रखा है। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यही कामना करते हैं कि आगे भी वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिल्मों में अपना जलवा बिखेरते रहें। आज मेरी पसंद में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए अंजू पांगती को। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण।

0: ए पण कार्यक्रम सुनने सब रेडियो दगड़ियों को मी मंजू बोरा प्यार भरी नमस्कार स्वागत छो दगड़ियों आपु सब जानिया अपन मन पसंद कार्यक्रम ए पण आजक अंक में दगड़ियों मन की जून में हर चीज अपन जग में कीमत छो के न के चैन पड़ू हर काम में डबल लागनी अब वो डबल जब हमार गाड़ी कमाई हो तो वी प्रति हमार सावधानी सतर्कता और जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाए तो यस मैं आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड होने लग रो जरूरत छू कि वीर सावधान रही जो जबकि हम कुनु की विश्वास पर रिश्ते कायम रोनी विश्वास एक बार ठुल चीज छू लेकिन जब ऑनलाइन फ्रॉड की बात है तो वहाँ यस कौन जरूरी है जहाँ की कैपरीले विश्वास जन करिया करे कोई ल मन की दगे अपन UPI नंबर छू पिन नंबर छू OTP छू और CVV पासवर्ड छन जो कभी साझा नहीं करन चाहिए कोयले पेमेंट जब हम प्राप्त करनू डबल लेनू तो वहाँ पिन लिखने जरूरत नहीं पड़े सावधान उड़क लीजिए अपन OTP और UPI क्या कर नहीं बतूँ चाहे कोई अनजान लिंक पर क्लिक लेनी करण छू कभी कोई लॉटरी लाग रहा है कभी कुछ नहीं उन्हें झांस में लेनी उड़ जाओ अपने डबल प्राप्त करण छिन जब तो QR कोड के स्कैन ले जन करिया कोई अनजान व्यक्ति दगर वीडियो कॉल ले जन करिया देखो उसी है तो हम एक साधारण मनखी ने कभी कभी जब कोई भय या भ्रमक स्थिति है तो उभर कर असहज चिताई तो तुरंत जो राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर हुनी उमें फोन कर ली और जो हमार बैंक छू वहाँ जब अपन समस्या बतबे समस्या समाधान कर लेना चाहे दगड़े उसी तो हर वक्त हर काम में सावधान होने चाहे लेकिन डब्लू मामलों में जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होने लग रहा विल विशेष कर सावधान रहिया सावधानी सतर्कता ही एक बचाव छो अब ये बात हम आगे फिर करू अब लोगों दगे और बढ़नू कार्यक्रम में आगे और सुनू या संदेश
1: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
2: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: अरे वाह पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी
4: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है
5: आप भी ध्यान रखें सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर
0: दगड़े अब सुनो कार्यक्रम में आगेल एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जय एक विषय छू साइबर फ्रॉडल बचाओ अपन बचत कर यम हमर दगा बातचीत करण लाग रही श्री भूपेंद्र सिंह बिष्ट शाखा प्रबंधक अनुभाग अधिकारी जिला सहकारी बैंक अलमाड़वटी
6: दगड़ियों हम जब ले अपन अपन कार्यक्रम में बातचीत करनू तो कई बार नई नई विषयों के लिए भेर हम चर्चा करनू और नई नई विषयों संबंधित हम क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता ला करनू आज अब अखत को देखते हुए जो दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जाने नंतिनु स्कूल फीस है शिक्षा है स्वास्थ्य है सब चीज में आजकल हर जगह डबल आवश्यकता पड़ने जाने अनजाने कब हते क्या क्या बीमारी पनपन फगी जे बार में हमको पता लेनी हो और हर चीज में अगर कोई चीज काम तो सब पहली डबल अगर बातचीत लाग रही श्री भूपेंद्र सिंह बिष्ट वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अनुभाग अधिकारी अलमाड़ जो एल वर्तमान में जिला सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय माल रोड अलमाड़ में कार्यरत छन सबोहर पहले तो सर आज अपन कार्यक्रम में आपको स्वागत छू नमस्कार
7: नमस्कार
6: सर हम ये जानना चाहू कि अगर हमें नंतिनु भविष्य को संवार छू जब तो एक नन्नन बचत शुरुआत हमको करन चाहिए तो नन्नन बचत शुरुआत करने के लिए कोई एक निर्धारित आयु सीमा है या जन्म बटी हम प्रारंभ कर सकनो
7: जैसे कोई नन बच्चे छू वह नाम अगला खात खुली जा सकू जो हूँ माइनर अकाउंट कही जा माइनर अकाउंट में यो सुनू की जो गार्जियन वह देख रेख वह हस्ताक्षर वगैरह सब गार्जियन खोल जैसे बच्चा नामक खात खुली जा सकू लेकिन मैं माइनर अकाउंट मानी जा लू जब वो बच्चा 18 साल हो जाए तो खुद स्वयं ही वह आधार और वह हस्ताक्षर द्वारा फिर वह नाम हो जा लू तो सपोज कोई नन बच्चे छू वह भविष्य लीजिए मैं बाप अपने बच्चे भविष्य लीजिए छोटी छोटी बचत करके कुछ ऐसा जम करना चाहनी तो मैं बच्चा नामक बचत खाता खोल सकनी और वह भी अलावा से आरडी से आवर्ती जमा कुनी होती मासिक किस्त आधार पर लोग जम करी जा जमे 100 रुपए में है 100 रुपए में है 500 रुपए जो ले मतलब वह गुंजाइश हिसाब पर छोटी छोटी बचत एक जरा कुल रकम को इकट्ठे करी जा सकू और जो आरडी ही एक साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले खुली जा सकी और बच्चे नामक ला हम खा खुल सकू लेकिन वह ऑपरेटर जो हॉल वो वह मैं बाप हॉल जब चली वो 18 साल अग्नि हो
6: सर यस तो हम बात करना कि बच्चा स्वर्णिम भविष्य लीजिए हमको अल्लाह बट्टी बचत करनी चाहिए कभी देखो हमारे यहाँ पहाड़ में तो उदो भाग रोजगार छूना कोई नन्न दुकान चलूनी कोई कुल काम करनी कोई दिन दिहाड़ी मजदूरी करनी कोई रोजगार तलाश में अपू घर बटी मिलू दूर जरे कसी मेरे घर भरण पोषण हल कसी मैं नंदिन आगिल बढ़ाल कभी कदू कष्ट कर भेर मैं डबल कमूनी और डबल कमा भेर एक एक पाई जोड़ भेर अपन नंदिनो भविष्य को सुधारना खवारना वो कोशिश करते रहनी लेकिन आज वर्तमान में जब सुनन में हूँ हम देखनो कि साइबर अपराध ये एक विकराल रूप में आज सामने आ रहो जिसकर हमारे गौनुपनक जो दिदबैनी होनी वो थोड़ा सरल होनी उदू पढ़ी लिखी लेनी होनी और इदू जो डिजिटल आजकल हगो वो हबे ले वो दूर होनी कोई उनको ठग ले दू तो ये साइबर अपराध जो ठगी आजकल हरे तो हमारे दिदबैनी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो रूनी वो कोई हिसाब सतर्क उनको रूचे है की लगी एल अपो और मेरी वार्ता का हमारे ग्रामीण दिदबैनी ले सुन लग रही
7: आजकल समय जदू आगिल का एडवांस होना उसी हिसाब से साइबर अपराध ल बढ़ना कि आजकल डिजिटल अरेस्ट नाम सुना उन्होंने कोई बुजुर्ग जो चाहे रिटायर है कुछ पैसे खाते उन्हें खाते में ज्यादा पैसे जानी या कोई नवयुवक से या कोई कमाने वाले व्यक्ति से तो यह टाइप लोग लीजिए या कोई जैगला खाद बैंक में छू बचत खात वह एक लीजिए आजकल क्या हो रहा है की साइबर अपराध में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ना है इनमें यह होना की जो हम फोन होनी और मैसेज हूँ और जो वह एक लिंक हूँ उस लिंक के लिए कदर नहीं जानते हमें क्लिक कर भी यहाँ जाओ वहाँ जाओ फिर ओटीपी आल और एक इमेज सबमिट करो यह साइबर निकरण है और साथ में जो तुमको फोन आल उमें ये ओटीपी से ओटीपी बताओ बहुत सारे आजकल एक नई तरीके साइबर अपराधों की अलग अपना रहो गैस करने की मतलब अनुमान लोगों ने की निमित जीत बुलानो ने तो दाद बुलानो या ने तो बिरादर बुलानो या ने तो दोस्त बुलानो की ये सोच मेरे पैसों जरूरत है मेरे 20,000 गूगल पे कर दे मेरे 50,000 गूगल पे कर दे या 500 गूगल पे कर दे 1,000 गूगल पे कर दे तो यसले बिना जानकारी के आवाज बदल भी ले या रिश्ते नाम भी ले लोग ठग भी नहीं उले निकलना चाहिए साथ में सबसे पहली ये ध्यान देना चाहिए कि कोई ना कभी ना हो इस टाइप का कॉल होनी तो मतलब फोन होनी तो तुम्हें ओटीपी नहीं बटून चाहिए ओटीपी बता देना क्या हॉल की उम्र तुम्हें एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बटून चाहिए दूसरा नेट बैंकिंग में पासवर्ड नहीं बटून चाहिए और कोई ना तुम्हारे बैंकिंग में पासवर्ड से पासवर्ड को नहीं बटून चाहिए जैसे एटीएम का पासवर्ड से नेट बैंकिंग पासवर्ड से जो लोग पासवर्ड से उनको नहीं बटून चाहिए फिर लास्ट में जब पेमेंट हो जब भुगतान धनराशि खत्म जाने की तैयारी हुई तो एक ओटीपी ओटीपी नंबर नहीं बटून चाहिए लेकिन ये लोग की होनी बहुत साकिर किस्म की होनी है जो आदमी को अलग अलग प्रपंचों द्वारा फसोड़ में ला रही जब कभी लो हो कोई फोन हूँ बिहार बटी की बैंक बटी बुलानो कभी कोई ले बैंक बटी फोन नहीं करन कभी बैंक बटी फोन नहीं करन बार बार जागरूक करी जाना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वो मैसेज लो उन्हें और यो टीवी मतलब बताई जा और यो सोशल मीडिया माध्यम मतलब बताई जा कि कोई फ्रॉड कॉल उन्हें बैंक कभी कॉल नहीं करनी जी सर फ्रॉड कॉल नहीं बैंक कॉल कभी ऑन तो मिली तो तुम कभी ले टाइप ऑफ परेशानी है दूसरे दिन बैंक में संपर्क कर लो या फोन कर लो यदि दिक्कत है पहले उनको फोन को काट दे
6: बिल्कुल सही बात बताया सर आप अगर जैसे कि हमारे ग्रामीण जितबैनी

0: थोड़ा सरल किस्मक हुनी और पढ़ी लिखी ला कम हुनी। यस मैं कहूँ की जो साइबर अपराध वाल कोई फोन अगोय की हम तुम्हारे रिश्तेदार बुलाना होगा बेर और कहले दुख बात कर दी जब हमारे दीद बहनी छिन चाहे मीच हो हम घबरा जानू जल्दी। यस मैं सब और पहली तो घबराण नहीं है और
1: बिल्कुल नहीं चाहे घबराओ
0: और आपको फोन का कार्ड भेर हम यस कर सकनू ने सर की फोन काट दी और जो आपको रिश्तेदार फोन नंबर हमारे पास छू जब पहली उगो फोन लगा ली
1: फोन और इमें येलो होना आजकल ये फेसबुक डुप्लीकेट आईडी ले बड़े जी नहीं एक ये फ्रॉड ले चल रहा उमे क्यों होना की जैसे भूपेंद्र बिस्ट में नाम भूपेंद्र बिस्ट से मेरा नाम है ये फेसबुक आईडी बढ़ जाए उमे क्यों हाल फेसबुक मैसेंजर द्वारा तुम्हारे पास मैसेज जाए और हम गाँव घरों में उसमें जानकारी अभाव थोड़े बहुत पढ़े लिखे आजकल सब लोग छे लेकिन कभी कभार क्यों हूँ झांसे में आ जानी ना तो कॉल में तो यार गूगल पे कर दे क्योंकि 5000 रुपए चाहिए भेज दे कोई दाँच भूली पड़ गए फेसबुक आईडी ले पड़ी नहीं उन्हें एक साधन हो रहा था जो करने
0: तो हमको यह बात तक ध्यान धारण चाहिए सर कि हम अपन नंतिनो भविष्य का संवारना के लिए नन नन बचत जो अपन गार कमाई हम करने लाग रहे उमे हमको सावधानी धारण चाहिए जैसे कि अल्लाह आपको मगर बतून लग रहा था हमारे भविष्य के संवारना के लिए जो बचत संबंधी वार्तालाप एल करण लाग रहे तो यह मैं और को ऐसी योजना चेन जो नंतिनो को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा दे जानी।
1: यस सबसे पहले तो बचत खाता खोलो पड़ा बैंक में जो आजकल जागरूक हूँ सब पढ़े लिखे सबको जानकारी में महिलाएं हैं वो कभी बाजार नहीं आ सकन कभी बहुत परेशानी दूध बेचनी लेकिन उनके लिए हमेशा बचत खाता खुलना चाहिए तो छोटी छोटी बचत लीजिए चाहे बैंक से पोस्ट ऑफिस जहाँ तुम नजदीक वाला आदि खोल सकता मासिक किस्त जमा कर दे फिर वो एक छोटी छोटी बचत है जगह इकट्ठा हजार फिर वह एक एफडी बढ़ा सकता उन्हीं वाले टाइम में जब बच्चे सहन हजार तो तुम्हें आया अनुसार गार्जियन आया अनुसार उनकी शिक्षा ऋण ले लो शिक्षा ऋण में जैसे एजुकेशन लोन आजकल बहुत किस्म एजुकेशन महंगे हायर एजुकेशन में काफी पैसा खर्च होना तो वेल जिला एजुकेशन लोन और थोड़ा बहुत उम्र बचत करने बचे लीजिए तो उम्र क्या होगी तुम्हें मतलब बचे को पढ़ने लीजिए सुविधा हो और थोड़ा पूंजी खर्च होगी तो परेशानी नहीं हो साथ में तुम्हें चेली पे कर मकान बढ़ो दुख तकलीफ से कटक है यह जल बचत भावना धरण से और उम्र बैंक द्वारा बहुत सारी सुविधा दी जैसे बचत खाते आरडी से फिक्स डिपोजिट ये चीज द्वारा बैंक में धीरे धीरे छोटी पूंजी को हम फुल बढ़ा सकूं।
0: बिल्कुल ठीक बात है सर अबुल जैसे की और नंतिनु को जेब खर्च ला दृढ़ जाए ताकि वो खुद समझो कि वो कदू खर्च करन छू कभी की बच्चे को डबल खर्च करना एक आवश्यकता अनुसार उनका आदत पड़ जाए नतर क्यों की नंतिनु को हम 100 दियो 100 खर्च करा 1000 दियो 1000 खर्च करा सर जैसे की हम बातचीत करने लग रहे हो कि नंतिनु स्वर्णिम भविष्य के लिए बचत बहुत ज्यादा जरूरी छू कभी आप तो बैंक में शाख प्रबंधक रूप में यहाँ कार्यरत छा तो आप हमको यह बताओ की यह बचत जो भावना छू ये घर बैठी कैसे विकसित करी जो
1: देखो यस पहले बच्चन में ये भावना जगू चाहिए की हम छोटी छोटी बचत करके कसी पूंजी पे हागिल कर एक थूल पूंजी बढ़ोली वह द्वारा तुम एक गुल्लक धर सचा बच्चे को सिखोने लीजिए समझोने लीजिए देखो बेटा इस तरह जो जेब खर्च मिलना तुमको उम्र भी तुमको 5 रुपए मिलना से तुम 1 रुपए 50 पैसे में डालो धीरे धीरे करके गुल्लक द्वारा ला वो छोटी बचत को बड़ी बढ़ाई जा सकू फिर वह भी अलावा जैसे गुल्लक तो चलो एक घरेलू परंपरा है हमारी लेकिन मेन बैंक में बचत करें जैसे बचत खाता खोल दियो बच्चा नामक या आप नामक पैसों को धीरे धीरे इकट्ठे करते रहो जो जुलो तुम्हारे जदूल कमाई में और एक समूह में चलनी जैसे महिलाएं चले हमारे महिला गांव में घरों में उन लोग आजकल सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रहे समूह समूह माध्यम बचत है की उम्र डेढ़ मिल जाए उन्हें व्यवसाय ले तुम को बड़ा सचा पड़ो जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो ग्रामीण महिला थी दूर पास पाने लीजिए और खेती कार्य लीजिए और ये ऊन कपड़ा बुनाई लीजिए बहुत सारे उद्योग सरकार द्वारा प्रायोजित है उन्हें एक बचत है खोलूम पड़ू जब मैं हर नहर सदस्य को जम करूँ पड़ू 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए एक वो माध्यम में सिर्फ महिलाओं जो समूह है समूह माध्यम में सरकार बहुत सारे प्रोत्साहन दे रहे उन्हें सब्सिडी दे रही और हम जैसे हम कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी कर रही थी मैं हमारे यहाँ दीनदयाल किसान कल्याण योजना चल रहा है जमें बिना ब्याज का 3 लाख रुपए पुरुष और महिलाओं को ऋण दी जा सके और तुम्हें बचत खाता खोली होला तुम धीरे धीरे जरूर हमारे दूध आय में तुम गोर भैंस पाए रही या मौन पालन कर रहे हो तुम व्यवसाय कृषि कार्य करना है सब्जी उत्पादन करना है तो वह द्वारा धीरे धीरे जरूर रोज कमाला धीरे धीरे 15 दिन में तुम बैंक में जमा कर ला तो तुम दीनदयाल उपाध्याय कोऑपरेटिव बैंक बटी ऋण दे रहा ये उत्तराखंड सरकार द्वारा तो हमारे जिला सहकारी बैंक और उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में ये योजना लागू है जब मैं 3 साल 5 साल लीजिए लोन दी जाए जब मैं 1 लाख ब्याज नहीं दू पड़ा यदि उधर खर्च सही चल रहा जो डिफॉल्टर होगा तब उनको ब्याज नहीं पड़ो तो जब तुम्हारा बचत खाता होगा धीरे धीरे तुम बचत करने भावना होली बैंक में तुम्हारे 5000 रुपए किसी 3000 रुपए किसी छोटी छोटी बचत द्वारा तुम रोजे कमाई लू मैं धीरे धीरे 15 दिन में तुम बैंक में जमा कर लो तुम्हें किस्ती निकल गया तुमको अब जान नहीं हो
0: सर जैसे की पहली बटी दुभा जहाँ कागज नहीं होची एक बैंक पासबुक होने है उमे हाथला साइन हजाने है और जदू हमूल डबल जम करी है उलाय पैनल उत्तीगर लिख देनी है। आप तो सब कंप्यूटर का जमाना गो और कागजात ले बहुत ज्यादा हगी आधार कार्ड हो गई पैन कार्ड स्मार्ट कार्ड और न जाने कदू बाहर कार्ड छे जो हमारे ग्रामीण दीद बहनी नहीं जाने। अब हम क्या करनो हमारे ग्रामीण दीद बहनी जब बैंकों में काम करने के लिए उन्हें या हमें छे ना हम अपन थैलू में झोला में सारे कार्डो को ले जानू और कती हमको फॉर्म भरम न्यू जब तो हम कार्डो को टेबल में धर देनो कहते लगा देनो जगह हम नीला पहचान की भुला हमें फॉर्म भर दे दादा हमें फॉर्म भर दे तो यस में जैसे की हमारे बात कर हमारे ग्रामीण दीद बहनी सुन लाग रही तो क्या सावधानी धरण चाहिए को कागज यस छे जो हमको सार्वजनिक निकरण चाहिए।
1: सार्वजनिक जब बैंक में तुम केवाईसी तुमको दिन पड़े जब खाता खोलला बचत खाता या कोई अकाउंट खोलला तो सबसे पहले बचत खाता खुली जाए वह बात और खाता खुली जानी तो बचत खाता खोलने लीजिए एक आधार और पैन जरूरत पड़ी जो आसानी बढ़ जाए और आधार और पैन सार्वजनिक निकल जाए। कभी कभी क्यों होगी दूसरा आदमी को तुम्हें आधार नंबर पता हो लो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वहाँ से बोल रहा हूँ हिंदी में बुलानी सब जब इकट्ठो बड़ी कौन हूँ तो पहाड़ में तो कोई कुमाऊं में कोई बुलाना चाहिए फर्जी कॉल कर ला तो ये कॉल की ये आधार नंबर आता है और ये है और इसमें ओटीपी आएगी आप ऐसा करना लेकिन यस नहीं पूर्ण है अब केवाईसी के लिए सार्वजनिक निकरण चाहिए। लेकिन जब बैंक में जब खाता खोला तो जो चीज चाहिए आधार एक पैन और एक फोटो और वेल तुम्हारा बैंक में खाता खुल जाए और हगिलका आप खाते संचालित कर सकते
0: जदू बात ले एल आप हमको बताई और हमारे रेडियो श्रोता ले बात सुन लग रही हमारे विशेष विषय आज अज्ञा थी की हम नन बचत कर भेर और या साइबर अपराध बटी बच भेर कसी अपन बच्चों स्वर्णिम भविष्य को संवार सकनू का भेर सर अपुल अब कीमती बगत ला हमको दे भल भल जानकारी ला हमको दे एल रेडियो श्रोता हमारे बातचीत को सुन लग रही आप एक बैंक शाखा प्रबंधक होने के नाते की हमारे रेडियो श्रोताओं को के संदेश देना चाहला
1: सबको यो संदेश जो समूल एल ये पहले दो तीन बार बता लो एक तो साइबर फ्रॉड देखो बचन चाहे और सर आप बैंक में जरूर हर आदमी हर महिला पुरुष सबको खाता होना चाहिए उनमें सरकारी योजनाओं लाभ ले मिलो बहुत चीजों सब्सिडी ले ही और गैस सब्सिडी ले बहुत सारे जो सरकार द्वारा प्रायोजित सब्सिडी से जब खाता नहीं होगा तो कहाँ पर सब्सिडी मिले और वह भी अलावा तो मैं बचत भावना में बढ़े और तुमको हाइल का ऋण ले मिल सकू ऋण ले आजकल जैसे हमारे कोऑपरेटिव बैंक में बिना ब्याज का लोन मिलना और साथ में जो बैंक योजना है उनमें उनका लाभ उठाना चाहे ताकि आगे का आपको भविष्य को उज्जवल बढ़ाई जा सके।
0: सर अपुल कीमती वक्त हमको दे और भल भल जानकारी ले हमको दे साइबर अपराध कसी बची जो ये बार में ले हमारे दगे विस्तार चर्चा करी जो अपन कीमती वक्त हमको दे एक लीजिए आपको खूब खूब धन्यवाद।
2: तगड़ियों अल्लाह मुल सुनी या क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैक विषय ची साइबर फ्रॉडल बचाओ अपन बचत गए जमा हमारे दगा बातचीत करण लागरा ची श्री भूपेंद्र सिंह बिष्ट शाखा प्रबंधक अनुभाग अधिकारी जिले सहकारी बैंक अलमड़ बटे। अब सुनो कार्यक्रम में आगे लेख लोकगीत जय कलाकार सिंह सुरेश प्रसाद।

काल लय माया छोड़ जाली भुगतली हाल चौगर सा बुढ़ कसी हसन की काल लय माया छोड़ जाली भुगतली हाल मेरा हिया भरी ऊंचा चसिननी ताला हिरदी में बुढ़ गछ मोनिक सो साला

झगुलि को पोछा धर्म को गोछ साटी में को साचा झगुलि को पोछा धर्म को गोछ मदनुआ नोछा देली में बेरू छा नन भवा खेलू छा जय घड़ी समझू छी।

0: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
1: Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: दगड़ियों आपको सब जानिया अपन मनपसंद कार्यक्रम एपनक आज अंक में एक बार फिर स्वागत छू। अब बढ़नो कार्यक्रम में आगिल और बात करनो अल्पसंख्यकों हेतु योजना अखबार में जब मैं आज एक विषय छू प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन जब मैं कई योजनाओं ने जब मैं सबक मिले भेर पीएम विकास नाम दे जा रहा भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यह एक प्रमुख एकीकृत कौशल पहल छू। यह उद्देश्य जो अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर कारीगरों महिलाओं और युवाओं कौशल उद्यमिता और उन्हें नेतृत्व विकास करण छो। दगड़े में पांच पुराण योजनाओं जस की सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमर धरोहर इनको आपस में मिलाकर एक नाम दे जरो प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन पीएम विकास। ये जो एकीकृत योजना छो जिनमें मुख्य रूप निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण शामिल है जैसे कि पारंपरिक कौशल जिनमें जो कारीगर और उनर परिवारों पारंपरिक कला का आधुनिक बाजार में उन्नतकरण, फिर जो जैसे कि गैर पारंपरिक कौशल जिनमें जो आधुनिक और बाजारों भोग पर आधारित कौशल जैसे कि आईटी, रिटेल, हॉस्पिटलिटी आदि में युवाओं को प्रशिक्षित करण, फिर हमें वो महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता जमे की अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व व आजीविका प्रशिक्षण छो। दगड़ियों में एक छो शिक्षा सहायता जमे यस हूँ कि NIOS माध्यमल जनुल बीच में आपको पढ़ाई छोड़े आठ में दस में या बारहवीं कक्षा में उन्हें शिक्षा का पूर्करण। दगड़ियों जब कह पहले कह के द्वारा हमको पता चलूँ कि के योजना छन हमर लीजिए तो जरूर जरूर उन्हें लाभ लेना चाहें और जब यह योजनाओं विस्तृत जानकारी चाहें तो जोले इनर पात्र व्यक्ति छन उस सब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या पीएम विकास आधिकारिक वेबसाइट में ले देख सकनी। दगड़े ये जानकारी के बाद अब हम दबरनु कार्यक्रम में आगिल और

लगड़ियों अब बखत है पुजगो आजक एपणक अंक बटी आज्ञा लेणक एपणक आजक अंकक प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत। लगड़ियों आपुलू दगे आगेल कार्यक्रम में फिर भेट है। अब दियो आज्ञा। नमस्कार।

कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 1:05 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और नई सर्जरी सुविधा का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और मिट्टी परीक्षण के आधार पर खेती करने का आह्वान किया। प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने छात्रों का डेटा सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। और आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के शुरू होने के केवल 39 दिनों में रिकॉर्ड 36,776 परमिट जारी किए गए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में सिसमैक्स मशीन, डायनामिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन और बेरियाट्रिक सर्जरी सेवा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उन्नत उपकरणों का समावेश स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और अधिक सशक्त बनाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सिसमैक्स मशीन से विभिन्न रक्त संबंधी जांचें अधिक सटीकता और कम समय में संभव हो सकेंगी, जबकि डायनामिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन मरीजों को उन्नत और गुणवत्तापूर्ण रेडियोलॉजिकल जांच में सहायक सिद्ध होगी। बेरियाट्रिक सर्जरी सेवा शुरू होने से मोटापे से संबंधित जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित मरीजों को राज्य में ही विशेषज्ञ उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के शुरू होने से जहां मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा, वहीं दून मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने और आम जनता को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि खेत बचाओ अभियान किसानों को जागरूक करने के साथ ही कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वह टिहरी जिले में जौनपुर क्षेत्र के बांडासारी में आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि का संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने किसानों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने, मिट्टी परीक्षण के आधार पर खेती करने तथा जल संरक्षण और फसल विविधीकरण में विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेती और किसानों को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
1: 1 जून से लेकर 23 जून तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चल रहा है। 1 तारीख को मैंने उसकी शुरुआत देहरादून से की थी। हमारा ये मानना है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और आज हमारे खेतों को, जो हमारी धरती माँ है, उसको बचाने की आवश्यकता है। किसानों को जागरूकता के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, ताकि हम अपनी हमारी भूमि बचे, हमारा उत्पाद बढ़े और आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो साकार हो।
0: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकाधिक पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों को आपदा प्रबंधन तंत्र से जोड़ना उनकी प्राथमिकता होगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के लगभग प्रत्येक गाँव में पूर्व सैनिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति है, जिनका अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, प्रशिक्षण और अनुभव आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सामुदायिक आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाने, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने और आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत सीमांत क्षेत्र बरी गांव में बूथ

0: एवल अधिकारियों ने घर घर जाकर ग्रामीणों को गणना प्रपत्र वितरित किए। वहीं ग्रामीणों ने चुनाव आयोग की इस जमीनी पहल का स्वागत किया। मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने तथा जागरूकता अभियान को खास बनाने के लिए बरी गांव के ग्रामीणों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। ग्रामीणों ने अपनी समृद्ध पारंपरिक और स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन किया और तांदी और हारुल नृत्य की प्रस्तुति दी। गूंजते पारंपरिक संगीत और थिरकते कदमों के बीच ग्रामीणों ने न सिर्फ चुनाव आयोग का धन्यवाद किया बल्कि पूरे क्षेत्र में SIR और मतदाता जागरूकता का संदेश भी दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे 7 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में BLO का सहयोग करें और समय पर अपने प्रपत्र जमा करवाएं।
1: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा करते हुए विश्वविद्यालयों के वेब एप्लीकेशन को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने व डेटा लीक संबंधी मामलों के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश कुलपतियों को दिए। उन्होंने कहा कि देश में साइबर हमलों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, जिसके तहत साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों को भी छात्र छात्राओं के डेटा के सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाने होंगे ताकि किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। बैठक में विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिए गए गाँव की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी किए जा रहे इनर लाइन परमिट की संख्या ने पिछले वर्षों के सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। पिछले साल पूरे यात्रा सत्र के दौरान 36,526 इनर लाइन परमिट जारी किए गए थे, जबकि इस वर्ष यात्रा शुरू होने के मात्र 39 दिनों के भीतर ही 36,776 परमिट जारी किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में लगातार बढ़ रहा उत्साह इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर बेहतर सड़क संपर्क, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा आवासीय व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा में बढ़ती सहभागिता का सीधा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। इससे सीमांत क्षेत्र की आर्थिकी सुदृढ़ होने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।
2: ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल आदि कैलाश के जो दर्शन किए थे पूरे सीजन में वो 36,600 के करीब श्रद्धालु वहां पर गए थे और इस बार केवल अभी 39 डेज में ही हमारे 36,700 यानी पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट गया है। तो इतने श्रद्धालुओं ने ऑलरेडी दर्शन कर लिया है और जिला प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इस बार बेटर रोड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। थोड़ा रोड का जो चौड़ीकरण है वो और बेटर हुआ है और साथ ही साथ जो वहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है उनका भी लगातार उसमें डेवलपमेंट चल रहा है और अच्छे होम स्टे भी अब वहाँ पर आ रहे हैं। तो इसीलिए श्रद्धालुओं का लगातार जो है इंफ्लो आपके लिए बढ़ हो रहा है और लोकल जो वहाँ की आर्थिकी है उसका भी इसके माध्यम से उन्नयन हो रहा है।
0: नैनीताल नगर पालिका परिषद ने बढ़ते प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए नई पहल शुरू की है। योजना के तहत खाली पानी की बोतलें, शीतल पेय के कैन और चिप्स के रैपर जमा करने पर प्रति इकाई 2 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए मॉल रोड और तल्लीताल डांड क्षेत्र में 2 कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्लास्टिक कचरा जमा किया जा सकेगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिता शर्मा ने बताया कि कचरा जमा करने वाले व्यक्तियों को QR कोड के माध्यम से तत्काल ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन सत्र के दौरान सार्वजनिक स्थलों, नालों और नैनी झील के आसपास बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा एकत्र हो जाता है, जो वर्षा के दौरान झील में पहुंचकर प्रदूषण बढ़ाता है। योजना का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण के लिए प्रोत्साहित करना तथा शहर को स्वच्छ बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि पालिका की टीमें घर घर जाकर भी लोगों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और नई सर्जरी सुविधा का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और मिट्टी परीक्षण के आधार पर खेती करने का आह्वान किया। प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने छात्रों का डेटा सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। और आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के शुरू होने के केवल 39 दिनों में रिकॉर्ड 36,776 परमिट जारी किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत। पहले सुनिए यारो एल्बम से के स्वर में ये नगमा।

0: रहा खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: और लीजिए सुनिए राज श्री सचदेवा के स्वर में ये गीतकार हैं नक्श लालपुरी।

समोसरों में समीर का गीत अभी आपने सुना और अब सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
3: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
3: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानु यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
3: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
3: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
3: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
3: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
3: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा
3: यानी
2: हारमोनी या सामंजस्य।
3: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द

0: है केई
1: जी
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान,
1: और श्रोताओ तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी, और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है, जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर यह चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है, जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परिवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सर का लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गए।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय,
4: हर गोविंद भाई, हाँ, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हर गोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
0: हाँ?

0: बाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी, संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे, छुट्टी मिलेगी तो कैसे? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ, सो तो है। चलो अच्छा है। बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा।

0: अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
1: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पैर लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम,
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना, नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat, inspired by the vision of Honorable

0: nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज आपने सुनी कड़ी संख्या 1302। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ। गायिका हैं लता कर्नाटक।

और अब समापन कर रहे हैं गीता जोशी के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2:15 होने को हैं। समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माही में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट।

0: दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी।

0: समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले

0: आयोग द्वारा एक दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए और इस समय हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पॉली हाउस में खीरा और शिमला मिर्च की खेती। जानकारी दे रहे हैं श्री राजेश पांडे।
3: पॉली हाउस एक तरीके का ग्रीन हाउस होता है जहां एक प्रकार की पॉलीथीन का प्रयोग कर लोहे के सांचे में फिट किया जाता है। इसमें आंशिक या पूरे रूप से सूक्ष्म जलवायु को नियंत्रित कर फसल उगाई जाती है। पॉली हाउस में फसल उगाने के अनेक लाभ हैं, जैसे पॉली हाउस पौधों के विकास के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करता है। वर्षा, हवा आदि जरूरत से ज्यादा तापमान से फसलों को बचाता है और साथ ही

कीट और बीमारी से बचाव करता है, जिससे गुणवत्ता और उपज में सुधार होता है। खुली खेती की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा उत्पादन की सुविधा देता है और बंदरों को भी फसल नष्ट करने से बचाता है। पॉलीहाउस की संरचना उस स्थान के जलवायु के अनुपालन में ही होनी चाहिए तथा पॉलीहाउस बनाने का कार्य किसी विशेषज्ञ द्वारा ही कराया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का विकार पॉलीहाउस में फसल को बर्बाद कर सकता है। पॉलीहाउस में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी उगाई जा सकती है। इनमें से खीरे और शिमला मिर्च की व्यावसायिक खेती द्वारा अधिक लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं कि खीरे और शिमला मिर्च को पॉलीहाउस में कैसे उगाया जाता है। खीरा एक गर्म मौसम की फसल है, लेकिन इसे पॉलीहाउस में तापमान और आर्द्रता में बदलाव कर साल भर उगाया जा सकता है। पॉलीहाउस के अंदर दिन का तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 18 से 19 रखें और आर्द्रता को 60 से 65% तक बनाए रखें। मृदा का पीएच 5.5 से 6.5 होना चाहिए। पॉलीहाउस में मध्य पर्वतीय क्षेत्र के लिए बीज रहित खीरा किस्म में पहली है हिमपालम खीरा 1। इस किस्म के फल गहरे हरे बेलनाकार और बुवाई के 35 से 50 दिन बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी औसत उपज 6.5 से 7 क्विंटल प्रति 100 वर्ग मीटर पॉलीहाउस में है। दूसरी प्रजाति है हिमपालम खीरा 2। इस किस्म के फल हल्के हरे बेलनाकार और बुआई के 50 से 55 दिन बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी औसत उपज 5.5 से 6 क्विंटल प्रति 100 वर्ग मीटर पॉलीहाउस में है। पॉलीहाउस में इन प्रजातियों को या तो मार्च अप्रैल में बोएं या अक्टूबर नवंबर में। पॉलीहाउस में खीरे से लगातार 4 महीने तक फल लिया जा सकता है। खीरे के बीज को सीधा पॉलीहाउस की मुख्य क्यारी में बोएं। इसके लिए मुख्य क्यारी की चौड़ाई 70 से 80 सेंटीमीटर रखें तथा क्यारी को 25 से 30 सेंटीमीटर उठी हुई बनाएं, जिससे कि पौधों की जड़ों को पर्याप्त हवा मिल सके। दो क्यारियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ा चलने लायक रास्ता रखें। बुआई से पूर्व क्यारियों में 5 किलोग्राम FYM तथा 200 ग्राम नीम के प्रति स्क्वायर मीटर की दर से डालें। बाद में ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जीवाणुओं के मिश्रण का 2% घोल बनाकर क्यारियों को इस घोल से अच्छी तरह भिगा लें, ताकि बाद में पौधों पर डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी की समस्या ना आए। बीज बुआई हेतु मुख्य क्यारी में 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी में 2 से 3 बीज 2.5 सेंटीमीटर गहराई में डालकर मिट्टी से ढककर हल्का पानी डालें। बीज को अंकुरित होने के लिए 3 से 10 दिन लगते हैं। जब पौध 10 सेंटीमीटर बड़ी हो जाए, तब प्रत्येक 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर केवल एक स्वस्थ पौध को रखें। बाकी पौध को सावधानीपूर्वक बिना मुख्य पौध की जड़ को हिलाए हटा दें। एक क्यारी में पौध की एक ही कतार बनाएं तथा एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 120 से 150 सेंटीमीटर रखें। प्रत्येक पौध के चारों ओर 1 स्क्वायर फीट की जगह छोड़कर सारी क्यारी को घास की आच्छादन से अच्छी तरह ढक लें। इससे खरपतवार नियंत्रण में रहती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है, मिट्टी का तापमान नियंत्रण में रहता है और मिट्टी में अच्छे सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ने में मदद मिलती है। खीरे के पौधे में नियमित रूप से सप्ताह में 2 बार पर्याप्त सिंचाई करनी चाहिए तथा इस दौरान पौधे की पत्तियों में पानी नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा पौधे में फफूंद लग सकती है। फलों के आकार और अच्छी गुणवत्ता के लिए खीरे के पौधे की काट छाट बहुत जरूरी है। इसके लिए पौधे के 2 फीट तक बढ़ने के बाद पौधे का मुख्य तना ढूंढकर ऊपर की ओर बढ़ते हुए फल वाली कली के साथ एक बड़ी पत्ती, जिसको सनलीफ भी कहते हैं, इनको बचाते हुए बगल से निकलने वाले सहायक तनों को काट दें। खीरे के पौधे के मुख्य तने को ही ऊपर को बढ़ने दें। पौधे को सीधा ऊपर को जाने के लिए प्लास्टिक की रस्सी को आवश्यकता अनुसार खीरे की बेल से बांधकर ऊपर पॉलीहाउस के GI वायर ग्रिड से बांध लें। पॉलीहाउस में खीरे में लाल माइट की रोकथाम हेतु बुवाई के 45 दिनों के बाद 100 मिलीलीटर दरेकास्त्र प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तथा 10 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। अब बात करते हैं शिमला मिर्च को पॉलीहाउस में कैसे उगाया जाए। शिमला मिर्च एक ठंडी मौसम की फसल है, लेकिन इसे पॉलीहाउस में तापमान और आर्द्रता में बदलाव कर साल भर उगाया जा सकता है। पॉलीहाउस के अंदर औसतन तापमान दिन का 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात का 16 से 18 डिग्री सेल्सियस का रखें। साथ ही 50 से 60% आर्द्रता बनाए रखें। मृदा का पीएच 5.5 से 6.8 होना चाहिए। मध्य पर्वतीय क्षेत्र में पॉलीहाउस में उगाई जाने वाली किस्मों में पहली है कैलिफोर्निया वंडर। इसका फल बड़ा 3 से 4 उभार वाला व चमकीले हरे रंग का होता है। रोपाई के 70 से 75 दिनों बाद पौधा पहली तुड़ाई के लिए तैयार

0: हो जाता है। इसके औसतन उपज 2.5 से 3.5 कुंटल प्रति 100 वर्ग मीटर पॉलीहाउस में है। दूसरी किस्म है अवतार। इसका फल कैलिफोर्निया वंडर किस्म से बड़ा होता है तथा रोपाई के 80 से 85 दिनों बाद पौधा पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसकी औसतन उपज 3.5 से 4 कुंटल प्रति 100 वर्ग मीटर पॉलीहाउस में है। पॉलीहाउस में इन प्रजातियों को या तो जनवरी फरवरी में बोएं, या मार्च अप्रैल में, या फिर अगस्त सितंबर में बोएं। पॉलीहाउस में शिमला मिर्च से लगातार 6 महीने तक फल लेते रहें। बीज को पॉलीहाउस के अंदर क्यारी बनाकर बोएं, जिसमें बीज की कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी आधा सेंटीमीटर रखें, और बुवाई से पहले क्यारियों को ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जीवाणुओं के मिश्रण का 2% घोल बनाकर क्यारियों को भिगा लें। रोपण हेतु मुख्य क्यारी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा बनाएं, और इसमें 5 किलोग्राम FIM तथा 200 ग्राम नीम के प्रति वर्ग मीटर की दर से डालें। साथ ही फॉस्फोरस एवं पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का 20% घोल बनाकर क्यारी में डालें। इसके बाद क्यारी को घास के आच्छादन से अच्छी तरह ढक लें। रोपण हेतु 30 से 35 दिनों की पौधों का चयन करें और 15 मिनट के लिए उनकी जड़ों को ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जीवाणुओं के मिश्रण का 10% घोल में रखें। ऐसा करने से पौधों में विल्ट नामक रोग नहीं लगता है। इसके बाद रोपण करते समय पौधों को मुख्य क्यारी में जिगजैग तरीके से दोहरी कतार में लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। पौध रोपण के 15 दिन बाद बोर्डेस मिक्सचर से क्यारियों को अच्छी तरह भिगा लें। ऐसा करने से पौधे में लीव स्पॉट की समस्या नहीं आती है। रोपण के बाद पानी सप्ताह में एक बार पर्याप्त मात्रा में डालते रहें। पौधे से अच्छी उपज लेने के लिए पौधे की केवल 4 शाखाओं को बढ़ने दें। काट छाट का यह कार्य रोपण के 30 दिनों बाद से करें और फिर हर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करें, ताकि कमजोर टहनियों को काट कर अलग किया जा सके। इसके साथ ही पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए तने को 4 प्लास्टिक की रस्सी से बांध कर ऊपर की ओर पॉलीहाउस के GI वायर ग्रिड से बांध लें। यह कार्य रोपण के 4 हफ्ते बाद करें। इसी प्रकार पॉलीहाउस में उगी सब्जियां उत्पादन में अधिक और अच्छी गुणवत्ता की होती है। सभी सामग्री जैसे पॉलीहाउस, सब्जी बीज, जैविक खाद एवं दवाई उद्यान विभाग के द्वारा 50% से 80% सब्सिडी के साथ मुहैया कराई जाती है।
1: पॉलीहाउस में खीरा और शिमला मिर्च की खेती, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में अभी श्रोता सुन रहे थे श्री राजेश पांडे से जानकारी।

0: AIR at 90.
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 8:30 स्पोर्ट्स स्कैन दिल्ली केंद्र से रिले होगा और रात 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं शाम 6:50 पर, शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा बीना तिवारी के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं की स्मार्ट तैयारी।

व्यक्ति विशेष में आज व्यक्तित्व रहेंगे बिरसा मुंडा। आज का इतिहास भी युवा साथी सुन सकेंगे। शाम 5:45 पर उत्तराखंड, शाम 5:45 पर श्रोताओं उत्तरायण कार्यक्रम आप प्रतिदिन सुनते हैं, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा बिरसा मुंडा शहीदी दिवस। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत सुनवाया जाएगा, जिसमें आज आप सुन सकेंगे शर्मा बंधु और अनुराधा पौडवाल के गाए भक्ति वंदन। संध्या 7 का समय रहता है किसान वाणी कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी वर्षा आधारित खेती प्रणाली पर। इसके अलावा चर्चा सुनिएगा जैविक खेती के फायदे खेत बचाओ अभियान के तहत। मृदा क्षरण रोकने में कृषकों का योगदान, इस विषय पर सी तिवारी से भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में। सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रस हम लेकर आएंगे रात्रि 8:00। इसके अलावा रात 9:30 पर आज श्रोता सुनेंगे गजलों का साप्ताहिक फरमाइशी प्रोग्राम महफिल। यह था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: AIR at 90।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोताओं, बॉलीवुड की जिस अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं वो मशहूर फिल्मी घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं, उनके चाचा भी एक्टर हैं और उनके बड़े पापा यानी उनके ताऊजी मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। और ये जो अभिनेत्री हैं वो भी बेहद चर्चित हैं और अपने करियर में उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है। हालांकि विवाह के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली, अब वो अपना घर परिवार और अपना व्यवसाय संभाल रही हैं और उनके पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतना कुछ हमने बताया लेकिन अभिनेत्री का नाम तो नहीं बताया। बहरहाल हम बताते हैं, उनके पिता हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर अनिल कपूर, उनके चाचा हैं संजय कपूर और उनके ताऊ यानी उनके बड़े पापा मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोनी कपूर। और अब तो आप जान ही गए होंगे हम किस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं और ये मशहूर अभिनेत्री हैं सोनम कपूर। आज एक ही फनकार में फनकार हैं सोनम कपूर। तो श्रोताओं, आज सोनम कपूर को हम ख़ास तौर पर याद कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सोनम कपूर को उनके जन्मदिन की।

तो श्रोताओं, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्म हुआ सोनम कपूर का। सोनम कपूर की शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो जुहू, जो कि मुंबई में स्थित आर्य विद्या मंदिर से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की, उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय और लंदन की ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी से कॉलेज की उन्होंने पढ़ाई पूरी की। सोनम कपूर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हैं और उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वो कई तरह के डांस फॉर्म में पारंगत हैं। उन्हें कथक और इसके अलावा लैटिन डांस ख़ास तौर पर आता है, इसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। वो किताबें पढ़ने और शॉपिंग करने की शौकीन हैं। बास्केटबॉल और स्क्वाश खेलने में वो रुचि रखती हैं और थिएटर और कला का भी उन्होंने ख़ास तौर पर अध्ययन किया है। इसके अलावा साल 2005 में संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म ब्लैक में सहायक निर्देशक के तौर पर भी उन्होंने काम किया और साल 2007 में उन्होंने फिल्म सावरिया से डेब्यू किया, जो कि संजय लीला भंसाली की ही फिल्म रही है।

साल 2009 में सोनम कपूर ने जाने माने निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म दिल्ली 6 में अभिषेक बच्चन के साथ लीड रोल निभाया और साल 2010 में प्रदर्शित रोमांटिक कॉमेडी आई हेट लव स्टोरी फिल्म की कामयाबी के बाद बॉलीवुड में सोनम कपूर को बेहतरीन पहचान मिली।

0: कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।

तो श्रोताओं, सोनम कपूर की बेहतरीन फिल्मों में हम अक्सर, यूं तो उनकी कई फिल्में हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उन्हें ख़ास पहचान मिली वो फिल्में रहीं नीरजा, रांझणा, भाग मिल्खा भाग, वीरे दी वेडिंग, प्रेम रतन धन पायो, खूबसूरत, पैडमैन जैसी कई फिल्में हैं। इसके अलावा रांझणा, डॉली की डोली, बेवकूफियां, प्लेयर्स जैसी कई फिल्में हैं। इन फिल्मों में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया। और नीरजा फिल्म की बात करें तो सोनम कपूर की अब तक के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में ये एक मानी जाती है। नीरजा भनोट की जीवन पर आधारित ये फिल्म थी, जो कि एयर हॉस्टेस रही। और इस फिल्म में सोनम कपूर के जो उन्होंने अभिनय किया था उसको बेहद सराहा गया, और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज फनकार थी जानी मानी मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के बजे हैं 3। सुनना चाहेंगे श्रोता सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, सिनेमा की दुनिया लाइट कैमरा एक्शन के लिए जानी जाती है, ये तो आप और हम सभी जानते हैं। बिना इसके सिल्वर स्क्रीन पर मनोरंजन के संसार का सृजन होना संभव नहीं है। कुछ इसी तरह हिंदी सिनेमा के जाने माने बेहद चर्चित निर्माता निर्देशक हुए, जिनका सिनेमा

सस्पेंस, एक्शन, ड्रामा और बेहद मीठा मधुर गीत संगीत के बिना ये पूरा नहीं होता है। तो कुछ ऐसी ही हिंदी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने अपनी विशेष, उनके कहना निर्देशन की बात हो चाहे निर्माता के रूप में हो, वो अपनी छाप छोड़कर ही रहते हैं। मेलोड्रामा उनकी फिल्मों की जान कहलाता है और इसी आधार पर अनेक दर्शक के जो दिलों में हैं वो राज करते हैं। यकीनन राज खोसला जो कि जाने माने निर्माता निर्देशक थे,

ही रहते हैं। मेलोड्रामा उनकी फिल्मों की जान कहलाता है और इसी आधार पर अनेक दर्शक के जो दिलों में हैं वो राज करते हैं। यकीनन राज खोसला, जो कि जाने माने निर्माता निर्देशक थे, वो भी उन्हीं में से एक हैं। और वो ऐसा मानते थे कि जब दर्शक सिनेमा हॉल में मनोरंजन हासिल करने आता है, एक ऐसा मनोरंजन जो उसके दिल और दिमाग को छू जाए और सुरूर बनकर छा जाए, ऐसा ही राज खोसला साहब ने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शाया, जिसे दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। श्रोतों, 60 और 70 के दशक में राज कपूर, देवानंद, बीआर चोपड़ा अपनी तरह की फिल्मों के लिए सुविख्यात रहे, लेकिन इन्हीं दिग्गजों के बीच राज खोसला कुछ ऐसी फिल्में लेकर आए जिनका दर्शकों पर सुरूर सवार हुआ। और इन महान हस्तियों के बीच, इन खास शख्सियतों के बीच राज खोसला साहब ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो श्रोता, आज समझ ही गए होंगे कि हम राज खोसला साहब की बात कर रहे हैं, जो कि जाने माने शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता, पटकथाकारों में से एक हैं। और आज 9 जून को उनकी पुण्यतिथि है, तो आज उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं की फिल्मों के नगमे चुनकर हम आपके लिए लाए हैं।

गायक की तमन्ना लिए मुंबई आ गए। उनके चाचा देवानंद के पिता किशोरी आनंद के गहरे मित्र थे। और राज खोसला की शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा अंजुमन इस्लामिक स्कूल में हुई। उन्होंने एलिफेंस्टन कॉलेज से अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मुंबई में आने के बाद राज खोसला ने रंजीत स्टूडियो में अपना स्वर परीक्षण करवाया और इस कसौटी पर वो खरे भी उतरे, लेकिन रंजीत स्टूडियो के मालिक सरदार चंद्रू लाल ने उन्हें बतौर पार्श्व गायक अपनी फिल्म में काम करने का अवसर नहीं दिया। और उन दिनों रंजीत स्टूडियो की स्थिति ठीक नहीं थी और सरदार चंद्रू लाल को नए पार्श्व गायक की अपेक्षा उस दौर के मशहूर पार्श्व गायक मुकेश पर ज़्यादा भरोसा था। उन्होंने अपनी फिल्म में मुकेश जी को ही पार्श्व गायन करने का अवसर देना उचित समझा। बहरहाल राज खोसला फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत रहे और उन्हीं दिनों उनके पारिवारिक मित्र और अभिनेता देवानंद ने राज खोसला को अपनी फिल्म बाजी में गुरुदत्त के सहायक निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया और साल 1954 में राज खोसला को स्वतंत्र निर्देशक के तौर पर फिल्म मिलाप को निर्देशित करने का सुनहरा अवसर मिला। पार्श्व गायन की दुनिया को छोड़कर उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाया।

श्रोताओं, राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ। उनका बचपन से ही गीत संगीत की ओर रुझान था और शुरुआत में वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। आकाशवाणी में बतौर उद्घोषक और पार्श्व गायक का काम करने के बाद राज खोसला 19 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ पार्श्व

तो ये फिल्म हालांकि कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उनके गुरुदत्त द्वारा निर्मित दूसरी फिल्म सीआईडी, जो कि साल 1956 में प्रदर्शित हुई, इस फिल्म के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में राज खोसला साहब को एक नई पहचान मिली। और सीआईडी एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें राज खोसला के स्टाइलिश सिनेमाटोग्राफी और गानों के अभिनव फिल्मांकन की झलक मिलती है। ये सभी खूबियाँ उन्हें गुरुदत्त से विरासत में मिली थीं।

जी हाँ, जादू नगरी से एक जादूगर की तरह फिल्मों में जादू चलाया राज खोसला साहब ने। राज खोसला को अपने दौर के अलग तरह के फिल्मकार के रूप में जाना जाता है। साल 1964 में प्रदर्शित हुई उनकी फिल्म वो कौन थी, इस फिल्म ने उन्हें बिल्कुल एक नए तरह की एक अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म के बाद से ही उन्हें सस्पेंस फिल्म निर्देशक का टैग दिया गया। कहा जाता है कि इसी फिल्म से बॉलीवुड में सस्पेंस फिल्मों की शुरुआत हुई थी। राज खोसला ने फिल्मों में अभिनेत्रियों को दमदार रोल दिए थे, साथ ही उन्होंने हिंदी सिनेमा में सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की, जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत की थी। फिल्म वो कौन थी, इस फिल्म में अभिनेत्री साधना ने अभिनय किया था और राज खोसला अपनी फिल्मों में हीरोइनों के साथ आइकॉनिक सीन्स के लिए भी जाने जाते हैं। और इस फिल्म का ये गाना तो आज भी बहुत ही पसंद किया जाता है।

1966 में एक बार फिर फिल्म आई मेरा साया, और ये फिल्म भी अपने समय में बनी फिल्मों में सबसे अग्रणी रही थी। निर्देशक राज खोसला द्वारा चित्रित उदासी फिल्म के बाद भी ये फिल्म दर्शकों को बहुत याद रही।

श्रोताओं, राज खोसला साहब की फिल्मों के गीत संगीत की बात करें तो वो भी बेहद समृद्ध रहा करते थे। उनकी जितनी भी फिल्मों का संगीत है, गीत है, वो इतना सदाबहार है कि जब भी आप सुनें तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि गीत संगीत के मामले में उनकी कई फिल्में देवानंद और राज कपूर की फिल्मों की ऊंचाई को छूती हैं। जिस तरह राज कपूर, देवानंद कहानी के साथ साथ गीत संगीत पर बेहद ध्यान दिया करते थे, उसी तरह राज खोसला भी अपनी फिल्मों में गीत संगीत पर बहुत ध्यान दिया करते थे। उनकी फिल्मों के एक से बढ़कर एक गाने हुए हैं जो सदाबहार हैं, जैसे एक मुसाफिर एक हसीना का गीत बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी हो, या फिर आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें एक दिन प्यार हो जाएगा गाना हो, आज भी हर किसी को बहुत लुभाता है। दो बदन फिल्म की बात करें तो इस फिल्म के भी सारे सदाबहार गाने हैं। और राज खोसला साहब ने ऐसी कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें वो कौन थी, मेरा साया और अनीता, ये फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों का गीत संगीत कितना बेहतरीन है, समृद्ध है, ये तो हम सभी सुनते हैं, जानते हैं। और इन तीन फिल्मों की खास तौर पर हम बात करें, जिसमें वो कौन थी, मेरा साया और अनीता की बात करें, तो इन फिल्मों के ज़रिए साधना के जो उस दौर की जानी मानी अभिनेत्री हैं उनके करियर को नए मकाम पर पहुँचाया इन्हीं फिल्मों ने। और साधना की ये तीनों बेहतरीन फिल्में मानी जाती हैं और इन फिल्मों में काम करके ही, और या उनको हम कह सकते हैं इन फिल्मों में काम करने के चलते ही साधना को मिस्ट्री गर्ल की रूप में भी जाना जाता है। और इन तीनों फिल्मों के गाने अभी अभी आपने सुने भी, और एक गाना और आपको सुनवाएंगे जो कि एक कालजयी गीत है, भला कौन भूल सकता है।

साल 1969 में एक और बेहद सुप्रसिद्ध फिल्म आई, दो रास्ते। और राज खोसला की इस फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज नायक और नायिका के तौर पर नजर आए, और इस फिल्म में बलराज साहनी और प्रेम चोपड़ा भी शामिल थे। इस फिल्म के गाने आप याद कीजिए, ये फिल्म में जितने भी गाने थे वो भी आज तक हम याद करते हैं, और कई गाने ऐसे हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। उन्हीं गानों में से एक गाना ये भी है, दो रास्ते फिल्म का।

तो सुधां राज खोसला अपनी फिल्में बनाते हुए जब उन्होंने एक लंबा दौर उनकी फिल्मों का रहा तो उन्होंने समय समय पर अपनी शैली में बदलाव भी किया और हर शैली में अपना अनूठा स्पर्श अपनी फिल्मों के ज़रिए उन्होंने जोड़ा और उन्होंने कई शैलियों को आजमाया, जैसे CID और काला पानी जैसी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर के रूप में ये फिल्में हैं, एक मुसाफिर एक हसीना जैसी संगीत प्रधान फिल्में और वो कौन थी मेरा साया अनीता जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, दो बदन और दो रास्ते जैसे मेलोड्रामा और मेरा गांव मेरा देश जैसी डकैत ड्रामा फिल्में उनकी विविध शैलियों में शुमार हैं।

सुनो राज खोसला द्वारा निर्देशित कई फिल्में हैं जिनमें कुछ फिल्मों के नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, दो रास्ते, 16 साल, काला पानी, एक मुसाफिर एक हसीना, चिराग, वो कौन थी, दो रास्ते जैसी कई फिल्में हैं। और ये फिल्में हर तरह से, चाहे व्यावसायिक तौर पर हों या उनकी फिल्मों के को चर्चित करने में, ये 80 के दशक में बेहद सफल फिल्में रहीं। और इन फिल्मों में दासी, तेरी मांग सितारों से भर दूँ, मेरा दोस्त, मेरा दुश्मन, माटी मांगे खून जैसे फिल्में भी शामिल हैं। और 1984 में उनकी फिल्म आई सनी, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साल 1989 में प्रदर्शित फिल्म नकाब राज खोसला साहब के सिने करियर की आखिरी फिल्म थी। अपने दमदार निर्देशन निर्माण से लगभग 4 दशक तक सिने प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करने वाले महान निर्माता निर्देशक राज खोसला 9 जून 1991 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए और छोड़ गए एक विरासत जिनके जरिए हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे।

श्रोता अभी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी सायंकालीन सभा के सभी प्रसारण मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी बागेश्वर के एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी रिले किए जा रहे हैं। संध्या के ठीक 5 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी

ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर

0: दो जिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की DG और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, SP की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें NTA के DG स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज़ बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बीना तिवारी का गाया ये कुमाऊनी लोक गीत।

मीरा तिवारी के गाए सी कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का शलसर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपरेखा, हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और रात्रि 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ देर पश्चात संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं की स्मार्ट तैयारी। संध्या 5:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण, जिसमें आज चर्चा का विषय है बिरसा मुंडा शहीदी दिवस। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे संध्या 6:41 पर और किसान भाई अपना कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे संध्या 7:00। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत जैविक खेती के फायदे विषय पर ग्राम धनौड़ा पिथौरागढ़ से उन्नतशील काश्तकार केशव दत्त मखोलिया से श्याम भट्ट की क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। साथ ही आपको सुनवाएंगे एक और भेंटवार्ता मृदा क्षरण रोकने में कृषकों का योगदान विषय पर चंद्रशेखर तिवारी से प्रमोद पांडे की भेंटवार्ता। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत। मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस होगा रात्रि 8:00 और रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी गजलों का प्रोग्राम महफिल और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:55 पर, 6:05 पर विचार बिंदु और उसके पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज की बात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:40 पर और विविधा कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:50 पर। श्री रामचरित मानस गान से सुनेंगे आप प्रातः 7:10 पर और उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर, जो हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कुमाऊनी लोक के गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे दीवान सिंह धानिक और रमेश चंद्र मिश्रा। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे प्रातः 8:30 पर और फरमाइशी फिल्मी नगमों का

कार्यक्रम गीत निर्जर आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का आनंद आप उठेंगे सबरंग कार्यक्रम में प्रातः 10:05 पर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे गुलाम अली और पंकज उदास। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार आप सुनेंगे प्रातः 10:35 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए होगा प्रातः 11:00। कुमाऊनी व गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर आप सुनेंगे प्रातः 11:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद आप सुनेंगे दोपहर 12:00। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:05 पर हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:00 और किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती की बातें सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। कल इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा अगेती मक्का की उत्पादन तकनीकी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। फिल्म संगीत कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे एक ही फनकार कार्यक्रम में दोपहर 2:45 पर और सभा के अंत में अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। हमारी सायंकालीन सभा रोजाना की तरह आरंभ होती है संध्या 5:05 पर। आप सुनेंगे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे नारायणी धर्मसत्तू व साथी। कल संध्या 6:30 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर और भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे संध्या 6:41 पर। ग्राम जगत कार्यक्रम सुनेंगे आप संध्या 7:00। फिल्म संगीत सुनेंगे आप संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम में। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी रेडियो मित्र राशिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में। दोस्तों, आज के हमारे अंक में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। दोस्तों, आज के दौर में बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन के साथ केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं अंकिता पोखरिया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं मिस अंकिता पोखरिया, जो नोएडा स्थित एक कोचिंग सेंटर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम युववाणी में।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में स्मार्ट स्टडी का क्या महत्व है?
1: मैम, स्मार्ट स्टडी का मतलब से ज़्यादा देर तक पढ़ना नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हर टॉपिक को इक्वली टाइम देना ज़रूरी नहीं होता। हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, रेगुलर रिवीजन करें और मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करते रहें। स्मार्ट स्टडी से टाइम की बचत होती है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होते हैं और एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस देने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: जी मैम, अक्सर स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते कि वो शुरुआत कहाँ से करें तैयारी की,

0: आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: जी मैम, ये तो काफ़ी कॉमन प्रश्न है। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के सिलेबस और उसके पैटर्न को अच्छी तरह समझना चाहिए। इससे उन्हें पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान या टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिसमें डेली और वीकली टारगेट्स क्लियर हों। बड़े सिलेबस को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करने से प्रिपरेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही आगे तैयारी के फाउंडेशन होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ प्रिपरेशन की शुरुआत करना सबसे इफेक्टिव अप्रोच है।
0: मैम, जैसे कि आपने टाइम मैनेजमेंट की बात करी, तो आप टाइम मैनेजमेंट को लेके हमारे युवा दोस्तों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: मैम, टाइम मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। स्टूडेंट को अपना दिन एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना चाहिए, जिसमें स्टडी, रिविजन, प्रैक्टिस और रेस्ट के लिए अलग अलग टाइम हो। हर दिन छोटे और अचीवेबल टारगेट सेट करने चाहिए और उन्हें कम्प्लीट करने की कोशिश करना चाहिए। सोशल मीडिया और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, सिर्फ ज़्यादा देर तक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अवेलेबल टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ करना ही सक्सेसफुल प्रिपरेशन की है।
0: मैम, क्या बुक्स इनफ होती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए?
1: जी नहीं मैम, सिर्फ बुक्स पढ़ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए काफ़ी नहीं होता। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पर पढ़ाई के साथ साथ रेगुलर मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन टाइप्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। साथ ही स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करने से स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जो एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
0: मैम, तैयारी के दौरान कई बार स्टूडेंट्स को असफलता या निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगी, या स्टूडेंट्स को ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: जी बिल्कुल मैम, ये प्रश्न तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है, स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी फेलियर या डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आम जीवन में भी हम करते हैं। ऐसे समय पर हिम्मत हारने के बजाय हम अपनी गलतियों से सीखें तो वह बहुत बेहतर होगा। हर सेटबैक में हमें कुछ नया सिखाता है और बेहतर बनने का मौका देता है। स्टूडेंट्स को अपने गोल पर फोकस रखना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करना और लगातार मेहनत करना, यही सफलता की कुंजी। याद रखिए कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं।
0: जी मैम। मैम, आज डिजिटल युग में ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है?
1: मैम, आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन रिसोर्स प्रिपरेशन को काफ़ी इफेक्टिव बना देते हैं। स्टूडेंट्स एजुकेशनल वीडियोस, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल नोट्स, टेस्ट सीरीज का यूज़ करके अपनी लर्निंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर क्वालिटी स्टडी मटेरियल आसानी से अवेलेबल होता है, जिससे कॉन्सेप्ट को समझना, उसे प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करने से कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा लिमिटेड और रिलायबल रिसोर्सेज का ही यूज़ करें और अपना फोकस प्रिपरेशन पर बनाए रखें।
0: मैम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान स्टूडेंट्स रिविजन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं?
1: मैम देखिए, रिविजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्चुअली रिकॉलिंग होती है, क्योंकि सिर्फ दोबारा पढ़ने से कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर नहीं होता, लेकिन खुद से याद करके लिखने या बोलने से मेमोरी स्ट्रांग होती है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो रीडिंग के बाद अपने आप बिना देखे टॉपिक्स को रिकॉल करने की प्रैक्टिस करें, जैसे की पॉइंट्स, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट्स उनको ब्लैंक पेपर पर लिखना। इसके लिए एक्टिव रिकॉल टेक्निक बहुत इफेक्टिव होती है, जिसमें आप अपने आप से क्वेश्चन बनाकर आंसर करते हैं या फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करते हैं। जब आप बार बार रिकॉल करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है और एग्जाम के टाइम पर इजीली याद आ जाती है। इसलिए स्मार्ट प्रिपरेशन में हमेशा याद रखें कि रिवाइज करना नहीं, बल्कि याद करके यूज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
0: मैम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के साथ स्टूडेंट्स स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें?
1: मैम देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस होना तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को अपना डेली रूटीन बैलेंस रखना चाहिए, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट और स्लीप भी हो। रेगुलर ब्रेक्स लेना और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना माइंड को फ्रेश रखता है। साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या मैम जो देखी गई है, ओवरथिंकिंग, उससे बचना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उसे अवॉइड ना करें, बल्कि उसे कामली सॉल्व करें या टीचर से हेल्प ले लें। पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ बिलीव स्ट्रेस को काफी हद तक कम करता है और प्रिपरेशन को स्मूथ बनाता है।
0: मैम, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि प्रिपरेशन के दौरान एक स्टूडेंट्स अपनी मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करें?
1: मैम देखिए, प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ट्रू मोटिवेशन ज्यादातर इंट्रेंसिक होती है, यानी अंदर से आती है। जब स्टूडेंट्स अपने गोल को सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर या कॉम्पिटिशन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और ड्रीम के साथ कनेक्ट करता है, तब मोटिवेशन नेचुरली स्टेबल रहती है। इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने वाई पर फोकस करना बहुत जरूरी है। मैं ये एग्जाम क्यों करना

0: चाहता हूँ, जब पर्पस क्लियर होगा तो डेली स्ट्रगल मीनिंगफुल लगता है। साथ ही स्मॉल अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना, अपनी प्रोग्रेस देखना और सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को स्ट्रांग बनाता है। इस तरह जब मोटिवेशन अंदर से आती है तो वो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस को ड्राइव करती है।
1: मैम, अब आखिर में आप हमारे युवा दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: प्रिय साथियों, याद रखें कि सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ से मिलती है। अपने गोल्स पर फोकस रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और हर दिन अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं अक्सर अपने कोचिंग में स्टूडेंट्स को यह बताती रहती हूँ कि फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ाएं। अपने अंदर की कैपेबिलिटी पर भरोसा रखें और कभी भी अपने सपनों से छोटा मत समझिए। हार्डवर्क, पेशेंस और पॉजिटिव माइंडसेट, ये तीन चीजें आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता तक जरूर ले जा सकती है। थैंक यू
1: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और हमारे दोस्तों से इतनी इम्पोर्टेंट बातें साझा करने के लिए। थैंक यू मैम।
0: जी थैंक यू मैम।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारी भेंट वार्ता अंकिता पोखरिया के साथ। आशा करते हैं आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अब कार्यक्रम में बैठते हैं मनोरंजन की ओर एक गीत के साथ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं आज के विशेष अंक व्यक्ति विशेष की ओर। और आज हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष में एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, जन नायक, आदिवासी समाज के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का बुगुल फीका। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिन्हें आदरपूर्वक धरती आबा अर्थात धरती के पिता भी कहा जाता है। दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहाटी गांव में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। बचपन से ही बिरसा मुंडा अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर थे। उन्होंने कुछ समय तक मिशनरी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि उनकी संस्कृति, परंपराओं और समाज को बाहरी शक्तियों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपने समाज के उत्थान और अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज को अंधविश्वास, नशाखोरी और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया और लोगों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। सन 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और जमींदारी शोषण के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे उल गुलान मतलब महाविद्रोह भी कहा जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को उनकी जमीन और अधिकार वापस दिलाना था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हजारों आदिवासी एकजुट हुए। उनके संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया, जिस कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके विचारों और संघर्ष की भावना को दबाया नहीं जा सका। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची सेंट्रल जेल में उनका निधन हो गया। दोस्तों उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर इतिहास में विभिन्न मत हैं, लेकिन उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आदिवासी अधिकारों के इतिहास में अमर है। उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप के बाद ब्रिटिश सरकार को आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पड़े और उनके जन्मदिन 15 नवंबर को भारत सरकार जनजाति गौरव दिवस मनाती है, ताकि उनके योगदान को सदैव स्मरण रखा जा सके।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 साल।

0: सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
5: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
6: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
7: दोस्तों, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर, और जानते हैं क्यों है आज का दिन खास इतिहास के पन्नों में। आज ही के दिन वर्ष 2011 में चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1934 में डोनाल्ड डक पर्दे पर आया था। मिक्की माउस के बाद डिज्नी का दूसरा सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक आज ही के दिन वर्ष 1934 में पहली बार दर्शकों के सामने आया था। साल 1934 में डिज्नी के द वाइज लिटिल हेन नाम के एनिमेटेड फिल्म रिलीज की थी। इस फिल्म ने डोनाल्ड डक को पहली बार दर्शकों के सामने लाया। क्लारेंस नैश ने डोनाल्ड डक को अपनी आवाज़ दी थी। अपनी बेवकूफ़ी और भरी हरकतों और गुस्सैल मिजाज की वजह से जल्द ही डोनाल्ड डक दर्शकों में लोकप्रिय हो गया। अगले 2 दशक में ही डोनाल्ड डक 100 से भी अधिक फिल्मों में नजर आया। मिकी माउस के बाद डोनाल्ड डक को डिज्नी का सबसे सफल कार्टून माना गया। आज ही के दिन वर्ष 2008 में फिल्म चक दे इंडिया के लिए अभिनेता शाहरुख खान को 9वें आईफा पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, ये था हमारा आज का इतिहास। अब मनोरंजन की ओर बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन चक दे इंडिया फिल्म के गीत के साथ।

दोस्तों, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और बताते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर, साथ ही सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम। दोस्तों, हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम हैं, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेश, सुषमा सुरेश, मायरा सुरेश, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परियार। दोस्तों, इसी क्रम में जान लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? प्रश्न एक बार फिर, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? अगर जानते हैं आप इसका सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। सही उत्तर लिख भेजने वाले दोस्तों के नाम कल इसी कार्यक्रम में उद्घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त राशिका को अनुमति दीजिए आज के युवाणी कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनेर सबै श्रोता दगडियो कमी आपू दगडी प्रेमक नमस्कार। श्रोताओं आजक दिन हम मनोण लागरिया बिरसा मुंडा शहीदी दिवस। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक गायक छी। उन्होंने ब्रिटिश राजक दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंटी में हुई एक आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलनक नेतृत्व करो जेल उ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मनखे बन गई। भारतक आदिवासी उनके भगवान मानछी और धरती आबा नामल उनके जानी जाछी। बिरसा मुंडाक जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में एक गरीब किसान परिवार में हो। उनर बौजूक नाम सुगना पूर्ति मुंडा और माता का नाम कर्मी फूर्ति मुंडा छी। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वो चार भाषा विद्यालय में पढ़ना अंग्रेजी नह गई। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजुल कुटिल नीति अपने भेर आदिवासियों के लगातार जल जंगल जमीन और उन प्राकृतिक संसाधनों बटी बेदखल करो। हालांकि आदिवासी विद्रोह करते लेकिन संख्या बल में कम होने वेल वो आधुनिक हथियारों और अनुपलब्धता के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों तक दब सकी और यह सब देखते हुए बिरसा मुंडा विचलित हो गए और 1895 में अंग्रेजों लागू करी गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के दगड़ दगड़ जंगल जमीन लड़ाई छेड़ दी। और यह मात्र विद्रोह नहीं थी, यह एक आदिवासी अस्मिता स्वयंसत्ता और संस्कृति के बचौनक एक संग्राम छी। पिछल सब विद्रोहों बट को सीखते हुए बिरसा मुंडाल अपन सब आदिवासियों के संगठित करो फिर छेड़ दी अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उलगुलान। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय गरीबी की तरफ पड़ो। आदिवासियों जीवन अभाव बटी भरी हुई थी और यह स्थिति फैद मिशनरी उठने लगी और आदिवासी ईसाइयत का पाठ पढ़ने लगी। 20 वर्षक होते होते बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की तरफ झुक गई। आदिवासी कोई महामारी दैवीय प्रकोप के मानछी। उनके वो महामारी बट को बचनक उपाय समझौन लगी और लोग उनके ध्यानल सुनन लगी। उनर बात मानछी आदिवासी हैजा चेचक सांप के कारण बाघ खाई गई और ईश्वरक मर्जी मानछी। लेकिन बिरसा उनके सिखोणों चेचक हैजा का कशी लड़ी जाओ यो आदिवासियों के धर्म और संस्कृति बटी जुड़े रहनक लीजी कूची। दगड़ दगड़ मिशनारियों कुचक्र बट को बचौनक सलाह ले उन्होंने दे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा कही हुई बातों पर विश्वास करने लगी और मिशनरी बातों के नकारने लगी और बिरसा मुंडा आदिवासियों भगवान हो गई और उनके धरती आबा कही जान लगो। लेकिन आदिवासी पुनरुत्थानक नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के दगड़ दगड़ अब मिशनरियों के आँखों में खटकने लगी। अंग्रेजों एवं मिशनरियों अपन मकसद बटी बिरसा मुंडा का सबसे ठूल बाधक वो मानने लगी। 3 मार्च 1900 बिरसा मुंडा का गिरफ्तार कर ले। उनके कोई अपन 500 रुपये के ही लालच में कोई गुप्त दगड़वल गुप्त ठिकानों के बारे में प्रशासन के सब कुछ बता दे। उनर दगड़ पकड़ी गई। लगभग 400 मनखियों के कई धाराओं के अंतर्गत दोषी बनाई गो। 9 जून अगरत उनके उल्टियाँ होने लगी। कुछ ही क्षण में बंदी गृह में अचेत वो पड़ गई। डॉक्टरों के बुलाई गई जमे बिरसा मुंडा नाड़ी देखी और वो बंद हगा छी। अंग्रेज जानची कि बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जान के लेकिन उन पर लगाई गई धाराओं के अंतर्गत उनर ऊपर दोष साबित नहीं होल। यो बात को वो सब जानछी। बिरसा मुंडा छुटौने के बाद विद्रोह एक बृहद रूप लियाल। यो अंग्रेजों के घातक लागो और उन्होंने यो अपने आप में सोचो। ये कली जी उनके दातुन पानी में विषैला पदार्थ मिले भी देई गो और रांची जेल में बिरसा मुंडा 9 जून आज के दिन मृत्यु है गई। बिरसा मुंडा मरी नहीं थी बल्कि अमर है गई। जब आदिवासी विद्रोह बार में हम बात करन बिरसा मुंडा हम प्रथम पंक्ति पर ले जाल। आज हम उनके सत सत
नमन करनू।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: श्रोता, कार्यक्रम अगिल आपको सुनान लग रहा भेंट वार्ता मोटर यान अधिनियम और नशे विरुद्ध अधिनियम पर अधिवक्ता मनोज बिरजवाल दगड़ करी गई और क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
6: भारत में मोटरयान अधिनियम 1988 सड़कों पर वाहनों के संचालन, यातायात नियमों, लाइसेंस और दुर्घटनाओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों को नियंत्रित करने वाला एक मुख्य कानून है। आज हमारे साथ है अधिवक्ता श्री मनोज सिंह बिरजवाल जी, जो जिला न्यायालय अल्मोड़ा में अपनी वकालत कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो भारत में मोटरयान अधिनियम है, व्यक्तियों की सुरक्षा को लेके मोटर दुर्घटना क्लेम अधिनियम है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मनोज जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
7: नमस्कार, धन्यवाद।
6: मनोज जी, हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप बताएं कि जो मोटरयान अधिनियम है, इसके क्या मुख्य उद्देश्य है, इसके क्या प्रावधान है?
7: देखिए, आजकल के बदलते परिवेश में लोग बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं और जीवन के प्रति उनको बिल्कुल भी लगाव नहीं है। आप देखते होंगे सड़कों पे और गलियों में लोग अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं, लापरवाही से चलाते हैं। जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, ये जो है लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है
6: जी।
7: और इसमें जो पहले प्रावधान थे वो उतने कारगर नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में अब इसमें बदलाव आ चुका है
6: जी।
7: और 2019 के संशोधन के बाद जो है इसमें कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसमें बहुत भारी जुर्माना इसमें लगाया गया है
6: जी। हम सुनने वालों को बताएं कि क्या क्या धाराएं हैं और क्या क्या, जैसे हम देखते हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो गाड़ी चलाते हैं, यदि अगर उनका किसी तरीके से चालान होता है या वो अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पे क्या धाराएं लग सकती है, क्या प्रावधान है उनके लिए?
7: देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आजकल नाबालिग बच्चे ही गाड़ी लेके जा रहे हैं और उनके अभिभावकों को पता भी नहीं है कि उनके गाड़ियां वो लेके जा रहे हैं और बाद में दुर्घटना करके आ जा रहे हैं, तो फिर पता चल रहा है कि वो उन्होंने जो है घटना को अंजाम दे दिया गया है। लेकिन जो इस अधिनियम में है, जो संशोधन अभी अधिनियम 2019 का आया हुआ है, उसमें मुख्य मुख्य जो धाराएं हैं मैं आपको बताना चाहूंगा
6: जी।
7: उसमें जो सबसे पहले धारा 3/128 है, ये कहती है कि बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको जो है 5,000 रुपये तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। और उसका जो दूसरा धारा है 129/194D, जो बिना हेलमेट के, जिसमें 1,000 रुपये का न्यूनतम इसमें जुर्माना है और इसमें DL को जो है 3 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रावधान भी है। और धारा 183 ओवर स्पीड, जो आजकल हमारे बच्चे चला रहे हैं और जो यंगस्टर हैं वो बहुत चला रहे हैं, तो इसमें आपको 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरा आपका 184 है, जो खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं जो लोग, वो उसमें 5,000 तक का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल में भी इसमें जाना पड़ सकता है। और जो कॉमनली आजकल लोग चलाते हैं, टैक्सियाँ चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 185 है शराब पीकर गाड़ी चलाना, जिसमें 10,000 तक का जुर्माना है और 6 महीने की कैद है इसमें। और 194B है, इस बिना सीट बेल्ट के, इसमें आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। और 194E, जो एम्बुलेंस को पास नहीं देगा, उसके लिए जो है 10,000 रुपये का जुर्माना इसमें देना पड़ सकता है। और 196 है, बिना इंश्योरेंस के जो गाड़ी चलाएगा उसको 2,000 रुपये का दंड भुगतना पड़ेगा। और 177 है, जो सामान्य जो अपराध का आदमी करता है, तो इसमें 500 से लेकर 1500 तक का जुर्माना रखा गया है।
6: जी, आपने ये प्रावधान और धाराएं और इन पे लगने वाले जितने भी दंड है वो बताए। हम एक व्यावहारिक जीवन में अगर हम इनकी तुलना करें, चाहे हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट

0: है या फिर शराब पीकर गाड़ी न चलाना, ये तमाम जितने भी धाराएं लगाई गई हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए कितना जरूरी है हमें इन नियमों का पालन करना?
1: देखिए, ये जो कड़े नियमों का जो प्रावधान अभी रखा गया है MBA एक्ट में, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनमानस आजकल जो बाज़ार में चल रहा है या सड़कों पे चल रहा है, तो वो देखते होंगे कि वो उनको पता भी नहीं चलता है कब उनको उनके साथ दुर्घटना हो गई है, और आदमी का आना जाना मुश्किल हो गया, इतने तेज़ी से और लापरवाही से आजकल गाड़ियां चला रहे हैं, शराब पी के गाड़ियां खड्ड में गिर रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कड़े प्रावधान इसके लिए जो है समाज के लिए बहुत बदलाव लाएगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे तो समाज

0: उनको पता भी नहीं चलता है कब उनको उनके साथ दुर्घटना हो गई है, और आदमी का आना जाना मुश्किल हो गया इतने तेज़ी से और लापरवाही से आजकल गाड़ियाँ चला रहे हैं, शराब पी के गाड़ियाँ खड्ड में गिर रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कड़े प्रावधान इसके लिए जो है समाज के लिए बहुत बदलाव लाएगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे तो समाज पे और व्यक्ति विशेष पर नियंत्रण नहीं हो सकता।
1: जी
0: इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इसमें एक नया जो अमेंडमेंट MV एक्ट का 2019 का है, इसमें जो जुर्माना तो 10 गुना कर दिया गया है, लेकिन इसमें गुट समर्थन लॉ एक करके है, इसमें धारा 134A है। इसमें लोग पहले क्या करते थे, एक एक्सीडेंट होता था देख के नज़रअंदाज करते थे, कोई किसी की मदद नहीं करता था, क्योंकि वो समझते थे कि पुलिस उनको परेशान करेगी, कोर्ट परेशान करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप जो है इनकी मदद कर सकते हो, आपको ना पुलिस परेशान कर सकती है ना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ ही एक हिट एंड रन करके एक नया इसमें प्रावधान डाला गया है, इसमें धारा 161 है, इसमें सरकार की तरफ से एक ये प्रोत्साहन राशि है जिसमें आपको 2 लाख रुपये अगर किसी की मृत्यु हो जाती है वो उसी समय ऑन द स्पॉट आपको देने का प्रावधान रखा गया है। और इसके साथ साथ ही अगर कोई सीरियस रूप से घायल होता है तो उसमें आपको 50,000 रुपये तक का मिलेगा, इसमें ये प्रावधान रखा गया है।
1: जी, मोटर दुर्घटना क्लेम एक अधिनियम है, इसमें क्या प्रावधान है? जैसे किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है गाड़ी से चलते वक्त या उसकी डेथ हो जाती है, उसके प्रावधान क्या है, क्या क्लेम है ये, इसके अधिनियम के बारे में बताएं सुनने वाले श्रोताओं को।
0: इसमें भी एक प्रोविज़न जो पुराने अधिनियम है उसमें दिया हुआ है कि आप जो है 160 MV एक्ट में आप एक न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हो, अगर कोर्ट उसकी स्क्रूटनी करेगी, जांच करेगी, और उसमें अगर पाया जाएगा कि उसको इंजर्ड है तो उसमें जितना उसका इलाज में खर्चा हुआ है, जो उसके बिल हैं, बाकी उसके एक्सपेंसेस जो लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से क्लेम कोर्ट देती है। अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो इनकम होती है इनकम के आधार पे तय किया जाता है कि कितना इसको क्लेम मिलना चाहिए, एक अमाउंट उसको मिल जाता है, तो ताकि परिवार उसका आर्थिक रूप से सक्षम हो सके।
1: जो आप क्लेम देने की बात कर रहे हैं, ये क्लेम मुख्यतः है कौन देगा?
0: ये आप हमारे अल्मोड़े में तो जो है मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, तो जिसमें जिला जज साहब जो इसमें इसमें बैठते हैं, तो इनके न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देना होता है, तो जो संबंधित इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम देती है इस मैटर में।
1: इसीलिए जो हम MV एक्ट में इंश्योरेंस की बात कर रहे थे
0: जी
1: कि
0: जी
1: इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी
0: हाँ,
1: है।
0: ये इसीलिए जो आप इंश्योरेंस करा के रखते हो गाड़ी का, तो ये आपको बाद में फ़ायदा पहुंचाता है, और इसी पे उनकी जिम्मेदारी तय होती है कंपनी की, आप इंश्योरेंस कितना लोगे।
1: यानी कि ये व्यक्तियों के सुरक्षा के ही लिए एक तरीके का प्रावधान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी है, और उनको सुरक्षा प्रदान करना है कि जो जिनका परिवार का एकमात्र कमाऊ व्यक्ति है जो दुर्घटना में मारा गया या क्षतिग्रस्त हो गया, तो उनको एक आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने का भी ये एक अच्छा कानून है।
1: मनोज जी, आप अधिवक्ता होने के नाते हम आपसे इसी क्रम में सवाल पूछेंगे। नशे को लेके हम बात कर रहे हैं, नशा आज के डेट में हमारे समाज के लिए बहुत घातक हो रहा है, आए दिन लड़ाई झगड़ाई, तमाम सारी कुरीतियां, तमाम सारे अपराध पैदा हो रहे हैं। आप नशे को किस नज़र से देखते हैं और कानून अधिनियमों में क्या प्रावधान है इसको रोकने के?
0: नशा तो एक प्रकार से हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, और आप देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप उनको बड़े प्यार से स्कूल भेजते हैं, उसकी ट्यूशंस भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है कि वो लोग नशे में संलिप्त पाए जाते हैं, और उनकी अभी इतनी आयु भी नहीं होती है जितना वो लगने लगते हैं अपने चेहरे से,
1: जी
0: और नशे की ओर उनका सबसे ज़्यादा रुझान होता है, और वही नशा उनको एक दिन जो है अपराध की दलदल में धकेलने को मजबूर करता है,
1: जी
0: और वो इतनी गंभीर घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, तो बाद में जब नशा उनका उतरता है तो फिर उनको पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और ऐसा तो मैं करना नहीं चाहता था लेकिन नशे के कारण मैंने ये सब चीज़ कर दी है। तो ये नशा तो आज के डेट में देखेंगे कि पूरा मतलब समाज को तो खोखला कर ही रहा है, लेकिन जो युवाओं का भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है इसमें।
1: नशे को लेके जैसे तमाम सारे कानून बने हैं, क्या कानून हैं?
0: नशे में तो महत्वपूर्ण कानून हमारा जो है NDPS का कानून है, और बाकी ड्रग एक्ट है उसमें भी कई केस होते हैं, और NDPS का महत्वपूर्ण है मामले आजकल जो समाज में देखने को मिलते हैं, चरस बरामद हो रही, स्मैक बरामद हो रही, गांजा बरामद हो रहा है, तो ये सारी सारी चीज़ें जो है NDPS में ही आती हैं।
1: इसमें भी बहुत बड़े कड़े प्रावधान हैं।
0: जी, इसमें कड़े प्रावधान है, इसमें आपको जो है न्यूनतम जो है 10 साल की तो इसमें है ही कैद, और इसमें जुर्माना भी 1 से 1.5 लाख के करीब है।
1: जो अर्थदंड के रूप में
0: जी
1: बनना
0: जी
1: पड़ गया।
0: जो जी जी
1: इसके अलावा शराब पे क्या अधिनियम है?

0: शराब पे तो हमारा एक आबकारी अधिनियम बना हुआ है, उसमें कुछ न्यूनतम क्वांटिटी है। उसके ऊपर अगर आप शराब किसी सार्वजनिक स्थल पे बेचते हो या परोसते हो रेस्टोरेंट में, तो उसमें वो पनिशेबल बनाया गया है उसके।
1: कोई व्यक्ति शराब पीकर हुड़दंग मचाता है या समाज को अव्यवस्थित करता है, गाली गलौज करता है, एक विद्रोह पैदा करता है, तो उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती
0: उसमें
1: है?
0: तो पुलिस एक्ट 2007 का उत्तराखंड का बना हुआ है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल में शराब पी के उत्पात मचाएगा या परेशान करेगा या डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा दूसरे के लिए, तो उसमें पुलिस जो है 85 धारा जो है उसमें कार्रवाई करती है सीधा और उसको दंड देती
1: तो
0: है।
1: मनोज जी, आपने हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही इस जानकारी को सुनकर वो लाभ लेंगे और अपने जीवन के प्रति, अपने बच्चों के प्रति सचेत रहेंगे, यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। आप उत्तरोत्तर की दिशा में काम करें। आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता आप सुन लग रचा क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता मोटर यान अधिनियम और नशे विरुद्ध अधिनियम पर अधिवक्ता मनोज बिरजवाल दगाड़ करी गई हो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता कार्यक्रम में अगिल आपको सुनान लग रिया लोकगीत गायक दीवान कनवाल और शंकर उप्रेती।

0: श्रोता आप सुनन लग रहा छा कुमाऊनी लोकगीत शंकर उप्रेती और दीवान कन्वालक स्वर में।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सोता हम देखना लग रहा कि हमार जो समाज छु आजक वक्त में जो नशा छु, नशाल पूरा तरीकल उस समाज का जगड़ हलो, और जो युवाओं जीवन छु वो एक तरीकल अंधकारक तरफ जान लाग रहो। देश भर में युवा पीढ़ी के बीच मादक पदार्थों की लत एक गंभीर समस्या बढ़ते जान लग रहे, जैक प्रभाव केवल नशा करणी वाल व्यक्तियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि परिवार, समुदायों और पूरे समाज पर पड़न लाग रहो। मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि बटी अपराध दर में वृद्धि होने लग रहे, और सामाजिक कल्याण पर यह एक व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़न लाग रहो। मादक पदार्थों पर निर्भर मनखियों की रोकथाम संबंधित शिक्षा, जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार, पुनर्वास, प्रशिक्षण और सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण पर केंद्रित छू। नशा मुक्ति भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक मुख्य राष्ट्रीय पहल छू, जैक मुख्य उद्देश्य युवाओं के मादक पदार्थों की लत बट को बचोन छू। नशा मुक्ति केंद्रों जरिए पुनर्वास करण और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाजक निर्माण करण छू। श्रोताओं, भारत में नशे के विरुद्ध कानून, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 छू, जगह हम NDPS एक्ट लगुनू। यो कानून अवैध मादक पदार्थों उत्पाद, बिक्री, परिवहन, भंडारण और सेवन के पूरी तरीके प्रतिबंधित करूँ। भारत में नशीली पदार्थों के निर्माण, व्यापार, सेवन और तस्करी का रोकने के लिए बनाई गई यो सबसे महत्वपूर्ण और सख्त कानून छू। यो कानून संपूर्ण भारतक दगड़ दगड़ विदेशों में रोने वाल भारतीय

0: भारतीय नागरिकों पर प्रलय लागू हूँ। श्रोताओं, एनडीपीएस एक्ट धारा 8 नशीली पदार्थों उत्पादन, बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगू। वह धारा 27 जो चु निजी उपयोग सेवनक लीजिए नशीली दवाइयों धरण या सेवन करण पर दंडक प्रावधान करूं। धारा 42 और 43 में जांच अधिकारियों जस पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिना वारंटक तलाशी लेन जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार उनका ये दियूं। पकड़ी गई नशीली पदार्थों की मात्रा नानिया व्यावसायिक आधार पर 6 महीने बट को लिबेर 20 साल तक कठोर कारावास और 1 लाख रुपये बट को 2 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान छू। बार बार अपराध करण पर मौतिक सजा लय में दी जा सके। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियमक धारा 27 के तहत नशीली दवाओं सेवन ल एक अपराध छू। जैग लीजिए 6 महीने बट को 1 साल तक सजा ह सकू। भारतीय न्याय संहिता धारा 23 तरह तहत कोई ल मन की उन्हें इच्छा के विरुद्ध धोखे या जबरन नशा देने पर उनके कानूनी संरक्षण प्राप्त करूं। तो तमाम सारी जो ये कानूनी पहलू छन इनके मद्देनज़र ध्यान में धरते हुए आजक वक्त में मनखी के यो बात का सोचन छे कि जहाँ एक तरफ अपन रोजगार चुनौना के लीजिए और समाज में इदुक सारे अत्याचारों के रोकना के लीजिए, अगर हम एक तरीक़ल अपन मन में यो ठान लियो कि हमको नशा मुक्त भारत के तरफ एक राष्ट्र निर्माण कर रहा छूँ, तो निश्चित तौर पर हमको यो बात का सोचना पड़ल कि कैसे हम आजक वक्त में नशे के प्रति सचेत रहूँ, अपन आस पड़ोस अपन समाज में और अपन पूरा एक जो माहौल छू उको बढ़ाने की कोशिश करना पड़े कि जन जागरूकता के माध्यमल या फिर शिक्षा के माध्यमल मनखियों के यो समझौन पड़ल कि कैसे हम नशा हमार जीवन में पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, घर बर्बाद है जानी नशे की वजह। हम देखने लग रहे हैं कि कोर्ट कचहरियों में और अन्य जगहों में नशे की वजह घर टूट जानी, घर बर्बाद है जानी, आए दिन उनर लीजिए बहुत सारे अत्याचार होने लग रही। तो यो बात कल हमको देखना पड़ल। दूसरी तरफ हम देखने लग रहा कि आजक वक्त में जो नशा प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति छन वो जंगलों में आग लगे दिनी। जंगलों का बचौने के लिए जी हमार एक निरंतर प्रयास यह होना चाहिए कि कशिक हम अपन आजक वक्त में स्वस्थ समाज के बनाए धरना के लिए जी जंगलों के लिए बचाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी छू। क्योंकि जंगलों पर ही मनखियों जीवन निर्भर छू। हमको जंगलों पर बहुत सारी चीज़ों प्राप्त होने लग रही, तो उन संसाधनों के देखते हुए हमको अपन जंगलों के अपन जो संसाधन छन उनका बचौना के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ल और नशे बट को दूर रोने के लिए हमको एक कठोर निर्णय लेना पड़ल और दृढ़ संकल्प लेना पड़ल कि कैसे हम यो नशे के अपू बट को दूर कर सकनों और एक सभ्य समाज निर्माण में हम कर सकनों।
1: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: श्रोता कार्यक्रम अगिल अब आपको सुनान लग रहा चंद्रकला जोशी स्वर में यो लोकगीत।

श्रोता आप सुनने लग रहा है यो लोकगीत चंद्रकला जोशी स्वर में और यही लोकगीतक के कारण हमारे आज उत्तरायण कार्यक्रम इलाके संपन्न हो आप दगा हो एक नई अंक में फिर भेंट हुई और अब थोड़ा देर बाद आप सुनला उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार जो हमार देहरादून केंद्र बट को रिले हाल आप थोड़ा प्रतीक्षा करिया एलमिका आज्ञा दियो नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉनसून से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून जिले में पहली बार ब्लूबेरी खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके तहत सहसपुर ब्लॉक के 10 किसानों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर पौड़ी जिले में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, 492 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में सीवरेज कार्यों के कारण खोदी गई सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉनसून से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने भूस्खलन, बाढ़ और भू कटाव संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए संवेदनशील गांव, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर विशेष निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने मॉनसून अवधि के दौरान गर्भवती महिलाओं का पूर्व चिन्हीकरण कर उनकी स्वास्थ्य जांच, आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि मौसम संबंधी अलर्ट का ग्राम स्तर पर त्वरित प्रसारण किया जाए और पर्यटकों व यात्रियों को भी समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में आपदा और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मशीनरी की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने के साथ ही बंद मार्गों को शीघ्र खोलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में बीते 4.5 वर्षों में सरकार ने 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश में सबसे बड़ा कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे भी राज्य सरकार इसी रफ्तार

0: पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर देती रहेगी। उन्होंने कहा कि विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खाली पदों को तुरंत भरा जाए।
1: ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हो रही हैं। बीते 4.5 वर्षों में सरकार ने 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम किया। हमारी सरकार आगे भी इसी प्रकार, इसी पारदर्शिता के साथ और इसी निष्पक्षता के साथ युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर देती रहेगी। हमने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभागों में खाली पद हैं उनको तुरंत भरा जाए।
0: कृषि और बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में देहरादून जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में जिले में पहली बार ब्लूबेरी खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सहजपुर ब्लॉक के 10 किसानों का चयन किया गया है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में खेती के लिए 500 ब्लूबेरी पौधे 80% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2: ब्लूबेरी कॉन्सेप्ट पे जो मेरी जिला स्तरीय अधिकारियों से बात हुई और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब जिला योजना या मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स पे बात हो रही थी, तो इस दौरान हम लोगों ने ब्लूबेरी को प्रमोट करने के लिए एक प्लान या मेरी तरफ से डायरेक्शन उन्हें दिए गए और उसमें उन्होंने सहसपुर में एक लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया और उसमें 10 किसानों को पायलट बेसिस पे इसके कल्टिवेशन के लिए प्रमोट या सपोर्ट किया जाएगा।
0: मुख्य उद्यान अधिकारी डीके तिवारी ने बताया कि ब्लूबेरी उच्च मूल्य वाली फसल है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 से 1.5 हजार रुपए प्रति किलोग्राम तक रहती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे ब्लूबेरी की व्यावसायिक संभावनाएं भी मजबूत हुई है।
3: मार्केट के अंदर अब बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं जिनके पास पैसा है और वो एंटीऑक्सीडेंट चाहते हैं, वैरायटी ऑफ फूड चाहते हैं, उनके पास पेइंग कैपेसिटी है। उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए हम ब्लूबेरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, एज ए पायलट प्रोजेक्ट जिला योजना में कर रहे हैं। दूसरा, नबार्ड पाली हाउस स्थापित हो रहे हैं तो इसको हम नबार्ड के द्वारा जो पाली हाउस बन रहे हैं उसके अंदर करना चाहेंगे और कुछ किसानों को हमने प्रशिक्षण भी कराया था, उसमें से कुछ एक किसान हैं जो इस काम को करने के लिए तैयार हैं।
0: जिला प्रशासन किसानों की उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य करेगा ताकि उन्हें उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सालयों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन शिविरों में 492 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही उन्हें जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, प्रसव पूर्व तैयारी और संतुलित पोषण के संबंध में जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव मोहन शुक्ला ने बताया कि बीते 10 वर्षों में इस अभियान के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान व उपचार, निशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधाओं का विस्तार, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा और रेफरल सेवाओं को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि मातृ और नवजात मृत्यु दर में कमी लाने तथा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में सीवरेज कार्यों के कारण खोदी गई सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के बाद संबंधित विभाग और ठेकेदार दिन रात काम कर रहे हैं ताकि यात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मेले से पहले सीवरेज कार्यों के कारण प्रभावित सभी सड़कों की मरम्मत हर हाल में पूरी की जाए ताकि श्रद्धालुओं और आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रदेश में 14 जून तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से आज रुद्रपुर के डीडी चौक पर शिविर लगाकर लगभग 50 चालक व परिचालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई।

0: इस दौरान जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने चालक और परिचालकों की आंखों की जांच कर दवाएं वितरित की। प्राधिकरण के अध्यक्ष सिकंद कुमार त्यागी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है।
1: इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक पूरे सप्ताह में जो लोगों को जागरूक करना, लोगों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराना और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी का सहयोग प्राप्त करना और सड़क को सुरक्षित बनाना जो इसका उद्देश्य है। मैं अपनी ओर से और अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से, अपने सभी अधिकारीगण की ओर से इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं और हम आशा करेंगे कि हमारा जिला उधम सिंह नगर दुर्घटना रहित हो।
0: वहीं चालक विजय वीर और नरेश पाल ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि इस तरह के शिविरों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
2: सर, इसमें न्यायालय द्वारा ये पहली बार हमारे यहाँ एक एक प्रोग्राम रखा गया है, बहुत अच्छी पहल है। इसमें हमारे ड्राइवरों का आंखों का चेकअप होगा और भी समय पे जो भी सुविधा मिलेगी वो मिलती रहेगी इनको।
3: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक प्रथम पहल चलाई गई है जिसमें कि जो हमारे टेम्पो चालक और टू व्हीलर और पैदल और फोर व्हीलर में बसेस के जितने भी चालक एवं परिचालक सभी लोगों को इस कार्यक्रम के द्वारा बताया जा रहा है। ये नियम सुचारू रूप से चालक और परिचालकों को दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा शुरुआत पहल की गई है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉनसून से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून जिले में पहली बार ब्लूबेरी खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके तहत सहजपुर ब्लॉक के 10 किसानों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर पौड़ी जिले में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, 492 गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई और चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में सीवरेज कार्यों के कारण खोदी गई सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 14.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। आज के भक्ति संगीत कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं शर्मा बंधुओं के गाए इस भक्ति बंधन के साथ।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने भक्ति वंदन सुना। इसी के साथ भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुए हैं। कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी मृणाल रतुड़ी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का माध्यम से विभिन्न विभागों में चयनित 221 अभ्यर्थियों ते नियुक्ति पत्र दिनी। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू होने के बाद मात्र 39 दिनों में रिकॉर्ड 36,776 परमिट जारी हुए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 वर्ष पूरा होने पर पौड़ी जिला में विशेष स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजन। 492 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कैरी गई। और नैनीताल नगर पालिका परिषदन बढ़न लगिया प्लास्टिक कचरा का समस्या से निपटन खुणी नई पहल शुरू करी। कचरा जमा कन वालों तय QR कोड का माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करी जालू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का माध्यम से शहरी विकास, कौशल विकास, सेवायोजन विभाग और पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 221 अभ्यर्थियों ते नियुक्ति पत्र वितरित करी। मुख्यमंत्री सभी चयनित अभ्यर्थियों ते शुभकामनाएं देंदादों बोली कि प्रदेश में बीत्या 4.5 वर्षों में सरकारन 33,000 से अधिक युवाओं ते सरकारी सेवाओं से जोड़न को काम करी। उन बोली कि राज्य सरकारन देश में सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करी। मुख्यमंत्री ने बोली कि अगिन भी राज्य सरकार ये रफ्तार पारदर्शिता और निष्पक्षता का साथ युवाओं तय लगातार रोजगार का अवसर देंदी राली। उन बोली कि विभागों तय स्पष्ट निर्देश दिया छन कि खाली पदों तय तुरंत भरी जाओ।
1: ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हो रही हैं। बीते 4.5 वर्षों में सरकार ने 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम किया। हमारी सरकार आगे भी इसी प्रकार, इसी पारदर्शिता के साथ और इसी निष्पक्षता के साथ युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर देती रहेगी। हमने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभागों में खाली पद हैं उनको तुरंत भरा जाए।
0: पिथौरागढ़ जिला में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा खुणी जारी होने वाला इनर लाइन परमिट की संख्या पिछले साल सभी रिकॉर्ड पिछिन छोड़ी। पिछला साल पूरी यात्रा सत्र के दौरान 36,526 इनर लाइन परमिट जारी करिया छा, जबकि ये साल यात्रा शुरू होने का मात्र 39 दिनों का भीतर ही 36,776 परमिट जारी हुए। जिला

0: अधिकारी आशीष भटगाइन बोली कि यात्रा ते लेकी श्रद्धालुओं में लगातार बढ़न लग्यू उत्साह, ये साल नया कीर्तिमान स्थापित करना छन। उन बोली कि यात्रा मार्गों पर बेहतर सड़क संपर्क, यात्री सुविधाओं को विस्तार और आवासीय व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार का सकारात्मक परिणाम सामने आना छन। यात्रा में बढ़ती सहभागिता को लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था तय मिलणुच, ये से दूरस्थ क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होनी च, साथ ही स्थानीय लोगों खुणी रोजगार और आजीविका का नया अवसर भी मिलना छन।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल आदि कैलाश के जो दर्शन किए थे पूरे सीजन में, वो 36,600 के करीब श्रद्धालु वहां पर गए थे, और इस बार केवल अभी 39 डेज में ही हमारे 36,700 यानी पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट गया है। तो इतने श्रद्धालुओं ने ऑलरेडी दर्शन कर लिया है, और जिला प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इस बार बेटर रोड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की गई है, थोड़ा रोड का जो चौड़ीकरण है वो और बेटर हुआ है, और साथ ही साथ जो वहां पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है उनका भी लगातार उसमें डेवलपमेंट चल रहा है, और अच्छे होम स्टे भी अब वहां पर आ रहे हैं, तो इसीलिए श्रद्धालुओं का लगातार जो है इंप्रो आपके लिए बढ़ हो रहा है, और लोकल जो वहां की आर्थिकी है उसका भी इसके माध्यम से उन्नयन हो रहा है।
0: प्रदेश में ब्याली बिटिन शुरू विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तमन सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ते गणना फॉर्म दिनी। यू अभियान 7 जुलाई तक चलू। वकी उत्तरकाशी जिला का सीमांत क्षेत्र बरी गाँव में बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर ग्रामीणों ते गणना प्रपत्र वितरित करी। ग्रामीणों चुनाव आयोग की ये पहल को स्वागत करी। मतदाता सूची ते शुद्ध और त्रुटि रहित बनाण और जागरूकता अभियान ते खास बनाण खुणी बरी गांव का ग्रामीणों ने एक न्यारू तरीको अपने। ग्रामीणों ने अपनी समृद्ध पारंपरिक और स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शन करी और तांदी व हारुल नृत्य की प्रस्तुति दिनी। पारंपरिक संगीत और चलदा कदमों का बीच ग्रामीणों ने न सिर्फ चुनाव आयोग को धन्यवाद करी बल्कि पूरा क्षेत्र में SIR और मतदाता जागरूकता को संदेश भी दिनी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्यन जिला का नागरिकों से अपील करी कि उन सब जुलाई तक चलन वाला ये कार्यक्रम में BLO को सहयोग करिया और समय पर अपना प्रपत्र जमा करिया।
2: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 साल पूरा होने पर आज पौड़ी जिला में स्वास्थ्य विभागन सभी अस्पतालों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजन करी। यूं शिविरों में 492 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हुए। दगड़ा ही उतें जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, प्रसव पूर्व तैयारी और संतुलित पोषण का संबंध में जानकारी देनी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवमोहन शुक्लान बताए कि बीत्या 10 सालों में यह अभियान का माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान व उपचार, निशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधाओं को विस्तार, संस्थागत प्रसव ते बढ़ावा और रेफरल सेवाओं ते मजबूत कनमा खास सफलता मिली। सुरक्षित मातृत्व निश्चित कनमा यू अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाणु छ। नैनीताल नगर पालिका परिषदन बढ़न लग्या प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटन खुणी नई पहल शुरू करी। योजना का तहत खाली पानी की बोतल, शीतल पेय का केन और चिप्स का रैपर जमा कन पर प्रति इकाई 2 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाली। ये ते मॉल रोड और तल्लीताल डांठ क्षेत्र में कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित करिया छन। वकी रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्लास्टिक कचरा जमा करी जालू। नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने बताया कि कचरा जमा करने वाला व्यक्तियों ते QR कोड का माध्यम से तुरंत ऑनलाइन भुगतान करी जालू। योजना को मुख्य उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों ते एकल उपयोग वाला प्लास्टिक कचरा को ठीक निस्तारण खुणी प्रोत्साहित कर और शहरों ते साफ बने रखण च। उन बताए कि पालिका की टीमें घर घर जाके भी लोगों ते प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और स्वच्छता का प्रति जागरूक करनी च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर की ओर से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत ब्लॉक सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन करी गई। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं का दौरान बचाव, यातायात नियमों, निशुल्क कानूनी सहायता और नशा से होने वाला बुरा असरों की जानकारी देनी। प्राधिकरण की सचिव अनिता कुमारी ने बताया कि 1 हफ्ता तक चलने वाला ये अभियान को उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों को पालन अर्धदुर्ग

0: घटना पीड़ितों ते समय पर सहायता उपलब्ध करने के प्रति सामान्य लोगों ते जागरूक कंच।
1: इस अभियान को चलाए जाने का उद्देश्य यही है कि हम प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों से रूबरू करा सकें और उनको ये बता सकें कि वो सड़क सुरक्षा उनकी जीवन रक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण। हमारे जितने भी अधिकार मित्र हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है SDRF की टीम के द्वारा कि अगर किसी भी व्यक्ति का कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो त्वरित उनको कैसे लाभ पहुँचाया जा सके, कैसे भी उनको निकटतम जो भी अस्पताल वगैरह है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। और जो राहगीर योजना है उसके तहत लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमारे अधिकार मित्र जागरूक कर पाए ताकि लोग डरे ना कि किसी की हेल्प करने से उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई होगी या कोई अड़चन आएगी।
0: चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा से देखी हरिद्वार में सीवरेज कार्यों का कारण खुदी सड़कों को सुधार और पुनर्निर्माण को काम जोरू से चनुच। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का निर्देशों के बाद संबंधित विभाग और ठेकेदार दिन रात काम करना छन, जैसे यात्रियों स्थानीय लोगों और व्यापारियों ते आन जान में कई प्रकार की परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने निर्देश देनी कि कांवड़ मेला से पहले सीवरेज कार्यों से प्रभावित सभी सड़कों को सुधार कै भी हाल में हुई चैन, जैसे श्रद्धालुओं और आम जनता ते भली यातायात सुविधा मिल सको। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का माध्यम से विभिन्न विभागों में चयनित 221 अभ्यर्थियों ते नियुक्ति पत्र दिनी। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू होने का सिर्फ 39 दिनों में रिकॉर्ड 36,776 परमिट जारी भे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 साल पूरा होने पर पौड़ी जिले में विशेष स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजन। 492 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच करी गई और नैनीताल नगर पालिका परिषदन बढ़न लगिया प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटन खूनी नई पहल शुरू करी। ये का दगड़ी ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 7 बजे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने से बस श्रोताओं के श्याम भटुक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत छापू सब लोग नक हमारे आज कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम का प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत में हम आप लोगों का करनू कुछ बातचीत। आज हम बात करनू जो हमारे देश में बरखे में आधारित जो खेती प्रणाली से वीमे की वी विशेषता छन और वीमे की किसानों के महत्व हों कस भी नुकसान होना ये बारे में हम बात करना। श्रोता जैसे हम देखना हमारे जो देश से वीक ज़्यादातर जो खेतबर से आइले मानसून में आधारित जो बर्ख से वी में निर्भर रहूँ लेकिन अचानक बखत मिले सिंचाई की पर्याप्त सुविधा ना हो पान हमारे जो खेती से वीक लीजिए बहुत नुकसान होने वाले। अगर बात करूँ तो यु प्रणाली खाद्य सुरक्षा ग्रामीण रोजगार और जो खेतबर में होने उत्पादन से वी मिले बहुत महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। बरखा आधारित खेत में फसलों की सिंचाई मुख्य रूप पर जो प्राकृतिक बरखा हों वी में निर्भर रहूँ और किसान बरखा समय और फिर मात्रा का हिसाब फसलों का चयन कर सूँ और खेती जो और गतिविधि से उन चलूँ ये मैं जो सिंचाई के लिए पाँच छः वीक थे बस बरखा पर निर्भर होने वाला हूँ और ये मैं खेत बड़े अधिकतर कम लागत वाले करी जाए जैमें कि उनके अगर नुकसान हो तो वो ज़्यादा मात्रा में न हो और वी में स्थानीय जलवायु या फिर माटक अनुसार फसलों का चयन करी जाए। बरखा टाइम बेटाइम होने के कारण ये उत्पादन वाले बहुत उतार चढ़ाव हो वी का दगड़ मठ और पानी के संरक्षण के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ।

अगर बात करूँ मैं प्रमुख फसलों की, मैं उगाई जाने वाली जन प्रमुख फसल छन उन ज्वार, बाजरा, मक्के और दालों में चना, अरहर या फिर उड़द। वी के अलावा तिलहनों में सरसों, तेल या फिर तिल और मूंगफली जैसी फसल मुख्य छन। इनमें जो सिंचाई वाली इन फसल छन, इनमें सिंचाई में कम खर्च हों और वी का दगर जो भूजलक जो ज़्यादा दोहन से वी के लिए आवश्यकता हमको ना पड़नी। ये हमको जो प्राकृतिक संसाधन छन उनों के लिए संरक्षण है तेरू और यही जैविक और फिर टिकाऊ कृषि के लिए बढ़ावा दे रूँ। लेकिन ये मैं चुनौती लिए बहुत हूँ छीन, जैसे कि जो बरखा के टाइम बेटाइम हूँ छे वील वहाँ सूखा के लिए खतर हूँ। वी के अलावा भी मैं उत्पादन में ले असर पड़ छूँ और वील आय में ले असर पड़ छूँ। ये मैं माटा कटाव या फिर पोषक तत्वों कमी ले हमको देखने मिल छी और जो जलवायु परिवर्तन से वी कारण ए मल ए नुकसान हमको देखने मिल छो। ये में हमको जो जरूरी बात छन उन्होंने जो बरखा के पानी से वी का संरक्षण करना जरूरी छे। वी के अलावा फसल चक्र या फिर मिश्रित खेत का अपन जरूरी हों या फिर हमको जन सूख या फिर इन कम सिंचाई वाली फसल छन इनों के हमको उपयोग करना पड़ो।

0: से वीक कारण एम एल ए नुकसान हमको देखने मिल छो। एम हमको जो जरूरी बात है उन्होंने जो बरखक पान छे वीक संरक्षण करन जरूरी है, वीक अलावा फसल चक्र या फिर मिश्रित खेत का अपन जरूरी हो, या फिर हमको जन सूख या फिर इन कम सिंचाई वाल फसल छन इनू के हमको उपयोग करन पड़ो। वीक अलावा किसानों के आधुनिक कृषि प्रशिक्षण दिन पड़ो और उनके एक द्वारा लाभ ले ली जा सकते। जो बरखा आधारित खेत प्रणाली है यो हमारे देश के कृषि व्यवस्था का बहुत ठूल आधार है। हालांकि इसमें बहुत चुनौती ले छन, लेकिन अचानक बखत में अगर जल प्रबंधन बढ़िया करी जो वीक अलावा माटक संरक्षण और कृषि तकनीकों का प्रयोग करके एक उत्पादक बनाई जा सकते। और हम के लिए यो ध्यान रखें कि किसानों का आय बढ़ो और जो खाद्य सुरक्षा है वी में एक निश्चितता बन रखते हैं, यो कृषि का हमको जरूर लाभ देवनियाल बनन पड़ो। तो यो तो चाहिए कुछ बातचीत आप कार्यक्रम आगे बढ़ू और अपन लोगों का सुनो मृदा क्षरण रोकन में कृषकों के योगदान यो विषय पर चंद्रेश्वर तिवारी दगड़ करी हुई प्रमोद पांडे भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, श्रोताओं आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोसी मटेला अल्मोड़ा के प्रभारी डॉक्टर चंद्रेश्वर तिवारी जी। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा क्षरण रोकने में कृषकों की भूमिका विषय पर। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद पांडे जी।
1: सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये खेत बचाओ अभियान क्या है।
2: देखिए खेत हमारे जीवन का आधार है, या अगर हम कहें तो मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। आपने सुना भी होगा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो मिट्टी हमारा ये मूल है, मिट्टी के ऊपर ही हमारा पशु का इंसान का और पेड़ पौधों का सभी का जीवन निर्भर है। लगातार खेती करने के साथ साथ और कुछ असंतुलित उर्वरक प्रयोग या अवैज्ञानिक तरीके से खेती करने की वजह से धीरे धीरे हमारी जो ये मिट्टी है इसका स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता भी घटी है इस मिट्टी की
1: जी।
2: और किसान की लागत भी बढ़ी है। तो अब ये सब समय आ गया है कि हम इसके बारे में सोचें। इसी को चिंतन में ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है, जो 1 जून से 30 जून तक चलेगा और ये राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इसमें समस्त कृषि विश्वविद्यालय, ICR के सारे इंस्टीट्यूट, देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्र, सभी कृषि विभाग और संबंधित विभागों के कर्मचारी अधिकारीगण
1: जी
2: सभी लोग इस मुहिम में राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं।
1: लेकिन सर जो हमारे कृषक हैं, बहुत सारे कृषक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी जो खेती है उसमें उपज अच्छी नहीं हो पा रही है, और मृदा क्षरण रोकने में हमारे जो कृषक हैं उनका क्या योगदान हो सकता है।
2: देखिए अगर मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात करूं
1: जी,
2: तो हमारी पर्वतीय क्षेत्र की जो खेत है
1: जी,
2: ये ढालदार खेत है और टेरेस फार्मिंग हमारे यहाँ पे होती है, बेंच टेरेसेस हम इसको कहते हैं तकनीकी रूप से। और अगर ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारे आज की जनरेशन ने इसमें से एक भी खेत बनाए नहीं है
1: जी,
2: ये हमको परंपरागत रूप से मिले हुए हैं
1: बिल्कुल।
2: और जिस समय ये बनाए गए थे इनका ढाल जो था वो अंदर की तरफ था, पहाड़ की तरफ था
1: जी।
2: कालांतर में लगातार खेती करने से और मौसम की मार की वजह से आज आप देखेंगे कि हमारे जो खेत हैं इनका ढाल बाहर की तरफ हो गया
1: हाँ, जी जी जी।
2: तो ये और इसको हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों। आपने ये भी सुना होगा कि अक्सर एक कहावत कही जाती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम
1: नहीं आती है जी।
2: लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी चीज हमको और जोड़नी पड़ेगी कि पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम नहीं है, और जब पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आएगा तो पानी अपने साथ साथ अकेला नहीं जाएगा, वो मिट्टी को साथ लेके, यानी पहाड़ की मिट्टी भी हमारे पहाड़ के काम
1: उसको
2: आज की तारीख में नहीं आ रही। तो इसको बचाने की हमको जरूरत है।
1: तो इसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं।
2: देखिए मैं आपको थोड़ा सा परंपराओं से जोड़ने की कोशिश करूं। अगर आप बुजुर्गों से बात करें तो हमको ये मिलता है, जानकारी मिलती है कि पहले लोग ढाल अंतर की तरफ था ही, उसके बावजूद भी जब मिला के जो सतनाजा 12 अनाजा का हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से मिलवा खेती करते थे और बाहरी किनारे पे दाल की फसल की 3 लाइनें जरूर डालते थे,
1: चाहे वो भट, उसका क्या कारण,
2: चाहे भट हो चाहे गह, तो ये जरूर डालते थे
1: जी।
2: इसका कारण क्या होता था कि ये जो दलहनी फसलें हैं इनकी जड़ों के अंदर मिट्टी को बांधने की क्षमता

0: अन्य फसलों की तुलना में ज्यादा होती है। दूसरी चीज, ये जमीन से चिपकी हुई होती हैं, इनकी पत्तियां इनकी ब्रांचेस जमीन से चिपकी हुई होती हैं। तो जब बरसात का पानी आता है तो ये क्या करती हैं, ये एक छन्ने का काम करती हैं, मिट्टी को रोक लेती हैं और पानी को जाने, इसलिए ये हमारी परंपरागत तरीका था ये। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज का किसान
1: जी
0: इसको धीरे धीरे छोड़ चुका, तो हमको उसको वापस आज अपने किसान भाइयों से ये आग्रह करना कि ये वापस अपनी जो कुछ परंपरागत चीजें अच्छी चीजें थी, परंपराएं खराब नहीं है, परंपराएं एक दिन में नहीं बनती हैं, तो वो जो अच्छी चीजें हैं हमारी उस परंपरा की उसको लेके आए, उसको दोबारा अंगीकार करें।
1: तो सर जैसे मृदा क्षरण हो गया हमारे खेतों में, तो हम कैसे इसमें खेती कर सकते हैं, अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं?
0: देखिए मृदा क्षरण का एक अनुमान बताऊं, जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें हम ये कहते हैं कि 14 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अगर मिट्टी कट रही है तो वहां तक तो ठीक है
1: जी,
0: वहां तक की मिट्टी हर साल फिर वापस रीजेनरेटिव प्रोसेस है, इसकी जो मिनरलाइजेशन होता है उसमें ये मिट्टी बन जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, हमारे प्रदेश में जो मिट्टी का कटाव है वो औसत पर्वतीय क्षेत्रों से 70 टन प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर है, यानी जो परमिसिबल लिमिट है हमारी उससे लगभग 5 गुना। तो ये जो इतनी अधिक मिट्टी कट रही है, इसका कारण मैंने जो आपको बताया कि एक तो जो ढाल था वो अंदर की तरफ था, वो बाहर की तरफ हो, तो इसको रोकने के लिए हमको कुछ तो, जैसे ढाल बाहर की तरफ हो गया, हम खेत एक दिन में नहीं सुधार सकते कि हम, या कि हम उधर से मिट्टी काट के यहाँ ले आए, ये मैदानी क्षेत्र में संभव है, पर्वतीय क्षेत्र में संभव नहीं है कि हम लेवलिंग का काम कर रहे, तो हमको क्या करना होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बिगड़ी
1: जी,
0: ये जो टेरेसेज इनवर्ड से आउटवर्ड हुई हैं, अंदर की तरफ जो ढाल था उससे बाहर ढाल की तरफ जो हुई हैं वो एक दिन में नहीं हुई हैं
1: जी,
0: तो उसी तरीके से धीरे धीरे अगर हम प्रयास करेंगे तो हम इसको सुधार पाएंगे। तो उस प्रयास में पहला काम तो ये करना होगा कि ढाल के विपरीत जुताई, सामान्य तौर पर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि खेत की लंबाई जिधर होती है हम उस तरफ को हल चला, अब हल भी नहीं रहे, पावर टिलर। अब पावर टिलर में भी बड़ी विडंबना है, आज अभी मैं इसी खेत बचाव अभियान के तहत एक गांव से अभी आ रहा हूँ, तो वहाँ बात हो रही थी, तो हमारे किसान भाइयों ने कहा कि हम तो, मैंने पूछा भाई पावर टिलर का कौन सा अटैचमेंट आप चलाते हो, तो कह रहे कि हम तो रोटावेटर चलाते हैं
1: जी,
0: जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हमको जो हमारा देसी हल था, देसी हल क्या करता था, केवल खेत को खोलता था, मिट्टी को भुरभुरा नहीं बनाता था
1: जी,
0: खेत को खोल के, और वो खोलता था तो एक पतली पतली नालियां बनती थी,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: और वो नालियां पानी को रोकती थी। तो अगर हम ढाल के विपरीत जुताई करेंगे, पावर टिलर भी अगर चला रहे हैं, बैल से करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, पावर टिलर भी चला रहे हैं तो पावर टिलर में जो कल्टीवेटर वाला अटैचमेंट है वो लगा के चलाएंगे और ढाल के विपरीत चलाएंगे। ढाल अगर उत्तर दक्षिण का है तो हमारा पावर टिलर पूरा पश्चिम,
1: पूरा पश्चिम,
0: तो क्या होगा कि ढाल के विपरीत एक नाली बनेगी खेत
1: जी,
0: में
1: जी।
0: जब बरसात का पानी आएगा तो वो उस नाली में रुके, तो धीरे तो नाली में रुकेगा तो क्या होगा, उसकी गति कम पड़ेगी, और जब गति कम होगी तो मिट्टी का कटाव। तो पहला काम तो ये करना है कि हमको ढाल के विपरीत जुताई। दूसरा काम, हमारी जो फसलें हैं, खरीफ का मौसम चल रहा है,
1: इस
0: समय बुआई का समय भी है, मड़ुआ, झंगोरा, रामदाना, रेस जिसको राइस बीन है, धान, और दलहनी फसलों में राइस बीन हो गई, आपके गहत हो गई, भट हो गई, सोयाबीन हो गई, ये हमारी मुख्य फसलें हैं
1: जी,
0: कुछ क्षेत्रों में रामदाना भी है। अब इसमें मड़ुआ, झंगोरा, धान
1: जी
0: और रामदाना, ये जो फसलें हैं इनको हम कहते हैं कि ये मिट्टी के कटाव को सपोर्ट करती हैं, यानी इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स है
1: जी।
0: जबकि जो हमारी दलहनी फसलें हैं, आपका भट, गहत, राइस, लोबिया, जो इस तरीके की जो दलहनी फसलें हैं वो मृदा अपरदन को रोकने का काम करती हैं। तो ऐसे ढालदार खेतों में हमको पट्टीदार खेती करनी चाहिए, खेत की चौड़ाई के अनुसार आप उसको 4 भाग में बांट लीजिए, क्योंकि इतनी अधिक चौड़ाई हमारी नहीं है कि हम उसको 6 भाग में बांट
1: जी
0: पहाड़ में
1: जी।
0: तो आप कोशिश करिए कि ढाल के विपरीत 4 भाग में उसकी चौड़ाई को बांटिए, और उसमें पहली पट्टी और तीसरी पट्टी में जो हमारी मड़ुआ, झंगोरा,

0: इस तरीके की फसलें हैं जो मिट्टी के कटाव को सपोर्ट करती हैं, वो लगाइए, और दूसरी और चौथी पट्टी में दलहनी फसल लगाइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो आवश्यकता है वो भी पूरी होगी
1: जी,
0: मिट्टी का कटाव भी रुकेगा, और जो ऊपर की तरफ ऊंचाई है, नीचे आपका खेत उसका जो स्लोप बिगड़ गया है, जो ढाल बिगड़ा है
1: जी जी,
0: वो भी आपका कुछ हद तक सुधरेगा, क्योंकि वहां आपने इरोजन परमिटिंग क्रॉप लगाई है, तो वहां से मिट्टी कटेगी और यहाँ आके रुकेगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अगर हम करेंगे तो हम कुछ समय लगेगा लेकिन हम इसको कर सकते हैं, और साथ में किनारे पे दाल वो आवश्यक।
1: तो सर इसके अलावा और जो हमारे कृषक है और क्या कार्य कर सकते हैं मृदा क्षरण को रोकने के लिए?
0: मृदा क्षरण को रोकने के लिए जो हमारी गोबर की खाद है, सड़ी हुई, आज की तारीख में वैसे गोवंश की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी अगर संभव है, गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद है, जहाँ जो उपलब्ध है, जो जैविक खाद है हमारी जो उपलब्ध है, उसको हम सड़ी हुई स्थिति में डालें। अन्य अगर आप सड़ा हुआ नहीं डालेंगे तो कुरमुला और दीमक इसका प्रकोप होगा, तो लाभ के बजाय आपको वो नुकसान का काम करेगा। सड़ी हुई अगर गोबर की खाद होगी, जीवांश की मात्रा अगर फसल जमीन में बढ़ेगी तो भी मिट्टी का कटाव कम होगा।
1: तो सर आपने कुरमुला कहा
0: जी,
1: कुरमुला भी हमारी जमीन में कुकटान के काम करता है, तो कुरमुला नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: देखिए कुरमुला को हम क्या कहते हैं, गुबरेला,
1: गुबरेला
0: हिंदी में उसको गुबरेला कहते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है कि वो गोबर उसको प्रिय है
1: जी,
0: कच्चा गोबर वो खाता है, और 200 से 300 अंडे वो एक सीजन में देता है। बकेन का पेड़ हमारे यहाँ होता है पहाड़ में, बलेन बदेन लोकल भाषा में कहते हैं, बदेन कहते हैं
1: जी,
0: बदेन का पेड़ मिलेगा, और बदेन के पेड़ के नीचे बरसात के मौसम में जब उसका बीज गिरता है
1: जी,
0: तो आप देखेंगे काले रंग का मोटा मोटा भौरा वहाँ आपको दिखेगा।
1: अच्छा,
0: वो है गुबरेले का एडल्ट, उसको इकट्ठा करिए अगर, और उसको मार डीजल है उसमें डाल दीजिए, कोई इंसेक्टिसाइड है उसके घोल में डाल दीजिए, या कुछ हद तक ये भी कहा जाता है कि अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री है, मुर्गियां हैं, मुर्गियां भी उसको खा जाती हैं। तो जो भी स्थिति हो उसको अगर हमने वहां नियंत्रित कर ली, तो खेत में लार्वा की जो, क्योंकि जो काटने वाली स्टेज है, जो नुकसान करने वाली स्टेज है, वो उसकी सूंड़ी है। एडल्ट का काम है अंडे देना
1: जी,
0: वो खेत में अंडे दिया और उसके बाद वो बहुत नीचे अंडे देता है। कुरमुला और दीमक में इतना ही अंतर है कि दीमक, कुरमुला का जो सूंड़ी होती है वो नीचे होती है
1: जी। तो सर आपने हमें खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा क्षरण रोकने के कृषकों के उपाय के संबंध में इतनी अच्छी जानकारी दी, अब चलते चलते आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से?
0: मैं यही कहूँगा कि जो वैज्ञानिक सलाह है उसको पूरी तरीके से भले आप मत मानिए, लेकिन उसको अपने थोड़े हिस्से में करने का प्रयास करिए, और एक साल नहीं कम से कम 2 साल, और अगर आपको सफलता मिलती है तब उसको और अधिक क्षेत्रफल में बढ़ाएंगे, तो सबका भला होगा, आपका भी होगा और समाज का भी होगा और देश का भी भला होगा।
1: तो सर आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोतामल्य आप लोग सुनने लग रहे हो अच्छा मृदा क्षरण रोकन में कृषकों के योगदान ए विषय पर डॉक्टर चंद्रेश्वर तिवारी दगड़ करे हुई प्रमोद पांडे की भेंट वार्ता। कार्यक्रम में अगला आप लोग सुनो यो संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: श्रोताओं, संदेशक बात कार्यक्रम में अगला आप लोगों का सुनो यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। ये भेंटवार्ता में आप लोग सुनला खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत जैविक खेती के लाभ विषय पर ग्राम धनौड़ा पिथौरगढ़

0: उन्नतशील काश्तकार केशव दत्त मखोल यादगर करी हुई अपन दगड़ी श्याम भट्ट यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत जैविक खाद के लाभ विषय पर। इस विषय में हम चर्चा करेंगे ग्राम धनौड़ा जिला पिथौरागढ़ के रहने वाले उन्नतशील काश्तकार जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी हैं और वह खेती कर रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे जो जैविक खाद के लाभ हैं वह क्या क्या हैं। स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार जी, मैं केशव दत्त मखोलिया पिथौरागढ़ से, ग्राम धनौड़ा पिथौरागढ़ से हूँ।
1: तो मखोलिया जी, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि जो यह जैविक खाद है यह क्या है और कैसे बनाई जाती है।
2: ऐसा है, जैविक खाद एक केचुए के द्वारा भी बनाते हैं और एक हम जो है काव बेस्ड खाद होती है, लिक्विड फर्टिलाइजर कहते हैं जिसको, उसके गोमूत्र गोबर से बनाई जाती है, उसको जैविक खाद कहते हैं। मैं अपने छोटे से बगीचे में, फार्म में यही खाद यूज करता हूं और लगातार मेरी खेती में वृद्धि होती जा रही है। केचुए की खाद सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसमें एक जय गोपाल नाम का एक केचुआ होता है जिसे मैं कृषि विज्ञान केंद्र गैना से लाया और उसको मैंने यहाँ पे प्रोपोगेशन किया। प्रोपोगेशन करने के बाद मैंने उसको वर्मी पिट में डाला और ऊपर से उसको गोबर और ये जो जितना भी गार्बेज होता है ये सारा डाल के मैंने अपने पिट को, वर्मी पिट को मैंने तैयार किया। ये केचुआ ऐसा है जो 45 से 60 दिन के अंदर खाद को तैयार कर देता है
1: जी।
2: और वो खाद इतनी गजब की है और इतना इसका इफेक्टिव है कि आप अन्य खादों को, बिना केचुए की खाद को आप 10 किलो डालेंगे तो ये 2 किलो में ही काम कर जाती है। बस इसको केचुए को लेना है, ऊपर से गोबर या जितना भी गार्बेजेज है आपका, जितना भी काव मैन्यूर है अच्छा, उसको डालना है, उसमें केचुआ डाल देना है। केचुआ अपना काम करता रहेगा और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखना है, इसमें नमी बना के रखना है ताकि उसको मतलब अपना काम करने में, खाद बनाने में आसानी हो सके।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं जो रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग है तो उससे जो हमारी मिट्टी है उसमें उर्वरता, उसके साथ ही पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य पर भी उल्टा प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे में जो ये जैविक खाद है यह एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आई है।
2: ये तो बहुत ही अच्छा विकल्प है और इस खाद को अपनाने से आज मनुष्य जो है रोग मुक्त हो रहा है
1: जी।
2: और जो खेती हो रही है उसका स्वाद ही बदल गया है
1: जी।
2: फलों का स्वाद, सब्जी का स्वाद और खेती की जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी हो चुकी है
1: जी।
2: और उससे हमको एक, खुद तो हम मतलब ऊर्जावान होते ही होते हैं, हम अपने परिवार को, अपने समाज को भी ऊर्जावान बना रहे हैं इसी जैविक खेती करने से। अगर हमने रासायनिक खेती की तो वही रसायन हमारे पेट में जाएगा और एक दुष्परिणाम उसको सारे भुगतने पड़ेंगे, कैंसर हो गया, पीलिया हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, अन्य कई भयंकर बीमारियां जो है इन्हीं केमिकल से हो रही है। इसी कारण से हमने जैविक खाद को खेतों में, इसका धीमा असर है लेकिन दूरगामी इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं।
1: जी बिल्कुल, जैविक खाद जैसे कि हम जानते हैं यह केवल मिट्टी की संरचना या फिर उर्वरता को ही नहीं बेहतर बनाती है बल्कि उसके साथ ही फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने या फिर उसमें उत्पादन की जो लागत है वह कम करने के साथ साथ जो दीर्घकालीन कृषि विकास है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है
2: जी। ये इससे केचुए बढ़ते हैं और हमारा तो ये मानना है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल किया हुआ है यहाँ पे, खुद अपने खेतों में यही जैविक खाद प्रयोग करते हैं
1: जी।
2: और इससे केचुए जो है, जो जमीन की सतह जो मर गए हैं, जो कुछ बचे हुए हैं कुछ जमीन की सतह के नीचे है वो भी ऊपर आ जाते हैं इसी खाद की सूंघ के, देख के और इसकी खुशबू को लेके, और मिट्टी के ऊपर पूरे केचुए केचुए हो जाते हैं। इसी जो फर्टिलाइजर हम यूज कर, लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे जीवामृत है और दसपर्णी अर्क है, इन सब को हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और खेत में छिड़कते हैं, तो इससे जो है हमारे केचुओं की संख्या बढ़ रही है और ये मिट्टी को और भी भुरभुरा और उर्वरक।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई मखोलिया जी। जैसे कि हम जानते हैं आपका जो कार्य है वह इसमें व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा चल रहा है और आप जो ये जैविक खाद है इसका उपयोग करके बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, और हम कह भी सकते हैं कि जो जैविक खाद है यह न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य या पर्यावरण संरक्षण के लिए लाभकारी है बल्कि वह कहीं ना कहीं किसानों की आय और जो खेती की स्थिरता है उसको बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती
2: जी।
1: तो केशव चंद्र मखौलिया जी, आपने हमसे बात की और जो ये जैविक खाद है इसके लाभ हमको बताए खेती बचाओ अभियान के माध्यम से, जो जैविक

0: खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर हम अपनी कृषि भूमि को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और उपजाऊ बना सकते। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोतामल्य अपलोक सुनील अग्रोचा खेत बचाओ अभियानक अंतर्गत जैविक खेती के लाभ विषय पर ग्राम धनौड़ा जिल पिथौरगढ़ उन्नतशील काश्तकार केशव दत्त मखोलिया दगर करी हुई क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, किसानवाणी कार्यक्रम में आप जने जने आप लोगों का सुनो नंदलाल आर्या गायो कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, नंदलाल आर्य गाई एक कुमाऊनी लोकगीत दगड़ हमार आजक किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न हो। हमारे कार्यक्रम प्रायोजक छे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और प्रस्तुतकर्ता संजय जोशी। एंड अपने दगड़ी श्याम भट्ट के कार्यक्रम संपन्न करने

अभी किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे हमारे किसान भाई। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार दगड़े मी कुसुम पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोगक माध्यमल अलग अलग विभागों में चयनित 221 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटी। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरूनक मात्र 39 दिनों में रिकॉर्ड 36,776 परमिट जारी करी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानक 10 साल पूर्व पर पौड़ी जिल में विशेष स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। 492 गर्भवती श्रेणियों स्वास्थ्य जांच ले करी गई। और नैनीतालक नगर पालिका परिषद बढ़ती प्लास्टिक कचरे की समस्या बटी निपटने के लिए नई पहल ले शुरू करी। कचरा जमा करने वालों के QR कोडक माध्यमल ऑनलाइन भुगतान करी जा। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोगक माध्यमल शहरी विकास कौशल विकास सेवा योजन विभाग और पशुपालन विभाग में अलग अलग पदों पर चयनित 221 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र ले बांटी। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के शुभकामना देते हुए कहा कि प्रदेश में बीती 4.5 सालों में सरकार 33,000 हबेर सकर युवाओं के सरकारी सेवाओं बटी जोड़ने काम कर रहो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश में सभी हबी सख्त कठोर नकल विरोधी कानून लागू कर रहा। मुख्यमंत्री को कि अगले राज्य सरकार यही रफ्तारल पारदर्शिता और निष्पक्षता दगड़े युवाओं के लगातार रोजगारक अवसर दीते रोल। उन्होंने को कि विभागों के स्पष्ट निर्देश दी रही कि खाली पदों के तुरंत भरी जाओ।
1: ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हो रही हैं। बीते 4.5 वर्षों में सरकार ने 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम किया। हमारी सरकार आगे भी इसी प्रकार इसी पारदर्शिता के साथ और इसी निष्पक्षता के साथ युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर देती रहेगी। हमने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभागों में खाली पद हैं उनको तुरंत भरा जाए।
0: पिथौरागढ़ जिल में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी करी जा नई इनर लाइट परमिटक संख्या पिछल सालों के सभी रिकॉर्ड पिछाड़ हैली। पिछल साल पूरी यात्रा सत्र के दौरान 36,526 इनर लाइन परमिट जारी करी गई थी, जबकि यो साल यात्रा शुरू होने मात्र 39 दिनों के अंदर ही 36,776 परमिट जारी कर ली। जिलाधिकारी आशीष भटगाइन को की यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं में लगातार बढ़ रही यो उत्साह यो साल नई कीर्तिमान स्थापित करना। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गो पर बेहतर सड़क संपर्क यात्री सुविधाओं का विस्तार और आवासीय व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार सकारात्मक परिणाम सामने आने। उन्होंने कहा कि यात्रा में बढ़ती सहभागिता का सिद्ध लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था के मिलनो। गैल किनारा क्षेत्रक आर्थिकी मजबूत हुनक दगड़े ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका नई अवसर ले सज्जित होने।
2: ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल आदि कैलाश के जो दर्शन किए थे पूरे सीजन में वो 36,600 के करीब श्रद्धालु वहां पर गए थे, और इस बार केवल अभी 39 डेज में ही हमारे 36,700 यानी पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट गया है। तो इतने श्रद्धालुओं ने ऑलरेडी दर्शन कर लिया है और

0: जिला प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इस बार बेटर रोड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। थोड़ा रोड का जो चौड़ीकरण है वो और बेटर हुआ है, और साथ ही साथ जो वहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है उनका भी लगातार उसमें डेवलपमेंट चल रहा है, और अच्छे होम स्टे भी अब वहाँ पर आ रहे हैं। तो इसीलिए श्रद्धालुओं का लगातार जो है इनफ्लो वहाँ के लिए बढ़ हो रहा है, और लोकल जो वहाँ की आर्थिकी है उसका भी इसके माध्यम से उन्नयन।
1: प्रदेशमा बेईबटी शुरू हई विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानक तहत आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीपीआरसी पुरुषोत्तमल सचिवालय मा मुख्य सचिव आनंद वर्धन के गणना फॉर्म सौंपी। यह अभियान 7 जुलाई ताले चलल। वे उत्तरकाशी जिला सीमांत क्षेत्र बरी गांव मा बूथ लेवल अधिकारियों घर घर जबेर ग्रामीणों के गणना प्रपत्र वितरित ले करी। ग्रामीण चुनाव आयुक्त यह जमीनी पहलक स्वागत करो। मतदाता सूची के साफ और रहित बनान और जागरूकता अभियान के खास बनानक लीजी बरी गांव ग्रामीणों एक अनोखा तरीका अपना। ग्रामीणों अपने समृद्ध पारंपरिक और स्थानीय सांस्कृतिक प्रदर्शन करो और तांती और हारू नृत्यक प्रस्तुति दी। कुस्त पारंपरिक संगीत और अतिरिक्त कदमोक दगड़ बीच ग्रामीणों न सिर्फ चुनाव आयोग के धन्यवाद करो बल्कि पूर्व क्षेत्र माँ SIR और मतदाता जागरूकता संदेश ले दी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्याल जिलक नागरिकों ने अपील करी कि उस 7 जुलाई ताले चलन वाले कार्यक्रम में भी लोग सहयोग ले करूं और समय पर अपुपत्र के जमा ले कराऊं।
2: मौनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानक 10 साल पूर्व होने पर आज पौड़ी जिल मा स्वास्थ्य विभागन सभी चिकित्सालयों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों मा विशेष स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों आयोजन करो। यह शिविरों मा 492 गर्भवती श्रेणियों स्वास्थ्य जांच करी गये। दगड़े ही उनके जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, प्रसव अभेर पहली तैयारी और संतुलित पोषणक संबंध में जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव मोहन सुखलाल बता कि बीती 10 सालों में यह अभियानक माध्यमल उच्च जोखिम वाल गर्भावस्थाओं बखत रहते पहचान व उपचार, निशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधाओं का विस्तार, संस्थागत प्रसव के बढ़ावा और रेफरल सुविधाओं के मजबूत करण में उल्लेखनीय सफलता मिली छो। उन्होंने कहा कि मातृ और नवजात मृत्यु दर में कमी लाण तथा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करण में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभानो। उन्होंने सभी गर्भवती श्रेणियों ने नियमित प्रसव पूर्व जांच कराण और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने की अपील ले करी। नैनीताल नगर पालिका परिषद बढ़ती प्लास्टिक कचरे की समस्या बटी निपटने के लिए नई पहल शुरू कर है। योजना तहत खाली पानी की बोतलें, शीतल पेय केन और चिप्सक रैपर जमा करण पर प्रति इकाई 2 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाए। यह लीजिए माल रोड और तल्लीताल डांट क्षेत्र में द्वि कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित करी जरी, जहाँ हर रोज रत्ती 9 बजे बटी ब्याव 5 बजे ताले प्लास्टिक कचरा जमा कराई जा सकल। नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी रोहिता सरमाल बता कि कचरा जमा करण वाल मनखियों के QR कोडक माध्यमल तत्काल ऑनलाइन भुगतान करी जाल। उन्होंने कहा कि पर्यटन सत्र दौरान सार्वजनिक जागों, नालों और नैनी झीलक आसपास ठुल मात्रा में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा है, जहां जो वर्षा दौरान झील में पहुंच भी प्रदूषण के बढ़ा। योजना का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों के एकल उपयोग वाल प्लास्टिक कचरे उचित निस्तारण लीजिए प्रोत्साहित करण और शहर के साफ बनाए रखण छो। उन्होंने बताया कि पालिका टीमें घर घर जबेर ले लोगों के प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जागरूक करनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणक बागेश्वर ओर बटी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियानक तहत ब्लॉक सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रमक आयोजन करी गो। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं दौरान बचाव, यातायात नियमों, निशुल्क कानूनी सहायता और नशील होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। प्राधिकरणक सचिव अनिता कुमारील बता की 1 हफ्ते ताले चलने वाले अभियानक उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं रोकथाम, यातायात नियमों का पालन और दुर्घटना पीड़ितों के बखत पर सहायता उपलब्ध कराना प्रति आमजन के जागरूक करण छू।
3: इस अभियान को चलाए जाने का उद्देश्य यही है कि हम प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों से रूबरू करा सके और उनको ये बता सके कि

0: वो सड़क सुरक्षा उनकी जीवन रक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण। हमारे जितने भी अधिकार मित्र हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है SDRF की टीम के द्वारा कि अगर किसी भी व्यक्ति का कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो त्वरित उनको कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, कैसे भी उनको निकटतम जो भी अस्पताल वगैरह है वहां तक पहुंचाया जा सके। और जो राहगीर योजना है उसके तहत लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमारे अधिकार मित्र जागरूक कर पाए ताकि लोग डरे ना कि किसी की हेल्प करने से उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही होगी या कोई अड़चन आएगी।
1: चारधाम यात्रा और अर्णवल कांवर यात्रा के देखते हुए हरिद्वार में सीवरेज कामों कारण खोदी गई सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण काम युद्ध स्तर पर करी जानो। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के बाद संबंधित विभाग और ठेकेदार दिन रात काम के कर नहीं। जेल की यात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों के आवागमन में कोले प्रकारक परेशानी नहीं हो। जिलाधिकारी निर्देश दे रही कि कांवड़ मेल हबीर पहली सीवरेज कारण प्रभावित सभी सड़कों की मरम्मत हर हाल में पूरी कर जाओ ताकि श्रद्धालुओं और आम जनता के बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध है सको। आखिर में मुख्य समाचार आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोगक माध्यमल अलग अलग विभागों में चयनित 221 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटी। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू होने मात्र 39 दिनों में रिकॉर्ड 36,776 परमिट जारी करी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानक 10 साल पूर्व होने पर पौड़ी जिले में विशेष स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता अभियानों का आयोजन। 492 गर्भवती श्रेणियों को स्वास्थ्य जाँच ले करेगी। और नैनीताल नगर पालिका परिषद दल बढ़ती प्लास्टिक कचरे की समस्या बटी निपटने के लिए नई पहल शुरू करी। कचरा जमा करने वालों के QR कोडक माध्यमल ऑनलाइन भुगतान करी जाए। यो के दगड़े ही कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों के अंक समाप्त हो। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं रेशमा के गाए हीरो फिल्म के गीत के साथ। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6-year bags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
5: फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पति पत्नी और तब है फिल्म का गीत। गीत को आवाज़ दे रहे हैं सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
1: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
2: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to rupees 3,75,000. Offer valid till 30th June.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 8,999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
0: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
6: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं विरुद्ध फिल्म का गीत आबिदा परवीन की आवाज में। गीत लिखा है कबीर ने और इस गीत की धुन बनाई है भवदीप जयपुर वाले ने।

आबिदा परवीन का गाया विरुद्ध फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 14.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बजे है जो पेश है मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सबरस प्रोग्राम में आइए आपको सुनवाते हैं लक्की अली का गाया ये गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: सबरस प्रोग्राम में आइए हम आपको सुनवाते हैं हस्ती का कलाम। फनकार हैं जगजीत सिंह।

0: गुलाम अली की गाई इसी गज़ल के साथ आज का सबरस प्रोग्राम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताज़ा अपडेट और हर मैदान की पूरी खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। भारत ए ने एक दिवसीय क्रिकेट त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू हुआ और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं खेल के मैदान की खबरों के साथ, जहां श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में आज भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। सुनते हैं इस मैच पर हमारी ये रिपोर्ट।
1: भारत ए टीम ने श्रीलंका ए पर जीत के साथ त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत की है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 114 गेंद पर 101 रन की पारी खेली। कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका को निरोशन डिकवेला और अविष्का फर्नांडो ने एक मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए दोनों ने 93 रन जोड़े। अविष्का 45 रन और निरोशन 99 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मेजबान टीम का विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। कप्तान अरागिचे ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, उन्होंने 74 रन की पारी खेली। कप्तान का विकेट गिरते ही श्रीलंकाई टीम 269 रन पर सिमट गई। आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, अर्शद खान और विपराज निगम ने दो दो विकेट लिए। ऋतुराज गायकवाड़ को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जहां एक तरफ युवा खिलाड़ियों ने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की, और आज कार्यक्रम में बात होगी ऐसे एक और युवा खिलाड़ी मानव सुथार की, जिन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू करते हुए एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया और 7 विकेट लेकर ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बने बल्कि कई रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त किया। सुनिए 23 वर्षीय युवा मानव सुथार पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: A wicket in the first over. You can't ask for anything better. Four ball is all he needs.
3: अपने इंटरनेशनल करियर के पहले ही ओवर में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज अब्दुल मलिक का विकेट लेकर भारत के इस डेब्यूटेंट मानव सुथार ने अपने मैच को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस विकेट के बाद मानव ने मानव विकेट की झड़ी ही लगा दी और मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की पहली पारी में 22 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट झटके। सुथार की फिरकी के आगे अफगानिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम अपनी पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई और भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन दिया। मेहमान टीम की दूसरी पारी में भी सुथार ने एक विकेट झटका। मानव सुथार पिछले 35 सालों में भारत के लिए डेब्यू टेस्ट की एक पारी में 6 विकेट हॉल लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले ये कारनामा पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने किया था।
4: फर्स्ट ऑफ मेनी मानव सुथार 6 for 33 इन 22 ओवर्स, सेकंड बेस्ट फिगर्स बाय एन इंडियन ऑन डेब्यू।
3: मानव सुथार डेब्यू टेस्ट में भारत के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर मानव सुथार ने स्वीकार किया कि टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने पर मानव ने कहा कि ये उनके लिए बेहद खास एहसास था। मानव की गेंदबाजी परफॉर्मेंस पर भारतीय स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
5: वेरी वेल बोल्ड मानव,

0: think fabulous effort. On debut, picking up 5 wickets is always something special. It's very well done. I think the effort you put in with all your hard work and practice.
1: सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, मानव ने बल्लेबाजी में बखूबी हाथ आजमाया और अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 41 गेंद का सामना करते हुए 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। मानव सुथार ने इस मैच से मिली सीख के बारे में कहा कि सबसे बड़ा सबक ये है कि निरंतरता ही सब कुछ है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो मानव ने भी माना कि टेस्ट मैच की निरंतरता ही सब कुछ है और निरंतरता से इतर इस तरफ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू हो चुका है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 24 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई कर रही हैं। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों ने आज खेले गए मुकाबलों में बाजी मारी और किन अहम खिलाड़ियों पर कल नजर रहेगी।
3: आज खेले गए मुकाबलों की बात की जाए तो पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्सकरुनन की जोड़ी ने पहले दौर में जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि अच्युता दित्व राव और अर्जुन रेड्डी पोषणा की जोड़ी को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबलों में सनीथ दयानंद ने पहले स्थानीय खिलाड़ी कारोनो को 21-17, 21-15 से आसानी से हराया और फिर मलेशिया के मिंग होंग लिम को 21-9, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में जगह पक्की की। वहीं मनराज सिंह मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने में असफल रहे। प्रतियोगिता में सिंगल्स वर्ग के मुख्य मुकाबले कल से शुरू होंगे, जिसमें भारत को अपने स्टार खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु, युवा मालविका बंसोड, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, ईशरानी बरुआ, आकर्षी कश्यप और तान्या हिमनाथ के साथ भारत की चुनौती रखेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और एचएस प्रणय, किरण जॉर्ज से भारत को उम्मीदें होंगी। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपला और तनिषा क्रेस्टो को भारत से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी। उनके साथ ही ध्रुव रावत और मनीषा कीर तथा मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी भी भारत की चुनौती रखेगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात हॉकी की, जहां अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीमों को आज खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। श्री मांडविया ने पुरुष टीम को 61,50,000 रुपए और महिला टीम को 21,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि सौंपी।
4: ककामिगहरा में शुक्रवार को खेले गए फाइनल में कप्तान केतन कुशवाहा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से मात देकर खिताब अपने नाम किया। दूसरी तरफ कप्तान स्वीटी कुजूर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में कोरिया पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज की थी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष और महिला दोनों टीमों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि देश का नाम रोशन करने के लिए दोनों टीमों ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। श्री मांडविया ने बताया कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित भारत को एक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इससे पहले स्वदेश पहुंचने पर अंडर 18 पुरुष कप्तान केतन कुशवाहा ने टीम के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की।
5: यही कहना चाहूंगा अपनी टीम को कि अपने कोचेस को थैंक यू, कितना सपोर्ट, इतनी ट्रेनिंग हम लोग को मिली गई है और हम लोग वहाँ से आए जीत कर, तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि इतना एशिया कप जीतना और एक दूसरे को सपोर्ट करना।
4: टीम के कोच और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ने कहा कि इस प्रकार के अवसर भारतीय हॉकी टीम को और मजबूत बनाएंगे।
6: 18 जो ग्रास रूट लेवल पे और उसके बाद सब जूनियर बच्चों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके के कैंप्स अगर कंटिन्यू करेंगे सारी स्पोर्ट्स में, तो मैं कहूँगा कि सभी जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग है तो ऊपर लेवल की जो इंटरनेशनल हॉकी है उसको मैनेज करना इजी है।
4: श्री मांडविया ने पुरुष और महिला टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर आशीष तानीपूर्ति और नौशीन नाज तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आयुष राजक को भी सम्मानित किया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात विश्व योगासन चैंपियनशिप की, जिसका कल गुजरात के अहमदाबाद में समापन हो गया। सुनिए इस आयोजन पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
7: भारतीय खिलाड़ियों ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि

0: भारत को योग की महाशक्ति कहा जाता है। भारतीय खिलाड़ियों ने योगा मैट पर अपने लचीलेपन और शारीरिक दक्षता का ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत किया कि पदकों की कतार सी लग गई। भारत ने 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 114 पदक हासिल किए। जापान 3 स्वर्ण और 3 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पहली बार आयोजित इस विश्व योगासन चैंपियनशिप में कुल 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिना ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत योग के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो सारे एथलीट हैं बहुत ही अच्छी खासी तैयारी करके आए हैं और बहुत सारे मेडल्स उनको भी गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 5-10 साल में ये हमें बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं। बट वैसे अगर योग की लैंग्वेज में बोलूँ तो वसुदेव कुटुंबकम और जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक विश्व गुरु बनकर सामने आ रहा है।
0: विश्व और भारत योगासन के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि योगासन ने बहुराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में अपना शंखनाद कर दिया है और अब ये खेल ओलंपिक और राष्ट्रमंडल जैसे आयोजनों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: आने वाला 2036 के लिए जो हमने बिड की है ओलंपिक में, और 2032 के लिए हमने कॉमनवेल्थ गेम के लिए बिड की है, वो भी गुजरात में होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में पहली बार विश्व पटल पर योगासन ने अपना शंखनाद अहमदाबाद से कर दिया है।
0: इस आयोजन से पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी योगासन को राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।
3: भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासन को भी स्थान दिया जाएगा।
0: तो ये कहा जा सकता है कि योगासन अब खेल मैदान और पार्कों की योग मैट से निकलकर विश्व के खेल पटल पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
4: और अब अंत में बात करते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
5: 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व विजेता बनने के बाद अब हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू है तैयार। इंग्लैंड और वेल्स में अपने पहले T20 विश्व कप खिताब के लिए जोश, जज्बे और अनुभव के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम है तैयार। खत्म करने को 17 साल का इंतजार, तो अब दुनिया देखेगी दम। हर मैदान जीतने को तैयार है हम।
4: और आज बात करते हैं इस कड़ी में उन 5 खिलाड़ियों की, जिसको जिन पर इस टीम की पूरी नजरें रहने वाली हैं।
6: सूची में सबसे पहला नाम आता है भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का, जिनका बल्ला इस विश्व कप में काफी मायने रखेगा। मंधाना अगर टीम को अच्छी शुरुआत देने और बड़ी पारी खेलने में सफल रहती है तो भारत का काम काफी हद तक आसान हो सकता है। और अगर रिकॉर्ड की भी बात की जाए तो मंधाना को इंग्लैंड में खेलना बेहद रास आता है। इंग्लैंड में उन्होंने अब तक खेली 19 पारियों में 139 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मंधाना इंग्लैंड में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुकी है, तो रिकॉर्ड बखूबी बताते हैं कि इस स्टार बल्लेबाज के लिए इंग्लैंड की स्थितियां कितनी बेहतर होती है। रिकॉर्ड्स की बात हो और हरमनप्रीत कौर का नाम ना आए ये संभव नहीं है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची में भारतीय मेडल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर भी हैं। हरमनप्रीत का ये आखिरी विश्व कप भी माना जा रहा है, ऐसे में वे अपने प्रदर्शन से छाप जरूर छोड़ना चाहेंगी। हरमनप्रीत ने इंग्लैंड में खेली 24 पारियों में अब तक 526 रन बनाए हैं। वहीं अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखने वाली शेफाली वर्मा इस T20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं। शेफाली को इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने में आनंद आता है, जिसकी कहानी खुद उनके रिकॉर्ड्स बयां करते हैं। उन्होंने यहां पर खेले 19 मुकाबलों में 139 के स्ट्राइक रेट से 431 रन बनाए हैं। सूची में चौथा नाम दीप्ति शर्मा का है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा लंबे समय से अहम रोल अदा कर रही है। टीम को दीप्ति से एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद होगी। अगर मुख्य रूप से गेंदबाजी की बात की जाए तो रेणुका सिंह टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं। स्टार तेज गेंदबाज का क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड की धरती पर दमदार प्रदर्शन रहा है। इंग्लैंड में रेणुका ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 12 विकेट चटकाए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस दौरान उनका इकोनॉमी सिर्फ 6.12 का रहा है, यानी किफायती के साथ साथ विकेट निकाल कर देने वाली खिलाड़ी। तो इन मजबूत खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस विश्व कप में भारत के लिए बड़ा रोल निभाते हुए हुए नजर आएंगी और इंग्लैंड की धरती पर युवा और अनुभव

0: खिलाड़ियों का तालमेल लेकर उतर रही है, टीम की खिताब जीतने की उम्मीदों को और मजबूत करेगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो अब समय हो रहा है श्रोताओं आपसे अनुमति लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमारे ईमेल sportscan@air.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
3: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
4: The amount of time we have spent
5: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की।

उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और

0: सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूं।
1: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की।

आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दिल फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

बाजीगर फिल्म के किसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 9:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी गजलों का प्रोग्राम महफिल।

0: दिन में ही मिले रोज हम, देखे ना कोई और, सूरज पे जुल्फें डाल के फिर रात कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। चंदनदास की गाई ये गजल अभी आपने सुनी।
1: देख सकती हैं वो सपना, आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आइए शामिल करते हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है गोलना करड़िया अल्मोड़ा से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रेनू बोरा, दीपा मीर, मीनाक्षी बोरा और हिमानी। आप सभी सुनना चाहते हैं हसरत जयपुरी का कलाम। फनकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। जुबां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं, जुबां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं, अदाएं लाख बीरो को अदाएं बात करती हैं। नज़र नीची किए दांतों में उंगली को दबाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद

0: तुम्हारे घर में जब आऊं तो छुप जाती हो पर्दे में, मुझे जब देख ना पाओ तो घबराती हो पर्दे में, खुद ही चिलमन उठाकर फिर इशारों से बुलाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी। आइए शामिल करें अगली फरमाइश, उससे पहले ये महत्वपूर्ण संदेश।
1: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आइए शामिल करते हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है भनार अल्मोड़ा से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मीरा जोशी और मयंक जोशी। आप सुनना चाहते हैं नीरा फाजली का कलाम। फनकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

0: बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी। शामिल करें अगली फरमाइश, उससे पहले ये महत्वपूर्ण संदेश।
1: देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों

0: के सिर पर 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आइए आज की महफिल की आखिरी पेशकश के रूप में शामिल करने जा रहे हैं अंतिम फरमाइश जो हमें भेजी है ग्राम सरसों अल्मोड़ा से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं राजेंद्र बिष्ट, दीपा बिष्ट और नीलम बिष्ट। आप सभी सुनना चाहते हैं सागर सिद्दीकी का कलाम, फनकार हैं गुलाम अली। हर शनावर भंवर में डूबा था, हर शनावर भंवर में डूबा था, जो सितारा मिला उदास मिला, दिल मिलाया और गम सनास मिला। गुलाम अली।

मैं कदे के सिवा हमारा पता उनकी जुल्फों के आसपास मिला, दिल मिलाया और गम सनास मिला। होला मली की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी। इसी के साथ आज का फरमाइशी फिल्म गज़लों का ये प्रोग्राम महफिल अब यहीं पर संपन्न होता है। अगले मंगलवार को रात्रि 9:30 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र भास्कर साह को दीजिए इजाज़त। शुभरात्रि, शब्बा खैर।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गजलों का प्रोग्राम महफिल FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिम्नेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहां स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है।
0: भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौड़ से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गांव में कितनी खुशी थी?
2: मतलब छोटी थी जब, उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले, और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। फिर टूर्नामेंट हुआ था, ओपन टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, तो दो टीमें आई हुई थी, नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था तो ऐसे घूम रही थी। तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं ये। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
0: गाँव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुँचना, ये सफर आपका कैसा रहा, और आपके घर परिवार और गाँव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहाँ चयन हो गया?
2: जब मैं गांव गई थी ना तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बंगाल के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों बोल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो विनिंग टीम, एक तो मैच जीत के हम लोग आए और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ, तो जब पता चला गुआरा में सबको, तो सब उसी

0: के लिए सब रेडी थे फिर कब मैं आऊँ कब मुझसे सब लोग मिले लाइक प्राउड था कि हाँ कुछ तो सबको खुशी थी ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी मेरी फैमिली चीज में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे जैसे मैं उधर पहुंची फिर सबके माहौल देखा सब सबने टीका माला सब करा मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए तो जो मैंने आज उनको करके दिया तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
1: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: जब सीनियर T20 मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम में मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो अचानक से एक दीदी उनका फोन आता है भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा मेरे पास लिस्ट नहीं आई फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी मैंने कहा अब घर जा रही हूँ।

0: फील्ड कर रही थी उस टाइम।
1: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: जब सीनियर T20 मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गुवाहाटी में ही थी उस टाइम में, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी उनका फोन आता है, भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा मेरे पास लिस्ट नहीं आई, फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी। जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया सबको पता चल गया गुवाहाटी ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है। फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति के सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे हैं बहुत सारे लोग आए घर, और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग सबको पता चल गया था। क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहाँ पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने 4 विकेट लिए बड़े प्लेयर्स से चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
1: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
0: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी। पहले तो ऑरेंज प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में। तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे। तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ, अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं तो मेरे को ना वो सेट सा लग के रन पड़ गए, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक, तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर प्लेयर कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम भी है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
1: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति गौर के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई?
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की, उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था। तो हम 3-4 लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया। और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ मेरी स्टूडेंट खेल रही है, और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है।
1: अच्छा,
2: दो बच्चे बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं, और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग, उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है रिया यादव।
1: युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: एक तो क्या है मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है, तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले
1: जी।
2: तो एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है, क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई तो अभी लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है,
1: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी, पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
2: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साइंस स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट, उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गाँव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए, तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर।
1: उस समय आपको लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
2: हाँ देखिए, उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, टेक्निकली वो तैयार नहीं थी, और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको, हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे
1: जी।

0: आपने सहयोग
1: उससे,
0: किया।
1: हाँ तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। फिर उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
0: जी हाँ
1: तो करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही। ऐसे बड़ा मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है।
0: जी, उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
1: संघर्ष के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में ड्रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट। तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक, जो बॉलर के स्पाइक होते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो हाँ तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। मतलब ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
0: जी, क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
1: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड, दो चीजें उसकी बहुत अलग है। हट के देखेंगी तो आपको अलग ही उसकी उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की उसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है
0: मतलब
1: बॉल में।
0: एक पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति,
1: हाँ नहीं, जुनून तो है ही।
0: तभी इतना आगे
1: बाकी
0: पहुंची है।
1: जी,
0: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: देखिए हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियाँ हैं, करीब 40-45 लड़कियाँ रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं। और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता, और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
0: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
1: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
0: क्रांति गौड़ जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
1: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30 से 11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए।
0: जी
1: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था। और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में। थोड़ी
0: कितना कम
1: परेशान थी,
0: समय मिला।
1: हाँ
0: जी
1: थोड़ी परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे। अभी
0: जी
1: भी वर्ल्ड कप में जैसे उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था कि सर
0: अच्छा,
1: बधाई हो।
0: वह युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वैसे एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं, फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हीलचेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही टीवी पर मैच देखकर वे शैडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
2: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और

0: रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
1: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे।
0: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
1: जी,
0: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
1: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
0: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था, और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूरिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
1: जी
0: सोमजीत सिंह, उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभाग।
1: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
0: बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पर ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पर उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेला।
1: जैसे हमारे सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
0: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज भी है।
1: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं? ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
0: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
1: जी,
0: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन, और उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहले ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
1: बहुत अच्छी बात है, तो कि जो उस तरह के खिलाड़ी
0: जो मैच था वो अपने झांसी में ही हुआ।
1: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
0: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, क्योंकि सरकार इसमें मदद कर रही है कहीं ना कहीं, खेल को प्रोत्साहन दे रही है, जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और शोहरत भी।
1: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था।
0: जी जी,
1: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
0: और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको
1: जी,
0: कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे प्लेयर रहे वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में, उन्होंने 19 बॉल में।
1: जी, बहुत बड़ी बात, और वाकई में ये जो मैच है देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूँ मैं उपस्थित था ग्राउंड पे
1: जी,
0: लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ तो न्यूज रिपोर्टर्स से लेके लोकल पब्लिक से लेके पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको प्रभाग था कि वो लोग आए और खेल रहे थे,
1: तो
0: देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको
1: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग है और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ सभी को शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्र

0: क्षमता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं और इस विषय में हमने बातचीत करी।
1: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यान चंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेरी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
2: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
1: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
2: अच्छा, बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
1: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे सिखाए हुए बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें कि हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी लगभग 16 वर्ष और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अपनी भैया स्विमिंग का जोर दिखा रही है।
2: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
1: बहुत। आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे ये
2: पानी से दूर रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यान से स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा उसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ज्ञानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
2: अच्छा, प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए, तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
2: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का।
1: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस यही सब ध्यान रखना पड़ता है। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी हमारे सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे क्या लेट के पैर चला गए, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं। पैर हमेशा मुड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
2: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
1: इसकी चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये सुनेंगे चार स्टाइले हैं। फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रेस्ट अच्छा कर रहा, कई बटरफ्लाई अच्छा कर रहा, कौन बच्चा बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
2: उसी में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
1: उसको बारीकी बताते हैं।
2: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
1: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन की लाइफ गार्ड है और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी नहीं, सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं।
2: आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
3: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई।
4: शुक्रिया।
3: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
4: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के

0: से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वो ही बॉक्सिंग का एक था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस इस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
1: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
0: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस, एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहाँ पहुँच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ
1: सबसे
0: गई यहाँ पर।
1: कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
0: मुझे ऐसा लगता कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट दे के ही निकलना है यहाँ से, खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है, बस ये है वहाँ से। फिर
1: क्या कोई ऐसे कोच या व्यक्ति हैं जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
0: चलिए, मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CISF में हूँ, वहाँ पे कोच के उस उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैंप में हूँ तो यहाँ के कोचेज है। तो बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर हैं और रोहित पांडे सर, मतलब जो थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली है।
1: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है, फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
1: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस आज की बेटियों को, युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं, तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके एक बार उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती हैं। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है,
1: जी
0: अगर आप उसको वो करवाओगे ना तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
0: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए इसलिए मैं बोल नहीं सकती
1: चलिए,
0: कि
1: लेकिन
0: क्या होता आगे। हाँ बाकी मैं
1: हमारे यहाँ
0: लगी हूँ
1: सामना है,
0: प्रैक्टिस
1: और
0: पे।
1: इमरोज खान जी आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और
0: जी
1: आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप। खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
2: खेल दर्पण।
3: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये
4: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बसंत मुखारी में उस्ताद सुल्तान खान की सारंगी और उस्ताद जाकिर हुसैन के तबले पर जुगलबंदी। आलाप और रचना विलंबित ख्याल में निबद्ध है। रूपक ताल और द्रुत ताल 3 ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग बसंत मुखारी में उस्ताद सुल्तान खान की सारंगी और उस्ताद जाकिर हुसैन के तबले पर जुगलबंदी। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या COVID-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहां ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake